शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से महकते हुए पवित्र प्रोग्राम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में हमेशा यही करते आए हैं, विचार करते हैं भला हम कौन हैं, क्यों हैं, क्या करते हैं इस दुनिया में, कैसे हमें जीना चाहिए। ये गंभीर विषय है, आसान नहीं है, ये फन नहीं है, ये अपने आप को समझने की कहानी है। और इसी कहानी के लिए हम कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं जो हमें समझा सकें, एक सरल भाषा में बता सकें भला क्या है आध्यात्म। तो आज हमारे साथ जो प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं वो हैं मोहन कृष्णन साहब। मोहन कृष्णन साहब का मैं स्वागत करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि ईश्वर की कृपा से वो कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं। मोहन साहब।
2: जय श्री राम। नमस्ते। मैं मोहन कृष्ण अभी चेन्नई वासी हूँ। मेरा जन्म हुआ था कलकत्ता शहर में
1: जी,
2: और पढ़ाई वहीं हुआ था, और फिर मैं रिजर्व बैंक में नौकरी ले लिया और सेवानिवृत्ति के बाद चेन्नई में सेटल हो गया। और मुझे 30 साल की उम्र से महात्मा इनके साथ सत्संग का मुझे सौभाग्य मिला और उनसे मैं बहुत कुछ सीख सका हूँ। और समझिए 18 अध्याय भगवत गीता का मैंने एक बहुत ही संत के उनके चरण में बैठ के मैं इसकी अध्ययन किया था, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं सेवानिवृत्ति लिया हूँ और लोगों की खुशी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो सेवा हो सके वो करता हूँ।
1: बहुत सुंदर मोहन जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन साहब। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये प्रोग्राम हमको समझने के लिए है और आप से हमें उस सहायता की अपेक्षा है जिसे हम अपने आप को, हमारे सुनने वाले अपने आप को पहचान सकें। तो एक शब्द है, एक विधा है, एक धारा है जिसको आध्यात्म कहते हैं। तो एक साधारण मनुष्य को समझने के लिए मोहन जी हमें बताएं आध्यात्म क्या समझे हम, अध्यात्म का क्या मतलब हम माने।
2: अध्यात्म को समझ के लिए जरा बारीकी की सोच की जरूरत है। इस संसार में दो ही चीज है, एक है अहम मैं और दूसरा है इदम ये सब
1: जी।
2: इदम जो ये सब है उसे

0: अनात्मा कहते हैं,
1: वाह,
0: और अहम जो मैं हूं उसको कहते हैं आत्मा, और ये आत्म विचार को अध्यात्म कहते हैं, उसके साथ जो संबंध बनाए रखना है उसे अध्यात्म कहते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब सीधे सीधे सी तौर पे मोहन साहब, क्या मैं ये समझूं कि आत्मा के अध्ययन को अध्यात्म कहते हैं?
0: हाँ, आत्मा की अध्ययन, आत्म विचार को अध्यात्म कहते हैं।
1: वाह क्या बात है, बेहद खूबसूरत। यहां पर दोस्तों आपने गौर किया हो, मोहन सर ने दो चीजें बताई, एक तो अपना अध्ययन अध्यात्म, और नहीं अहम एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, और दूसरा था इदम। मैं ठीक कह रहा हूं ना सर?
0: जी जी ठीक कह रहे हैं, इदम
1: इदम। मतलब देखिए, खूब ये शब्द, मुझे सच बोलूं मुझे नहीं पता था, और हमारे सुनने वालों में से कितने लोगों को नहीं पता होगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आज मेरी मुझे एक नया शब्द सुनने में आया, उसकी मतलब समझ में आया, इदम। वाह क्या बात है, तो बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए मोहन सर, यहीं पे मेरे दिमाग में जो विचार आ रहा है वो ये कि अध्यात्म की अगर हम बात करें तो एक और शब्द है धर्म, वो पीछे नहीं रहता। तो अब धर्म का मतलब भी बताइए, और मुझे ये समझाइए कि क्या धर्म और अध्यात्म में फर्क है? नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या है, मतलब इन दोनों के बीच क्या तालमेल है?
0: अच्छा, धर्म है आचरण, अध्यात्म है ज्ञान। अभी ये कि मनुष्य में एक फैकल्टी है ज्ञाता, जो जानते हैं, और हमारी आचरण हमारे ज्ञान के अलाइनमेंट में रहे उसको धर्म कहते हैं। अभी अध्यात्म कहता है कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो अगर आचरण भी सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप के तालमेल में रहे तो मैं चिंतन क्रिया और बोली एक लाइन में रहे, जो क्रिया और बोली के जो एक लाइन में रहना, आचरण को धर्म कहते हैं। उसका गलत ट्रांसलेशन हो गया, मत के बराबर हो गया, लेकिन उसका धर्म का मतलब है आचरण, अपना कर्म, अपना स्वधर्म करना, उसी को धर्म कहते हैं।
1: जी जी जी, जितना मुझे समझ में आया मोहन साहब, जिस भी तरीके से हम अपनी जीवन शैली चलाते हैं
0: जी,
1: उचित आचरण करते हुए, हाँ, बस उसी को धर्म कहते हैं,
0: उसी को धर्म कहते हैं।
1: क्या बात, बहुत खूब। दोस्तों मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोगों को सुनकर कि धर्म क्या है और आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। बहुत सुंदर। तो बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से भजन का आनंद लेते हैं, विचार करते हुए जो अभी अभी मोहन साहब ने बताया धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में।
2: इस पूरी दुनिया में प्रभु ही एक अकेली शक्ति है जो हमें सहारा दे सकती है, जो हमारा ख्याल रखती है। इसी शक्ति के शरण में आए, सुनिए ये एक दूसरा प्यारा सा भजन।

बहुत सुंदर। अब आगे बिल्कुल जैसे मेरी कोशिश रहती है मोहन सर, और आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये प्रोग्राम बिल्कुल साधारण व्यक्ति का है, बिल्कुल लेमैन, जो सरल भाषा में ये कठिन सब्जेक्ट

0: ये लोगों से अपेक्षा है कि लोग मुझसे झूठ ना बोले
1: जी,
0: लेकिन मैं किसी से झूठ बोलूं या न बोलूं ये मेरे कन्वीनियंस पर निर्भर करता है।
1: जी बिल्कुल सही।
0: तो ये अगर अलाइनमेंट में हो जाए कि भाई झूठ बोला कतई ठीक नहीं है, और मैं न किसी से अपेक्षा करता हूं मुझसे झूठ बोले, और मैं भी झूठ का आचरण नहीं करूंगा, इसमें हो गया धार्मिक आचरण हो गया
1: जी,
0: और मैं एथिकल लाइफ सीधा कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ बिना अंदर के क्लेश का मैं जीवन जी सकता हूं।
1: भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए विचार करते चलिए, मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ये गहरी बातें हैं, रुक कर विचार करना बहुत जरूरी है। लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए इस विचार पर विचार कीजिए। बस एक बार प्रीत लगने की देर है, प्रभु से प्रीत लगते ही सारी दुनिया अपनी होती है। चलिए प्रभु से प्रीत लगाएं।

0: सुंदर। अब जाहिर सी बात है, जब हम आध्यात्मिकता से शुरू कर धर्म पर आए, धर्म को भी समझा, उनके डिफरेंस को भी माना, उचित आचरण को भी समझा, तो दो और शब्द हैं सर जो पीछे ना रह पाएंगे इस पूरे विषय में। वो एक है ध्यान और एक है प्रार्थना। तो इन दोनों के बीच में क्या समानता है या क्या अंतर है, थोड़ा वो हमें समझाइए।
1: अच्छा, ध्यान है मानसिक व्यापार। इसमें ध्यान का अर्थ है कि हम मुंह से कुछ ना करें, मन का व्यापार करें और हमारी वो थॉट प्रोसेस है आध्यात्म के ओर ले जाएं। या तो वो जप साधना हो सकता है, या हमारे ये जो उपनिषद्स हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें से महाव्याख्य कुछ ले लें और अपने आत्मस्वरूप पर ध्यान करें
0: जी।
1: प्रार्थना जो है याच, या कि हम ईश्वर की ओर याचक बन के याचना ले जाते हैं। कहा जाता है कि चार तरफ की प्रार्थना होती है। एक होता है आरती, जो संकट में हो और ईश्वर से मांगता है कि मेरी संकट दूर हो। दूसरे को कहते हैं अर्थार्थी, अरे मुझे एक बंगला है, मुझे दूसरा बंगला चाहिए
0: जी।
1: तीसरा है जिज्ञासु। वो जिज्ञासु बोलता है कि भाई ईश्वर तुम क्या हो, ऐसे इतने सारे फर्क क्यों हैं, लोग में ये जो संसार में ऊपर नीचे किया क्यों है, ये संसार क्या है, ये जिज्ञासु है, ये ईश्वर से जानना चाहता है
0: जी।
1: और चौथा जो प्रार्थना है वो ज्ञानी का प्रार्थना है, वो आनंद लेता है ईश्वर की, ये देख ईश्वर की लीला देखकर आनंद ले लेता है। उसके मुंह में लिखते निकलता है बस शिवोहम शिवोहम, शिवोहम का मतलब आनंद में देख रहा हूं
0: जी।
1: तो ये जो है याचना है, जो हम किसी ईश्वर से किसी चीज की मांग करते हैं तो वो प्रार्थना है। प्रार्थना हम काय वांग मन, काय से भी कर सकते हैं, हाथ जोड़ कर उसे मांग सकते हैं, मानसिक प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जो है सिर्फ मानसिक व्यापार है।
0: वाह क्या बात है, मतलब इतने खूबसूरत शब्दों में जो शब्दावली इस्तेमाल की है मोहन सर ने, वो बहुत प्रशंसनीय है कि ध्यान जो है वो एक मानसिक व्यापार है। भाई वाह क्या बात है, कितने प्यारे तरीके से मोहन सर ने हमें समझाया है। दोस्तों विचार करते रहिए करते रहिए, छोड़िएगा नहीं वरना मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो आगे बढ़ते हुए बस मोहन सर से एक और बात पूछना चाहूंगा कि सर इसी सिलसिले में जब हम ध्यान की बात हो गई, प्रार्थना की बात हो गई, अध्यात्म धर्म, तो एक और चीज आती है एक और शब्द आता है जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है, समझ में नहीं आता, वो है आत्मा। तो आत्मा के अस्तित्व के बारे में आपकी क्या राय है सर?
1: अच्छा, अभी ऐसा है कि मैंने पहले कहा था अहम इदम, अंग्रेजी में बोले तो आई एंड दीज। अच्छा, जब मेरा फोकस रहता है बाहर विषय के ऊपर, तो ये उस जो स्वयं प्रकाश नहीं है, जिसे जानने के लिए मुझे अंतकरण या अपनी प्रत्यक्ष जो हमारे पास जो चक्षु वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करके मैं बाहर की विषयों को जानता हूं, उसे अनात्मा कहते हैं।
0: ओके।
1: जो स्वयं प्रकाश है, स्वत सिद्ध है, उसको आत्मा कहते हैं। अभी समझिए, रात को मैंने फोन किया आपको
0: जी,
1: और मैं बोल रहा हूँ समीर जी आप हैं
0: जी जी जी,
1: तो आप ये बोलेंगे क्या मैं लाइट ऑन करके देखता हूँ, बीवी से पूछ के बताता हूँ
0: जी जी, मैं तो कहूंगा मैं हूँ।
1: आप तो कहते हाँ जी बोल रहा हूँ
0: बोल रहा हूँ,
1: इसका मतलब है मैं स्वयं प्रकाश हूँ।
0: क्या बात है जी।
1: अगर मैं आपसे पूछूं कि टीवी में आपके घर में करंट है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, एक मिनट में मुझे स्विच जला के देखना पड़ेगा,
0: या उसमें स्विच में उंगली डाल के देखना पड़ेगा
1: उंगली डाल के देखना पड़ेगा जहां मैं अपने अंतकरण या अपने चक्षुरादि जो हमारे पास जो करण है, उपकरण है, इसको मैं व्यवहार करके जो जानता हूं वो अनात्मा है।
0: ओके जी।
1: और ये सब के पीछे जो शक्ति है, जो स्वयं प्रकाश स्वत सिद्ध है, उसको आत्मा कहते हैं
0: जी जी जी।
1: जरा बारीकी से विचार करना चाहिए।
0: हाँ,
1: हाँ. ये हमारी शास्त्र ये कहती है कि भाई ये ऐसा कोई नहीं है जो ये पहचान सकता है। कोई से भी पूछे आप हैं क्या, वो कहेगा हाँ मैं
0: जी मैं हूँ। करेक्ट, ब्यूटीफुल।
1: तो इसका मतलब है आप आत्मा के आप एक्सपीरियंस कर, आत्मा के अनुभव कर रहे हैं
0: जी।
1: बस पहचानिए आत्मा क्या है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। तो फिर आत्मा की बात अगर कर रहे हैं तो क्या आप पुनर्जन्म या कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं सर?
1: अच्छा, देखिए यहां दो चीज है। एक तो है विश्वास
0: जी।
1: विश्वास दो टाइप के होते हैं, एक वेरीफाइबल बिलीफ, एक नॉन वेरीफाइबल बिलीफ।
0: वाओ, ओके।
1: अच्छा, ये जो धर्म का है, हम किसी से आज तक ऐसे किसी से नहीं मिले वो कहा कि भाई मैं पूर्व जन्म में मैं तुम्हारा ससुर था, ऐसे मैं तो एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है। लेकिन मैं अगर अपना न्याय और तर्क लॉजिक को यूज करके देखूं तो समझिए मेरा जन्म फलाना तारीख को हुआ था, समझिए 1 दिसंबर को हुआ था
0: जी। जी,
1: तो 1 दिसंबर के पहले मैं कहां था? तो आप कहेंगे मैं मां के गर्भ में था। उसके 10 महीने पहले मैं कहां था? तो आप अचानक से ऐसे पटाख से तो आप नहीं आए।
0: करेक्ट।
1: उसके पहले हम पंचभूत में थे, पंचभूत पंचीकरण होके एक शिशु बन के मां के गर्भ से जन्म लिया। इसका मतलब है मैं कार्य हूं तो उसका कारण होना चाहिए। तो ये लॉजिक में देखेंगे तो पूर्व जन्म के जो है ये विश्वास से बाहर जाकर ज्ञान की बात हो जाती है
0: जी।
1: एप्पल, एप्पल जो है, जो सेब जो है कहां से आया? बीज से आया। तो वो बीज में एप्पल था कि नहीं? सूक्ष्म रूप में था। वो वक्त आने पर, वो कहते हैं ना कबीर दास के दोहे, माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो उसके ऋतु आने पर उसी बीच से ये जो एप्पल जो है, ये सेब जो है, वो उत्पन्न होके प्रकट हो गया।
0: सुंदर।
1: और कुछ दिनों के बाद ये जो है जो प्रकट हुआ वो अपने आप विनाश में जाके उसी बीज में जाके चले जाएगा। मैनिफेस्ट टू अनमैनिफेस्ट। इसमें पुनर्जन्म जो है ना, विश्वास से हटकर अगर ज्ञान की चक्षु से देखें तो इसमें हमें बहुत बेनिफिट हो सकती है।
0: राइट सर, बहुत सुंदर तरीके से डिटेल में मोहन सर ने समझाया है दोस्तों। कुछ अलग ही प्रस्पेक्टिव, कुछ अलग ही देखने का नजरिया, सुंदर। तो लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए विचार करने का एक और मौका।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टेंटिया भी।

0: धन्यवाद मोहन साहब, धन्यवाद। तो अब एक हल्का फुल्का सा सवाल जानना चाहूंगा, लोग बात सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि क्या कभी ऐसा कोई समय आया आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, जब आपको स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्मिकता पर संदेह हो गया हो, थोड़ा गुस्सा आ गया हो कि नहीं मानता मैं ये सब ऐसा कुछ, और फिर आपने क्या किया?
1: अच्छा, ऐसा ही मौका आया था मेरे जिंदगी में एक बार
0: जी,
1: जब ऐसी एक स्थिति आई। लोगों को ये कहता हूं कि मैं बचपन में 4 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था
0: जी,
1: और मुझे चलने में तकलीफ होती है। मैं अभी इस उम्र में व्हील चेयर या वॉकर लेके चलता हूँ
0: जी।
1: और 22-21 साल ऐसे उम्र में जब नौकरी की तलाश में जाता हूँ तो लोगों ने कहा कि भाई तुम इसके लिए फिट नहीं हो। मैं तो एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था
0: जी।
1: किसी ने कहा आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनाएंगे, तुम क्या बनोगे पायलट। मैं IAS बनना चाहता था, वो कहते नहीं IAS में विकलांग को हम शामिल नहीं करते। फिर की ईश्वर की कृपा से मैंने अच्छे बैंक में बहुत बड़ी पोजिशन में मैं पहुंच गया
0: जी।
1: लेकिन उस मौके पर उस ऐसे हालात आए थे जब मैं 20-21 साल की उम्र का था तो मुझे बहुत गुस्सा आया
0: जी,
1: ईश्वर पर बहुत गुस्सा आया कि भाई मुझे आपने में से मुझे मैंने ऐसे क्या किया जो मुझे ऐसी मेरी जिंदगी में आपने ऐसा एक चैलेंज दिया मुझे
0: जी।
1: तभी जाके वो कहता है ना ईश्वर अनुग्रह है मुझे गुरु मिले, और गुरु ने मेरी सोच मेरी दृष्टि सब कुछ बदल दी। उसके बाद अभी जो है ये मैं ये नहीं कहता हूं कि एडजस्ट हो गया है, अब ये अकोमोडेट हो गया। गाड़ी में जैसे डेंट है, समझिए गाड़ी में डेंट है, बस गाड़ी में डेंट है, गाड़ी तो चलती है ना। तो मेरी गाड़ी में डेंट है लेकिन काम अच्छी तरह करती है गाड़ी
0: जी।
1: तो जिंदगी में ऐसा मौका आया था जब मुझे बहुत गुस्सा आया, रिजेक्शन मिला मुझे
0: जी,
1: लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। वो कहते हाँ, वो कहते हैं ना, वो तमिल में कहते हैं आयो पावम, बेचारा।
0: ओके,
1: तो इसमें बहुत गुस्सा आया लेकिन अच्छा हुआ ईश्वर अनुग्रह मेरी पुण्य ऐसा हुआ कि ईश्वर अनुग्रह ऐसे बड़े संत महात्मा से मिले जिन्होंने मेरी सोच और विचारधारा बदल दी।
0: बहुत सुंदर भाई, वाह, आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली रहे, और आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन पा रहे हैं। उस प्रभाव को रेडिएट होते हुए हमारे पास आने में बहुत वक्त नहीं लगेगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। लीजिए दोस्तों, एक भजन के लिए रुकते हैं और फिर वापस आते हैं मोहन सर के पास। मैं हूं आपका दोस्त RJ समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन।

0: मोहन साहब, रिलीजन की बात हुई, आध्यात्मिकता की बात हुई, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की हुई, रिलीजन पर एक बार फिर से वापस आते हैं धर्म पर, क्योंकि वो एक उचित जिंदगी को जीने का आचरण की बात थी। तो क्या सभी धर्म एक ही सच की ओर ले जाते हैं क्या हमें?
1: अच्छा, एक चीज है, हमें वहां एक छोटे से शब्दों के प्रयोग में जरा ध्यान रखना चाहिए। धर्म एक होता है, मत अलग है।
0: जी जी जी।
1: अच्छा, धर्म का मतलब आचरण, और आचरण हर जीवन को एक ही जैसा आचरण है। ऐसे नहीं कि अमेरिका में दूसरा आचरण है, हम झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वैसा नहीं है।
0: ओके।
1: मनुष्य का आचरण एक ही होना चाहिए, मानव धर्म कहते हैं इसको। लेकिन हमारी ईश्वर की जो हमारी ओर प्रार्थना है, याचना है, ये अलग अलग हो सकता है, इसको मत कहते हैं।
0: जी
1: अच्छा, तो सवाल ये होना चाहिए, क्या सारे मत एक ही चीज की ओर ले जाते हैं?
0: ओ, जी जी जी, बिल्कुल सही।
1: तो मैं इनको इनको मैं काउंटर सवाल यही करूंगा कि अगर हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो आपस में भेदभाव क्यों?
0: जी,
1: इसका मतलब है कि हमारा उद्देश्य और कुछ है, आपका उद्देश्य और कुछ है। आप कहते हैं कि हमारे इसमें चलो, हमारे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। दूसरा कहता है हमारा मार्ग में चलो तो रक्षा करेंगे। तो मैं उनकी जो विश्वास है उसको मैं सम्मान करता हूं, आई रेस्पेक्ट दैट। और माई एक्सपेक्टेशन इज, मैं जो जिस मार्ग में जा रहा हूं उसको आप भी रेस्पेक्ट करें।
0: जी,
1: तो इसका जो गोल, इसमें दो चीज है, मत में दो चीजें, एक है वैल्यूज, हम क्या झूठ मत बोलो, किसी को भाई हिंसा मत करो, वहां सब एक ही है। लेकिन ये आगे चल के पहुंच के जो उद्देश्य है, जो गोल है, जो जहां जाके पहुंचना चाहते हैं, वो अलग अलग है। अगर वो अलग ना होता तो आपस में भेदभाव क्यों?
0: विचार करने की, फिर से बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
1: जी सर, आवश्यकता है
0: बहुत ज्यादा गहराई से, क्योंकि अब जैसे जैसे हम वार्म अप हो रहे हैं, इस विषय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी समझ भी खुल रही है। थोड़े से शब्द फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें समझ भी आ रहा है कि ऑलराइट, ये पर्टिकुलर शब्द जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में गहन विचार चाहिए। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए अब एक और थोड़ा सा पैरानॉर्मल टाइप सवाल, कई बार लोग बात पूछते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, खमाखा में कंफ्यूज होने की कोशिश ज्यादा ही समझदार बन जाते हैं। कि क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, हमको प्रभावित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है, या कंट्रोल कर रही है? तो क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई अदृश्य शक्ति, सर आप मानते हो?
1: अच्छा, अदृश्य शक्ति जब है ब्रह्मांड की ओर नहीं, बस हमारे शरीर पिंडांड है उसी में पहले देखिए।
0: जी,
1: आप प्राण वायु लेते हैं, आप दृश्य देख सकते हैं उसे?
0: जी नहीं, वायु को नहीं देख सकते।
1: हाँ, आप डाइजेस्ट हो रहे हैं, आप कुछ देख पा रहे हैं?
0: नहीं देख पा रहे हैं।
1: आपके अंदर कुछ सोच है, ये सवाल कर रहे हैं मुझसे, मैं सवाल की प्रश्न की उत्तर दे रहा हूं, क्या आप देख पा रहे हैं?
0: नहीं।
1: इसका मतलब है एक है दृश्य शक्ति, एक है अदृश्य शक्ति।
0: अरे वाह, क्या बात है सर।
1: अच्छा, दृश्य शक्ति जैसे पिंडांड हम में है, ब्रह्मांड में भी है। जैसे सूर्य, सूर्य के जो उदय होता है, अस्त होता है, ये हमारी दृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति भी बहुत है कि क्या हमारे मिल्की वे तक सीमित है, हमारी गैलेक्सी इससे बाहर भी और कुछ है?
0: जी।
1: ये नक्षत्र लोग क्या है, वो उनका जैसे चलता कैसे, ये हमारे हर साल देखिए आपको ग्रहण आता है, ये कैसे आता है? तो इस सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति भी है, एक दृश्य शक्ति भी है। अदृश्य शक्ति को देखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि को किसे जरूरत होती है, इनसाइटफुल एनालिसिस। इसके अदृश्य शक्ति को देखने के लिए या समझने के लिए हमें एक सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है।
0: तो यार, जाहिर सी बात है, अभी मोहन सर ने जो एक सूक्ष्म बुद्धि के बारे में बताया, ये एक नया शब्द, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया प्रभाव समझने की बात में आ जाता है जो कि मौजूद है। बड़ी खूबसूरती से सर ने बताया कि अदृश्य और दृश्य में क्या फर्क है। तो जिस तरह से दृश्य मौजूद है, उसी तरह से अदृश्य भी मौजूद है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, फिर रुकिए रुकिए, एक भजन का आनंद लेते हुए विचार कीजिए।

0: तो जाहिर सी बात है, इन सारी बातों को सुनकर समझकर मैं तो विश्वास से सारे मित्रों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को बार बार सुने, क्योंकि विचार करके समझना जरूरी है, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। आप स्वार्थी बनिए, थोड़ा अपने बारे में सोचिए और इस पूरे प्रोग्राम को समझिए। मोहन जी ने जो बताया बहुत सुंदर। अब आपकी बातें सुनकर समझकर कोई व्यक्ति ये तय कर ले कि जी बिल्कुल ठीक कहा मोहन साहब ने और मैं अब आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता हूं, तो उसको आप बहुत सरल भाषा में 1 2 3 4 ऐसे कुछ सिंपल स्टेप्स बताइए सर, जिससे कि वो उनको अपनाकर आध्यात्मिक हो जाए।
1: अच्छा, अभी जैसे है, आध्यात्मिक होने के लिए पहली जरूरत है कि हमें ये जो हमारी जो अभी आर्थिक व्यवस्था की ओर हम समझ रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था में ही हमारी संतोष और हम सब खुश रह सकते हैं।
0: जी
1: अच्छा, इसको हमें जरा ये सोच को बदलना है। आर्थिक व्यवस्था जो जरूरत है, लेकिन इससे आगे भी हमारा कुछ उद्देश्य है। उसके लिए उसको पहले, उसको कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति के पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ने से पहले a+b होल स्क्वायर सीखना चाहिए। तो
0: सही
1: आप
0: बात है।
1: ज्ञान प्राप्ति से पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। तो पहला कदम है कर्म योग। अपना कर्म करो, फल तुम्हें ईश्वर से मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा।
0: जी जी
1: वो कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, वैसे नहीं है। आपको अपना कर्म करो और आपके कर्म का जो फल है वो ईश्वर की कृपा से आपको मिलेगा ही। उसको कर्म फल कहते हैं। और ईश्वर के ऊपर विश्वास और श्रद्धा बढ़ाने के लिए उपासना की जरूरत है। सो स्टेप 1 कर्म योग, स्टेप 2 उपासना, तीसरा किसी गुरु के चरण में जाएं और श्रवण मनन शुरू कर दें, उनकी उनकी साथ सत्संग गुरु, क्योंकि ये जो चीज है अपने आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। गुरु के साथ श्रवण मनन और निधि ध्यासन की जरूरत है। तो ये 3 स्टेप्स एब्सोल्युटली जरूरत है। कर्म योग, उपासना और ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है श्रवण मनन निधि ध्यासन।
0: जी
1: इसमें सब कुछ आ जाते हैं।
0: जी श्रवण मनन और तीसरा कौन सा सर?
1: निध्यासन,
0: नित्यासन।
1: निधि निधि ध्यासन ना, छोटा ध और फिर ध्या,
0: अच्छा
1: निधि ध्यासन।
0: निधि ध्यासन।
1: निधि ध्यासन का मतलब ये जो विचार है आत्म विचार के ऊपर घी को लगाना, निधि ध्यासन, निश्चय अध्ययन करना, निधि ध्यासन।
0: ओके ओके ऑलराइट। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से सर ने, मोहन सर ने 3 स्टेप्स बताए कि आपको उन चीजों की जरूरत है। मुझे, मेरे हिसाब से बड़ी ही प्यारी चीज जो मुझे अपनाने के लिए लगी वो ये कि ज्ञान पाने के लिए आप ज्ञान के लिए योग्य तो होइए पहले। जाहिर सी बात है, उन्होंने बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया, एल्जेब्रा को समझने के लिए पहले आप a+b होल स्क्वायर तो सीखिए। जब आपको यही नहीं पता तो एल्जेब्रा कहां से आने वाला है? सो इट इज सो ब्यूटिफुल। मोहन सर आपका बहुत बहुत आभार है, साधुवाद, धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त निकाला, हम लोगों को बताया, हम लोगों को शिक्षित किया किस तरीके से हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, शांति पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और चलते चलते बस हमारे सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर आप?
1: हाँ, बस इतना ही है कि संदेश इतना ही है, मैं आनंद स्वरूप हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, दुख की कोई गुंजाइश है ही नहीं हमारे जिंदगी में। अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने के लिए गुरु के शरण में जाओ,
0: जी
1: बाकी सब ईश्वर कृपा है।
0: बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मोहन सर, थैंक यू सो मच।
1: बहुत अच्छा लगा। ईश्वर कृपा गुरु है, ईश्वर अनुग्रह गुरु कृपा से मैं आपसे 2 शब्द मैंने आपके साथ शेयर कर सका। ये लोगों को अगर बेनिफिट हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है।
0: थैंक यू
1: ये जरा
0: सर।
1: टेक्निकल है, जरा
0: जी
1: समझने दें।
0: ऑफ कोर्स।
2: ओम भास्कराय नमः।
0: दोस्तों इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है सेवा और अनुभूति का सफेद रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन बचाना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन क्या किसी की जान बचाने का काम केवल डॉक्टरों का है? क्या एक सामान्य नागरिक भी सही समय पर सही कदम उठाकर किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए आज हमारे साथ हैं एक ऐसी प्रेरणादायी शख्सियत जिन्होंने अपने पूरे जीवन को लाइफ सेविंग के मिशन के लिए समर्पित कर दिया है। SMS मेडिकल कॉलेज, JK लोन हॉस्पिटल जयपुर में प्रोफेसर, हेड द डिपार्टमेंट और सुपरिंटेंडेंट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने हजारों मरीजों की जिंदगी बचाने में भूमिका निभाई है। लेकिन उनकी असली यात्रा तब शुरू हुई जब सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने यह संकल्प लिया कि लाइफ सेविंग केवल डॉक्टरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, यह हर नागरिक का कौशल या स्किल बनना चाहिए। और इसी सोच के साथ लगभग 3 दशक से पहले उन्होंने सहायता की स्थापना की, एक ऐसा अभियान जो लोगों को केवल रोड सेफ्टी नहीं बल्कि लाइफ सेफ्टी सिखाता है। CPR, बेसिक लाइफ सपोर्ट, गोल्डन आवर की महत्ता, सही फर्स्ट रिस्पॉन्स और एक जिम्मेदार बाईस्टैंडर्ड की भूमिका, इन सब के प्रति जन जागरूकता फैलाना आज उनके जीवन का मिशन बन गया है। उनकी इसी असाधारण सामाजिक सेवा को राष्ट्र ने सम्मानित किया और वर्ष 2024 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। यह सम्मान केवल एक चिकित्सक का नहीं बल्कि उस विचार का सम्मान है

0: कि समय पर किसी की गई छोटी सी मदद भी किसी को नया जीवन दे सकती है। 90 वर्ष की आयु में भी उनका उत्साह, उनका समर्पण, उनकी ऊर्जा हम सभी के लिए प्रेरणा है। तो आइए बड़े सम्मान और आत्मीयता के साथ स्वागत करते हैं पद्मश्री डॉक्टर माया टंडन जी का। डॉक्टर टंडन जी, रेडियो एसएन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। इट इज इंडीड ए प्रिविलेज एंड एन ऑनर टू हैव यू विद अस टुडे।
1: Same here. Alok, what I feel is that it is very nice that I am connected with Radio SN today. और मेरे को ही लग रहा है कि सबों को नमस्कार करते हुए मैं ये बोलूं कि मैं एक भारतीय नागरिक होने के लिए बहुत ही अपने आप को एहसानमंद मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस कंट्री के अंदर जन्म लेना मैंने जन्म लिया. इसके लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और सबों का हिंदुस्तान की जनता के द्वारा नमस्कार करती हूँ.
0: तो डॉक्टर रंजन जी, लोग आपको एक प्रतिष्ठित डॉक्टर, शिक्षिका और पद्मश्री अवार्डी के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन आज मैं ये चाहूंगा कि हमारे श्रोता आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जिन्होंने हजारों लोगों को जीवन बचाने की कला सिखाने का बीड़ा उठाया है। आइए आपकी इस प्रेरणादायी यात्रा की शुरुआत से बातचीत करते हैं। सो लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। अपने चाइल्डहुड, फैमिली बैकग्राउंड और कुछ अपब्रिंगिंग के बारे में हमें बताइए। कहाँ आपकी पैदाइश हुई, क्या फॉर्मेटिव ईयर्स कैसे रहे, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मैं पैदा हुई 20 फरवरी 1937 में मेरा जन्म हुआ और एक ऐसे परिवार में हुआ हम ज्वाइंट फैमिली थे. उन दिनों मुझे तो याद है हर व्यक्ति के उसके घर के अंदर ज्वाइंट फैमिली ही हुआ करती थी. न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड तो अब शुरू हुआ है पिछले कुछ दशक से, लेकिन हमने जो ज्वाइंट फैमिली के मजे देखे हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें देखी है, मैं चाहूंगी कि बताऊं कि जब मैं पैदा हुई तो हमारे घर के अंदर चार फैमिलीज थी, हम चाचा ताऊ मिला के, और खूब सारे बच्चे थे और सबको एक पावर टीचर से जल्दी जल्दी पढ़ाने के लिए आता था. और पढ़ाने के लिए इसलिए आता था कि जो लोग हम लोग में से पढ़ाई या कमजोर हुआ करते थे उनको वो सुबह सुबह बोलता था और हम लोग जवाब देते थे. हम लोग सबसे चुपचाप पढ़ते रहते थे और पूरा समय ऐसा निकला. और उसके बाद दिन भर भी ऐसा हुआ करता था कि शाम को स्विमिंग पूल जाना है, कोई मेला लग रहा है उसके अंदर जाना है. तो गाड़ियों का बिजनेस था हमारा, कार का बिजनेस था. फर्स्ट कार बिजनेस इन राजस्थान वॉज ए अफार प्लेस. तो
0: अच्छा,
1: ऐसी वेल टू डू फैमिली होने के नाते मेरे को कभी ऐसा ऊपर ऊपर नीचे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. कहीं भी जाना है तो अकेले नहीं जाने देना. कंजर्वेटिव तो थी फैमिली, कंजर्वेटिव सेंस के अंदर कि अकेले कहीं भी नहीं जाना, लेकिन साथ भी पूरा मिलता था और सब मिलके जाते थे. स्विमिंग जाना है या कहीं भी जाना है, हिल स्टेशन पे जाना है, मेले में जाना है, मतलब ऐसी अच्छी जिंदगी. और शुरू केजी से लेके 12th तक मैं अजमेर सोफिया के अंदर पढ़ी. तो अजमेर में मेयो कॉलेज हमारे घर के पास ही था. वहां पर एक अजमेर जो हाउस था वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे आत्माराम सेठ जी, उनको मिला हुआ था. उनकी डॉटर मेरे साथ ही पढ़ती थी तो वहां से बैठे उसमें आती थी, बस के अंदर आती थी. वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स. केजी से लेके 12th तक हम लोग ने वहीं पे साथ साथ पढ़ाई करी. एंड व्हाट हैपेंस साइमल्टेनियसली कि हमारे पेरेंट्स का भी एक दूसरे के साथ जान पहचान हो गई. हमारे फादर भी बहुत ही मिलनसार थे, मदर पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उनकी मिसेज भी पढ़ी लिखी नहीं थी, पंजाबी फैमिली थी. और ऐसे घुल मिल गए कि टीआर सेठ जी ने मेरी मदर को सिस्टर कहना शुरू कर दिया. तो जब 12th का एग्जाम हुआ और हर चीज के अंदर हमारी फैमिली साथ जाती थी, तो 12th के एग्जाम के पहले हम दोनों ने सोचा कि हम लोग मेडिकल प्रोफेशन ही लेंगे. उसको पसंद था तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, क्या दिक्कत है. तो हम दोनों ने डिसाइड किया और जब मेडिकल प्रोफेशन के अंदर रिजल्ट आया तो 12th के रिजल्ट हमारे अच्छे आए, दोनों के अच्छे आए. और उन दिनों हमारा जो एग्जाम होता था, एडमिशन हुआ करता था, इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज. तो जब जाने का हुआ कि भाई चलो कहाँ जाए तो कहाँ से जाते थे, तो मेरे फादर ने कहा कि भाई संतोष को तो ले ही जा रहे हो तो मेरी मेरी माया को भी साथ में ले जाओ. तो हम दोनों संतोष सेठी और माया रामावर साथ साथ गए, उन्हीं के साथ गए और SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर भी और एम्स दिल्ली के अंदर भी एडमिशन हो गया। और पेरेंट्स बोले कि भाई इतनी दूर क्या जाते, चलो SMS में भर्ती ले लो। तो मैं एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद भी हम लोग साथ ही रहे। उन दिनों में भी सब कुछ चलता था, लव अफेयर भी चलते थे और औरों के चलते थे, मतलब ऑल दिस थिंग्स आई नो एज अ कॉमन पर्सन। सो आई हैड अ लाइफ एज अ बोर्डर। एवरी संडे हमारा मैच बन जाती थी तो नीरोज वॉज द ओनली डेस्टिनेशन, खाना खाने वहीं जाते थे। जिंदगी ऐसी है कि आज याद करना चाहूँ तो ऐसी यादें हैं कि मैं उनको कभी अपने सामने से भुला भी नहीं सकती और याद करके कई बार सिर्फ हंसी आती।
0: अरे मैडम, आपने तो पूरा राजस्थान का इतिहास बता दिया, इतनी प्यारी प्यारी बता दी कि मुझे तो मजा आ गया। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उस टाइम लड़कियां बहुत मेडिकल प्रोफेशन में कम आती थी। और ये जो आपने बात बताई कि मेडिकल कॉलेज के लड़के आपके इतने पॉजिटिव थे, आपका ध्यान रखते थे, दे इंश्योर के कोई दूसरा महाराजा कॉलेज का लड़का आपको छेड़े नहीं, तो ये कितनी बढ़िया बातें बता दी, मजा आ गया। यू हैव सेट द टोन फॉर द इंटरव्यू आई वुड से। क्या मजा आ गया। और ये जो आपने बात बताई नीरोज की, जयपुर में जितने भी पुराने रहने वाले हैं उस रेस्टोरेंट को सभी जानते हैं, एंड आई नो मेरे ब्रदर वगैरह भी जाया करते थे। क्या बिल्कुल नॉस्टैल्जिक है सारी बातें, बहुत मजा आ गया।

0: तो कोई आपके, आपने इतना कुछ बताया, चलिए मेडिकल कॉलेज के दिनों की कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो कि आपको लगा हो कि भाई डॉक्टर का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज लाइफ एंड ऑल दैट, कोई उस टाइम ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि आपका डॉक्टर का काम है लाइफ को सेव करना, कोई ऐसी बात हो तो बताइए।
1: देखिए, मेरा प्रोफेशन तो क्योंकि आल्मा मातर रेसिडेंस मेडिकल कॉलेज ही रहा, तो मैंने एनएससी जब प्रोफेशन चूज किया,
0: जी
1: तब एनएससी जब प्रोफेशन ऐसा बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं था। वी वर कॉल्ड
0: ओके
1: पीपल बिहाइंड द स्क्रीन। बिहाइंड द स्क्रीन मतलब एनएससी जा ऑपरेशन चेक कैंसिल गए, एनएससी जा दिया, ऑपरेशन करवाए और घर गए। पर इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको आपको बताना चाहती हूँ, इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी जहां पर सीरियसली इंजर्ड विक्टिम्स आते हैं, वो हम लोग की डोमेन में है। और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होने के नाते हम लोग को सीरियसली इंजर्ड विक्टिम्स को टैकल करना अच्छी तरह से आता है, बहुत ही आता है। इनफैक्ट आज भी अगर हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है तो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जो एक अलग ब्रांच दिखती है उसके अंदर अधिकतर लोग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही है। इसलिए मेरे को गर्व की बात कहने को मिलती है कि हम लोग बिहाइंड द कर्टन नहीं है, हम लोग अब आज फ्रंट ऑफ द कर्टन। तो रिटायरमेंट के पहले जब मैंने एनएससी का लिया, सॉरी ड्यूरिंग माय करियर एनएससी प्रोफेशन लिया, तो 1968 में मैंने बीए कर लिया, 56 में एंट्री हुई एसएमएस बेंटी कॉलेज में, 61 में पास आउट किया, 68 में डीए कर लिया, 72 के अंदर मैंने जनवरी के अंदर एमएस एनेस्थीसियोलॉजी किया।
0: ओके ओके अच्छा
1: उसके बाद फर्स्ट एमएस दिया जाता था, उसके बाद सारी डिग्री सवारी एमडी में हुआ, एमडी एनएससी जब करती थी। एमएस एनएससी जब मेरे को जब मिला तो उसके बाद लेक्चर बन गई मैं। लेक्चर बनने के बाद एक ऐसा इंस्टेंस आया कि मेरी फीस जो थी निगेटिव सब्जेक्ट थी।
0: तो आपकी ये जो एनेस्थेसियोलॉजी की जो ट्रेनिंग है, तो इसने आपको कैसे इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट और ये रिवाइवल रिसस्टेशन जिसको कहते हैं, उसके प्रति कैसे सेंसिटिव बनाया? तो ये क्या उसी की वजह से आई है आपके अंदर जो ट्रेनिंग आई है?
1: नहीं, ऐसा हुआ कि जब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट थी 1994 के अंदर, तभी मेरे एक सीनियर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का मेडिकल साइंस का डॉक्टर एनपी सिंह थे, उन्होंने मेरे से कहा कि मैं क्या तुम 3 दिन का कोर्स राजस्थान पुलिस अकेडमी में करवा सकती हो सारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए।
0: अच्छा
1: सो 94 के अंदर मेरे को लगा कि मैं बात करके देखती हूँ, आई कुड गेट दैट। जब ये हुआ 3 दिन का कोर्स, एक फोटोग्राफर ने उस इवेंट को कैप्चर किया था, एंड दैट
0: अच्छा
1: फोटोग्राफर मेट विद एन एक्सीडेंट इन 1994 ओनली, एंड
0: अच्छा
1: ही उन्होंने बाईस्टैंडर्स जो होते हैं वो खड़े, उनसे कहा कि मेरे को मदद करो, मेरे को सीधा ही लेके चलना, मेरे को अगर सीधा नहीं लेके जाओगे तो मेरी जान नहीं बचेगी। बट नोबडी लिसन टू हिम। तब का
0: अच्छा
1: जमाना है 1994 के अंदर, आम जनता इतना डरती थी, पुलिस के नाम से डर लगता था और पुलिस है और कोर्ट के नाम से ऐसा डर लगता था किसी ने उसको हाथ लगाने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे अपनी जान बचाना आता है, मैंने एक कोर्स लिया हुआ है, मेरे को सीधा ले।

0: घोड़ा था, तो मैंने कहा मेरे को तो जेके लॉन में ही पोस्टिंग करो, मैं तो वहीं से सुपरिंटेंडेंट रिटायर हो गया, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एस एस मतलब एस एस, तो मेरे को पोस्टिंग मिल गई रिटर्न में मेरे पास गवर्नमेंट से आ गया कि ठीक है आपको जेके लॉन का बता दिया जाता है। वहां पर मैंने बेसिक मेडिकल जर्नल ढूंढे सारे देखे, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पता चली मेरे को, इंटरनेशनल बॉडी है जो कहती है दुर्घटना स्थल पर इमीडिएटली 10 सेकंड से सिर से पैर तक सर सारी निगाह डाल के देखो कि उस व्यक्ति को जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसके किस जगह बॉडी में चोट आई, समझ उसके सिर में चोट आई और वो व्यक्ति बेहोश हो गया, घर गिर पड़ा, उसको हॉस्पिटल कैसे ट्रांसफर करेंगे विद इन 10 सेकंड बिछड़ के लिए और निकल जाते हैं कितनी जल्दी के लिए ये यूरोपियन रिसोसिएशन काउंसिल बताता है। तो हमारा पूरा मॉड्यूल जो है वो यूरोपियन रिसोसिएशन काउंसिल के सीक्वेंशियल हैंडलिंग पे है। सीक्वेंशियल हैंडलिंग मीन्स पहली बार रसाइन में क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, एक नेचुरली देखेंगे कि सपोज अनकॉन्शियस पड़ा है तो इमीडिएटली एम्बुलेंस को बुलाएंगे और एम्बुलेंस में आजकल सारे एम्बुलेंस के नंबर सबको पता है, मेरे को अच्छी तरह से पता है 1033 अगर हाईवे पे एक्सीडेंट है तो 1033 को बुलाना है और वैसे 100 तो पुलिस का है, 101 102 ये सब पता ही होते हैं कि क्या नंबर्स है और भी नंबर जितने हैं वो सब हमें एक्सीडेंट से आते हैं। और दूसरा क्या था कि जब एक्सीडेंट होता है उसी वक्त ही हम लोग को बाइसाइड को रुक के और ये पूछना पड़ता है वहां वगैरह सामने वहां के लोगों को बुला लो और उनको सब सिखाओ कि जान कैसे बचा सकते हैं। ये सब चीज मैंने किसी में से यूरोपियन रिसोसिएशन काउंसिल से सीखी। तो हमारा मॉड्यूल 2 घंटे का कोर्स है, वो हमारा यूरोपियन रिसोसिएशन काउंसिल और अमेरिकन आर्ट एसोसिएशन का एक समागम है कि आम जनता को दिल पर दवा देने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूरी है कि कोई मेडिकल प्रोफेशन वाला है, कोई टेक्नीशियन है जो एनेस्थीसिया के टेक्नीशियन है जिसको आता है और ऐसे लोग जो ट्रेनिंग और ट्रेनर्स है, जैसे आज मैं कह सकती हूँ हमारा युवा जो हमारे साथ है वो इतना अच्छा ट्रेनिंग और ट्रेनर्स कोर्स दे सकता है कि वो बेसिकली सपोर्ट के जैसे दिल पर दवा मुझसे बोला साथ भी दे सकता है मेडिकिन के ऊपर, मतलब CPR के लिए मेडिकिन आती है, मॉड्यूल्स आते हैं, सब उन्हें देखे होंगे आपने, हमारे मेडिकिन का फुल बॉडी मेडिकिन उसके ऊपर दिल पर दबाव दो और मुझसे बुला के साथ भी दो और नहीं दे रहा तो खाली 120 बार दिल पर दबाव दो। नॉर्मली हमारा जो दिल है वो 72 बार धड़कता है लेकिन क्योंकि दिल रुका हुआ है इसलिए आपको 120 बार कम से कम दबाव देना ही पड़ेगा, यानी 1 सेकंड में 2 बार। सो दिस
1: अच्छा डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, जैसे रोड सेफ्टी की बात तो बहुत होती है लेकिन लाइफ सेफ्टी की बात बहुत कम होती है, तो आप दोनों में डिफरेंशिएट किस तरह से करना चाहेंगी? अभी आपने काफी कुछ तो बता दिया है तो ब्रीफ में थोड़ा सा हमें बताइए इसके बारे में।
0: देखिए रोड सेफ्टी का मतलब कि फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड।
1: ओके
0: सही है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना। और लाइफ सेफ्टी का मतलब कोई भी व्यक्ति जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास से गुजर रहा है वो बाइस्टैंड हुआ वो लाइफ सेफ्टी कर सकता है, जान वही बचा सकता है। अगर हम कहें कि एम्बुलेंस बुला लेंगे और हम तो खड़े खड़े मुंह ही देखते रहेंगे तो व्यक्ति तो आधे से ज्यादा लोग वही मर जाते हैं। हमारे यहाँ होता भी है, हमारी पुलिस बाइस्टैंडर तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है ना, लेकिन पुलिस को भी नहीं पता है कि कैसे जान बचानी चाहिए, पुलिस विशेष एम्बुलेंस लेके आती है और एम्बुलेंस के अंदर लेके जाती है। मतलब इसके विपरीत अमेरिका के अंदर विद इन अ मिनट पास वाले हॉस्पिटल से ही एम्बुलेंस आ जाएगी और सुसज्जित एम्बुलेंस आएगी जिसके अंदर सारी चीजें होंगी, वही लोग सब लोग CPR भी दे सकते हैं, सभी कुछ करके और जान बचाते हैं, रस्ते में भी जान बचाते हुए जाएंगे वहां जाएंगे भी तो रिसेप्शनिस्ट सारे तैयार मिलेंगे और जान बचाएंगे। तो इसीलिए वहां की अलग चीजें बोलती है और हमारे यहाँ तो 25-30% लोग रस्ते के अंदर ही जान छोड़ देते हैं। तो मेरा मतलब है कि लाइफ सेफ्टी क्योंकि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को कॉम्पोनेंट है, तो अगर माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है 1 महीने छोड़ देगी और फिर कहती सीधा सीधा रास्ता है घर से सीधा तो चले जाना और स्कूल चले जाना बच्चा, अपने

0: चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको समझाने की जरूरत नहीं, माँ ने समझा दिया और स्कूल चला जाता है, वापस आता है तो रूल्स ऑफ द रोड माँ भी फॉलो करती है, बच्चे को भी फॉलो करवा देती है और चले जाता है। ये तो रोड सेफ्टी हो गई। पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर यंग लोग जो है रेड लाइट को स्किप करते हैं और रस्से के अंदर ही, जैसे क्योंकि येलो लाइट जितनी 5 सेकंड के लिए थी उसी के बीच के अंदर लेफ्ट साइड से, क्योंकि उसका है नहीं, रस्से में आ जाते हैं, बीच के अंदर 5 सेकंड के अंदर ही कई यूथ मर जाते हैं। इंडिया लीज द वर्ल्ड इन रोड डेथ हो रहा है अब तक 30 साल से ऊपर मेरे को काम करते हो गए। तो रोड सेफ्टी हमारे यहाँ फॉलो नहीं होती, इसलिए हम लीड कर रहे हैं वर्ल्ड को रोड डेथ के अंदर, लेकिन लाइफ सेफ्टी तो किसी को मालूम ही नहीं है। मेरे ख्याल से आम लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है, और इसको मैं जानकारी के साथ साथ कुछ और भी चीज ऐसी बताऊंगी लाइफ सेफ्टी के बारे में, जो कि सबके जानकार होना बहुत जरूरी है और इसको कैसे फॉलो करना चाहिए। ये हमारे जो पीपीटी है, वीडियोस है, हमारे खुद के बने हुए बहुत अच्छे बने हुए हैं, जिसकी वजह से मेरे को
1: चलिए उसके आने लग गया। हाँ, सहायता के बारे में बात करते हैं। तो अब मेरे को मैडम, मैं थोड़ा सा यहाँ मैं सोच रहा हूँ एक गाने के लिए हम पॉज ले लेते हैं और उसके बाद में दोबारा से इंटरव्यू को 3-4 सेकंड के बाद में दोबारा शुरू करते हैं।

0: हाँ, तो डॉक्टर टंडन, मैं केवल एक दो तीन चीजें आपसे लाइफ सेफ्टी के लिए पूछना चाहता हूँ। जैसे आजकल CPR, AED और बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसे शब्द बहुत सुनाई देते हैं, तो ये जो AED और इस तरह की जो चीजें हैं, क्या ये एक नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस होती है, जैसे मॉल्स होती है, एयरपोर्ट्स होती है, वहां अवेलेबल होने चाहिए? आजकल तो हमारे यहाँ नहीं है ये, तो डू यू रिकमेंड दैट, क्या ये होना चाहिए?
1: बिल्कुल, क्योंकि आपने AED का नाम ले लिया है, इसलिए AED मैं थोड़ा फैक्ट बोलती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा बोलूंगी क्योंकि ये मेरे बहुत दिल के करीब है। ऑटोमेटेड
0: ओके
1: एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स ऐसी चीज है जिससे DC शॉक दिया जाता है और इसका
0: ओके
1: स्पेशल इंडिकेशन होता है। जैसे कई बार
0: ओके
1: आपने देखा होगा कि सेल पे बॉम्ब करते हुए आपने देखा होगा कि काटे
0: जी
1: काटे सुना चाहिए। काटे रस का मतलब व्यक्ति को दिल मतलब दर्द हुआ, सीने सीने दर्द हुआ, जमीन पे गिर गया, मर गया। अभी तक यही होता है, मेरे को ध्यान है, मेरे गूगल पे पढ़ा हुआ है, अब्दुल कलाम जी डाइड बाय द कार्डियक अरेस्ट।
0: अच्छा
1: और एक के कुन्नाथ जो सिंगर थे, बहुत अच्छे सिंगर, स्टेज पे
0: अच्छा
1: परफॉर्म कर रहे थे, देखा हुआ है मेरे
0: हाँ
1: के, 22 की बात है ये,
0: अच्छा
1: कलाम
0: अच्छा
1: जी की तो 15 की है, ये 22 की है। परफॉर्म करते गिर गए और लोग डांस करते रहे, उन्होंने सोचा अभी उठेगा अभी उठेगा, उठा ही नहीं हो तो
0: वाह
1: उसकी डेथ हो गई। लोगों को पता ही नहीं चला कि इनको हॉस्पिटल ले जाना है। तो AED के अंदर क्या करना होता है कि CPR करते रहना चाहिए। CPR करने का भी बहुत अच्छा तरीका है, मेरे को मैं बताऊंगी आपको, AED के बाद CPR के बारे में बताऊंगी। तो AED के अंदर एक 25 से 30 हजार का एक DC शॉक आता है जिसमें डिफिब्रिलेट करना होता है, क्योंकि तो हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है। इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट में एबनॉर्मेलिटी हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला जाता है। तो उसको डिफिब्रिलेट करने के लिए AED से ही शॉक देने से ही वो डिफिब्रिलेट होगा, वरना
0: जी
1: खाली CPR करते हुए ले जाए तो व्यक्ति मौत निश्चित है। हम कई सालों से गवर्नमेंट को भी लिख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिख रहे हैं कि AED, आज AED हर एयरपोर्ट के ऊपर है पर बंद पड़े हैं, किसी को भी नहीं मालूम कि AED ये क्या कैसे काम है, आज भी नहीं पता है। हमारे जयपुर के एयरपोर्ट पर भी है पर अभी भी निकला हुआ नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं नहीं निकाल पाई। तो AED को होना भी चाहिए, AED को मॉल्स के हर फ्लोर के ऊपर भी अवेलेबल होना चाहिए, और हर व्यक्ति जिसकी दुकान वहां पे उनको सिखा के, और AED ऐसी जगह रखना चाहिए कि कोई भी जो जो वहां पे शॉपिंग करने के लिए आए उस फ्लोर के ऊपर वाले जने को पता होना चाहिए, जल्दी से आए AED उठा के लाए, DC साहब दे और उसकी जान बचाए।
0: हाँ
1: ये
0: बहुत
1: मेरा
0: जी
1: सपना है जो मैं सोचती हूँ कि अगर इस रेडियो के माध्यम से मेरी ये आवाज सबको पहुंचेगी तो लोग जरूर ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, सबको कहेंगे कि AED जल्दी से कंपलसरी करें सब जगह, क्राउडेड प्लेसेस पे जैसे मंदिर के
0: हाँ
1: अंदर कोई ऐसी जगह, सब जगह होने जरूरी
0: मंदिर है, पेट्रोल पंप्स हैं, मॉल्स हैं, जो भी पार्क्स
1: है।
0: हैं।
1: ऐसे जगह नहीं जहाँ पे क्राउडेड क्राउड एकदम ज्यादा इकट्ठा होता है, क्राउडेड प्लेसेस। मॉल्स के अंदर क्या कितना गजब का क्राउड होता है, हर
0: बहुत
1: फ्लोर
0: होता
1: के ऊपर
0: है
1: इतना क्राउड गया,
0: जी।
1: अगर मालूम नहीं होगा वहां पे रखा हुआ तो जानकारी है कि उसको यूज कैसे करना है, यूज करना पड़ा चाहिए था, बिना यूज किए कोई फायदा नहीं है। तो AED को यूज में आना भी चाहिए, उसका यूज भी आना चाहिए सबको। पर हार्ट अटैक के केसेस के अंदर एक बहुत बड़ी चीज मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि डिस्प्रिन, सॉल्युबल डिस्प्रिन, सॉल्युबल का मतलब पानी में डालो तो
0: डिस्पर्सिबल
1: घुल जाए, सॉल्युबल डिस्प्रिन। तो ये
0: नाम
1: उसको आप मुंह में डालें, उसको चबा लें या ही दूध पानी में पी लें। अगर ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो गयो, हमारे रास्ता में कहावत है ना, इसका मतलब उस व्यक्ति को एहसास हो गया कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अगर वो कहता है ऐसा और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट के अंदर शोल्डर की तरफ जाता हुआ पेन है और लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है, क्योंकि आर हार्ट 3/4 लाइज ऑफ द हार्ट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, तो इसलिए उसको मुंह के अंदर गोली देके चबाने के लिए दोगे तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल जिंदा पहुंचने का 1 घंटा मिल जाता है। बिलीव मी आई एम ट्रू, ये फैक्ट्स है और ये हम लोग कहना भी चाहते हैं और वीडियो भी बने हुए हैं कि ऐसे व्यक्ति को डिस्प्रिन मुंह में चबाने के लिए दे दो तो जान बच सकती है। कहा जाता है
0: चलिए
1: कि केसेस में CPR करने से भी बचती है ये देने से भी बचती है, 30 रुपए की गोली आती है अगर आप अपने उस पर रखें, बच्चों के पर्स के अंदर आपने अपने पर्स में भी रखें, बच्चों के स्कूल बैग में भी रखें, तो स्कूल से आते हुए बच्चे के अंदर डाउनिंग हो गई, बस डाउन हो गई या निकाला बच्चे को और उस वक्त साथ नहीं ले रहा है, तो उसी वक्त उसको बच्चे को आप इमीडिएटली अपने हेल्प कर सकते हैं।
0: चलिए।

0: तो अब डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा इधर आना चाहता हूँ, आपका जो ये मूवमेंट है, एनजीओ है सहायता, इसके बारे में बात
1: जी
0: करना चाहता हूँ। हमने अभी ये काफी बातें कर ली इसके बारे में, अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि तो ब्रीफ में कि सहायता की स्थापना आपने कैसे की, और ये जो सहायता का मॉडल है ये काम कैसे करता है, अवेयरनेस, ट्रेनिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, इन तीनों चीजों को आप किस तरह से जोड़ती हैं, और कुछ इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में बताइए, किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप करते हैं।
1: देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया कि 1995 फर्स्ट मार्च को मैं रिटायर हुई थी, और रिटायरमेंट के पहले मैं पूरी तरह से तैयार थी कि मेरे को एक ट्रस्ट खोलना है जिसका नाम मैंने सहायता रखा। जून 1995 मैंने इसको खोल दिया और मैंने देना शुरू किया, और हर जगह जहाँ पे जैसे मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, हर साल 1995 के पहले से ही एक रोड सेफ्टी वीक चलाती है साल में एक बार।
0: अच्छा
1: अब तो ये तो पूरे
0: अच्छा
1: इंडिया, हिंदुस्तान में सबको मालूम है कि एक साल में एक बार जनवरी के महीने में प्रेफरेबली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक नारा निकालती है जिसका नाम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा सबको आता ही है, सबको मालूम है। अब आप नहीं उसको करोगे तो मरने मरी जाओगे, लेकिन अगर उसको फॉलो करते हो तो आप जिंदा भी रह सकते हो। लाइफ सेफ्टी के अंदर, लाइफ सेफ्टी किसी को भी नहीं मालूम, तो मैंने कहा मैं तो रोड सेफ्टी में ज्यादा फोकस नहीं करूँ। देते तो है हम, पर हम अगर 2 घंटे का मॉड्यूल है तो उसके अंदर 15 मिनट रोड सेफ्टी में बोल के, और एज पर द नॉर्म्स ऑफ यूरोपियन रिसोसिएशन काउंसिल एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, हम इस मॉड्यूल को अपनाते हैं, इसको देना शुरू करते हैं और सिखाते हैं कि जान कैसे बच सकती है। ये वाली चीज हमारी है जिसको हम कहते हैं बायसेंडर टेक्निक। अब बायसेंडर
0: उपाय
1: के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि भाई बायसेंडर के पास रुकना रुककर करेंगे क्या? हम आसपास के लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनको समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे करना है, पर अगर उनको जानकारी नहीं है तो जान तो नहीं बचा पाएंगे। तो हमने कंटिन्यूअसली किया ये करते करते हमें कई साल जब हो गए और लाइसेंस लेने के लिए जाए वहां वहां मैं देती थी, तो गवर्नमेंट ने रास्ता तय कर दिया कि जितने भी लाइसेंस होल्डर्स उनको जब तक बायोट्रेनर का कोर्स नहीं दिया जाएगा तब तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
0: ओके
1: बहुत अच्छी चीज हुई। ऐसे ही
0: अच्छा
1: एक बार हमारा कोर्स हो रहा था तो ये हो गया कि भाई आप एम्बुलेंस लेके जाओ, उसके अंदर जाओ और इस जगह पे आपको कोई भी जगह मिलती है तो वहां पे आप देखो। तो हमारे पास एक जगह एक बार आया, उस एम्बुलेंस के अंदर ही यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और जान बचाने के लिए, तो हम पास में थे, हम गए और वहां पर हमने देखा कि लड़की का अपने घर से निकल के जान बचाने के लिए उस कार का दरवाजा खोल के एक ही जना था स्टीयरिंग के ऊपर जिसको जान बचा सकती थी। तो उसने कहा कि मेरे को तो जान बचाना आता नहीं, तो मैंने कुछ कोशिश की उसके लिए, पर ऐसे करके पूरे राजस्थान के अंदर मैं और मेरा ड्राइवर है ये हम मेरी गाड़ी लेके जाते थे और जान बचाते थे, और कई लोगों की ऐसे जिंदगियां बची हैं। और एक कोर्स हमारा नेशनल हाईवे हाईवे अथॉरिटी ने हमारे को दिया था, कम्युनिटी लाइफ सेविंग फ्रॉम आमेर टू शाहजहांपुर, जो हमारा
0: ओके
1: राजस्थान का एरिया है। इसके अंदर
0: अच्छा
1: मैंने 2006 के अंदर, 2004 से 6 के अंदर खूब सारे कोर्सेज दिए और इतने कोर्सेज दिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को IIT एक डिस्टिंग्विश अवार्ड दिया, जैसे IIT
0: अच्छा
1: प्रिंस मैकल इंटरनेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड मेरे को दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को सम्मान दिया रोड सेफ्टी का सम्मान दिया, शिमला बुला के फोर्थ
0: ओके अच्छा
1: नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड मेरे को दिया।
0: अच्छा
1: ये सारे
0: अच्छा
1: अवार्ड मेरे को ये 2004 से 6 के अंदर जब मैं हाईवे के ऊपर ये काम कर रही थी तब मेरे को मिले हैं। तो ये काम करते करते मुझे मजा भी बहुत आने लगा, मेरे साथ लोग जुड़ते भी चले गए, कई IAS ऑफिसर वगैरह खूब सारे मेरे फ्रेंड्स सभी जुड़े और उन्होंने भी मेरे को बताया एक आईसी श्रीवास्तव है, अभी भी है हमारे फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को काफी सहायता नाम उन्होंने ही दिया, ये ट्रस्ट का नाम
0: अच्छा
1: दिया। और
0: अच्छा
1: बहुत सारे जने थे, सबके नाम लेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि सब लोग मेरे साथ थे। दिल्ली जाती थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर, एक एक चप्पा मेरे को पता था, हर महीने जाती थी और वहां से लेके आती थी कि हमको जान बचाने के लिए पैसे दो, वहां से हमको पैसे मिलते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से मिलते थे, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से मिलते थे, और रोड सेफ्टी वीक के अंदर हम लोग हर साल 1995 से 2010 तक जब तक ये रोड सेफ्टी विंग चलते रहे थे तब तक मेरे को हर साल सर्टिफिकेट मिला एज अ पर्सनमेंट एंड एज अ बेस्ट पर्सन टू सेव लाइफ्स।
0: तो डॉक्टर टंडन मुझे ये बताइए कि अगर कोई लाइफ सेवर बनना चाहे तो सहायता से कैसे ज्वाइन कर सकता है, किस तरह से जुड़ सकता है वो?
1: हमारा एक अकाउंट है जो QR कोड है उसके अंदर, तो वो मैं भेज सकती हूँ और एड्रेस भेज सकती हूँ जिसके अंदर लोग जुड़ के और बात कर सकते हैं। और एक मोबाइल नंबर है हमारा ऑफिस का जिसके ऊपर कॉल करके और टाइम लेके आके सीख सकते हैं। तो मोबाइल नंबर मैं रिपीट करना चाहूंगी यहाँ पे,
0: तो मैं मोबाइल नंबर के थ्रू आपसे कनेक्ट होके देन दे कैन ट्रेनिंग ले सकते हैं और लाइफ सेवर किस तरह से बनना चाहे उसकी पूरी स्किल वो सीख सकते हैं आपके यहाँ।
1: हाँ, देखिए सोशल मीडिया में हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सब पर अवेलेबल है और हमारा मोबाइल नंबर है 8824689639। ये हमारा मोबाइल नंबर है ऑफिस का और हमारा मंडे टू सैटरडे ऑफिस चलता है। यंग जनरेशन यूथ ब्रिगेड हमारे कोर्सेज को आगे लेके जाती है क्योंकि हमारे सारे ट्रस्टीज ओवर 70 हो गए, मैं 90 की हो गए हूँ। हम लोग सभी अभी भी सारे जगह बहुत ही एक्टिव हैं और यूथ ही जाता है जो ट्रेनिंग देता है

0: सिंगिंग जहां भी लेना चाहे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्स होते हैं, ये जरूर भी लीजिए। हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे ट्रस्ट के थ्रू जो लोगों की जान बच रही है, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रोड डेथ्स। अब अगर इंडिया कुछ रोड एक्सीडेंट में कमी लानी है तो लाइफ सेफ्टी का मॉड्यूल जब तक किसी को नहीं आएगा तब तक जान बचना पॉसिबल नहीं है, ये मेरा मानना ही नहीं है, मेरी पूरा विश्वास है। करके मैं ये कहती हूँ कि ये वाली चीज जरूर होनी चाहिए, लाइफ सेफ्टी लोग अपनाएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे तो लोगों की जान बचेंगी।
1: बिल्कुल सही बात कह रही है। आप रोजाना अखबार उठा के देखते हैं तो हमारे को दो चार एक्सीडेंट्स की खबर मिली जाती है। आज ही अखबार में एक कितना बड़ा एक बस का एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा ही होगा।
0: इसीलिए हम कहते हैं कि स्कूल के अंदर बच्चों के स्कूल के अंदर ले जाते हैं मोबाइल नंबर से सबों के, तो इनकेस ऑफ इमरजेंसी नंबर भी एक ऐसी चीज है जो हम हमारे लॉक स्क्रीन के ऊपर लगा लेते हैं, मैंने और हमारे घर वालों ने लगाए, उसको ऐसे लगा सकते हैं कि बस बिना खोले गई व्यक्ति देख सकता है कि घर वालों को कैसे बना। हमारा तो पैसा सारा खर्चा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, हालांकि गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए देना करा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25,000 देना स्वीकार किया है, और ये भी कहा डॉक्टर जी ने कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए तो 2 लाख के करीब का रुपये भी दिया जाएगा, पर इतनी आसानी नहीं होती है। लेकिन मेरे को तो लगता है कि आप अगर ये नहीं कर सके तो कम से कम इनकेस ऑफ एमरजेंसी नंबर तो हर एक को अपने लॉक स्क्रीन में डालें ताकि घर वालों का एक ही कमाई करने वाला व्यक्ति है और उसको अगर कैसी उसके अंदर है तो उसको जान बचाने में कम से कम पता तो चल जाए। देखिए अभी आया था कल ही रात को मैं देख रही थी, बूढ़ा कपल है जिनके उनके बच्चे को किसी ने मार के चला, एसयूवी मार के चली गई और उनके कुछ भी नहीं पकड़ा नहीं गया, उसके शराब पी रखी थी यंग लड़कों ने, उनको पकड़ा नहीं गया। इतना दुख हुआ कल रात को भी टीवी देखते देखते मेरे आंख के अंदर आंसू आ गए कि ये बेचारे अपनी गलती की वजह से, और एक ही लड़का था 32 इयर्स का कमाने वाला वो चला गया और उसको बचा नहीं पाया और कोई सुनाई भी नहीं, क्योंकि 42 आवर्स के बाद में जब पुलिस पहुंची तक तो वो तो उसके शराब का असर खत्म हो चुका था, तो किसी को पता ही नहीं चला कि वो लोग ड्रिंक कर ड्राइव कर रहे थे। तो जो चीजें हमारे आज सब लोग को मालूम है उस चीज को के लिए भी तो हमारे पास साधन उपलब्ध होने चाहिए। जरूरी है कि हमारी जनता जागरूक हो, मेरा अनुरोध है हमारी जनता से प्लीज जागरूक होइए, रोड सेफ्टी के साथ साथ लाइफ सेफ्टी को एक अपना एक अहम हिस्सा मानिए और अपने जिनको आप बचाती हैं उन लोगों को नाम भी हम अलग से देना चाहते हैं। जो अभी कभी और कोई बात होगी तो मैं बताऊंगी, मेरे को तो लगता ही है कि ये चीजें जरूरी है जो अपने जहन के अंदर आप डाल लेंगे तो देखिएगा रोड सेफ्टी जिसके अंदर WHO कहता है इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रोड डेथ्स, 18 से 45 ईयर्स के लोग मर रहे हैं, विकिपीडिया खुद कह रहा है कई सालों से, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एक्शन ऑफ रोड सेफ्टी का तीसरा डिकेड खत्म हो रहा है, दूसरा डिकेड खत्म होने वाला है और अभी तक भी किसी को ये नहीं पता है। नितिन गडकरी जी दूसरे डिकेड में जाके बोला कि हम 50% रिडक्शन रोड एक्सीडेंट मोर्टेलिटी कर देंगे, लेकिन मोर्टेलिटी 50% रिड्यूस करने की जगह तो 1% भी पूरे इंडिया में 1% मोर्टेलिटी भी नहीं कम हुई है। मेरे को बहुत ही दुख होता है इस उम्र में आके इस बढ़ते उम्र के अंदर, मेरा यही प्रार्थना है कि लोग जानकारी लें, लाइफ सेफ्टी का को अपनाएं, मैं हमसे सीखें, इस मोबाइल नंबर पे फोन करें, हमारा एड्रेस भी है जिसको हम आपके इस पे डलवा सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: करके आए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छी बात।

0: चलिए डॉक्टर टंडन, आप थोड़ा सा हम आपके इतने बड़े काम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है, आपको पद्मश्री जैसे सामाजिक कार्य के लिए मिला है, आपको मेडिकल प्रैक्टिस से आगे बढ़कर एक राष्ट्रीय जन जागरण अभियान बन गया है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले किसी एनेस्थीजियोलॉजिस्ट को इस प्रकार का सामाजिक योगदान के लिए सम्मान मिला है। तो इस रिकग्निशन को आप किस तरह से देखती हैं, और पद्मश्री समारोह के बारे में कुछ बताइए। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से आपकी इंटरेक्शन कैसा रहा, किस तरह से उन्होंने बातचीत की, क्या उन्होंने कुछ कहा, कुछ इसके बारे में हमारे साथ शेयर कीजिए ना, उस समारोह के बारे में।
1: जी ये 22 अप्रैल 2024 क्या को मेरे को ये सम्मान चरम घोषित किया गया। जिस
0: जी
1: वक्त घोषित किया, मेरी आंखों से ऐसे आंसू आए कि इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि
0: अरे वाह,
1: 30 साल तक कमिटमेंटली काम करते हुए कि जान बचाने के साधन देते रहे। तो मैंने जब सवेरे हमको हमारी हर एक्सीलेंसी के पास जाने का मौका मिला, और हमको माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने से गुजरना पड़ता है, और जाके उनके साथ झुक कर और गए और हर एक्सीलेंसी से अवार्ड लिया। और शाम को फिर चाय के टाइम पे हमारे घर वालों को वहीं पे बुला लिया था राष्ट्रपति भवन, और उस वक्त फिर भी हर एक्सीलेंसी और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। तो प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा कि मैं रोड एक्शन में काम करती हूँ, तो कहते हैं मुझे तो पता है। तो रात को डिनर पे हम अमित शाह जी के यहाँ जा रहे थे, तो मिली में अमित शाह जी ने हम लोग को अपने दरवाजे पर रिसीव किया, और मैं और मेरी
0: अच्छा
1: बेटी दोनों को रहना, मतलब रहना हुआ सब कुछ अलाउड था होटल के अंदर। और हर
0: जी
1: एक्सीलेंसी के वहां पे भी जब गए तो वो थे अमित शाह, उनकी टेबल पे जब बैठे तो उनके सेक्रेटरी हमारी टेबल पे बैठे थे डिनर के टाइम पे। तो मैंने
0: ओके
1: उनसे पूछा कि ऐसे कैसे हुआ कि प्रधानमंत्री जी को मालूम था कि मैं रोड एक्सेस पे काम करती हूँ। कहना जिस दिन अवार्ड एडवर्टाइज होते हैं तो हम लोग को ये कहा जाता है कि ऐसे जने को ढूंढो कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी तो अपने प्रोफेशन में ही गुजारी हो, लेकिन
0: जी
1: रिटायरमेंट के बाद वो काम नहीं किया हो, कोई और ऐसा सोशल वर्क किया हो। तो मैंने
0: जी
1: एनएससी दिया, तो एक दिन ही दिया रिटायरमेंट के बाद। मैंने एनएससी दिया से संबंधित जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में से निकाल के, यूरोपियन रिसर्च काउंसिल, अमेरिका चीजों को सबको देखा समझा, बहुत जगह गए, काम सोचा, इसको डाला, इसको प्रैक्टिकल यूज में लिया। 30 साल तक करते रहे, मैं ही नहीं, मेरी डेडिकेटेड टीम और मेडिकल प्रोफेशनल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर ने सबने मिलके इतना काम किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, यूथ को भी हम कर देते हैं। तो जब किया तो फिर जब सेक्रेटरी ने ये बोला तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमें पद्मश्री इसलिए मिला है कि हमने एनेस्थीसिया छोड़ के बाद भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट में, क्योंकि मैं सिर्फ अकेली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पिछले करीब करीब 100 साल हो गए एनेस्थीसिया को, तो इससे कई
0: जी
1: सेंचुरीज हो गए एनेस्थीसिया चलते चलते। जो
0: वाह,
1: हमारा जहन है उसके अंदर तो हम किसी को भी नहीं मिला। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया वाले भी मेरे को कहते हैं, मैडम आपने तो हम 4 साल लगा दी, हमको तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बहुत ही गर्व है कि आपको पद्मश्री से नवाजा गया। तो ये सब चीजों से इतना उत्साह है कि अभी लगता है कि ईश्वर प्रदेश जितने साल तक और जीवाएगा मैं काम करती रहूंगी। मैं ही नहीं, मेरे ट्रस्टी थी, मेरे यूथ भी। आज हमारा यूथ इतना मोटिवेटेड है कि जो शुरू के दो जने थे उनको तो मैं राइट एंड लेफ्ट शोल्डर ही बोलती हूँ, मेरी जान ही
0: अरे
1: बोलती हूँ। उन लोग को तो मेरे बच्चे हैं, इनको सब कुछ पता है, सब कुछ करते हैं। मैं दिन में रात में किसी तरह इनको कॉल करती हूँ, कोई काम होता है, कहीं जाना होता है, ये लोग कहीं भी हेजिटेट नहीं करते हैं, जाते हैं। जयपुर से बाहर भी, राजस्थान के बाहर भी जाके और पशु देख के आते हैं, सुबह जाके रात को आने, रात तक आना, बहुत इतनी मेहनत करते हैं। मैं सोचती हूँ ये जज्बा सबों में आ जाना चाहिए, क्योंकि सड़क का इस्तेमाल तो हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है, बिना सड़क का इस्तेमाल किए कोई कहीं जा नहीं सकता है। तो
0: जी सर,
1: इसलिए ये सबके काम की चीज है। सब लोग प्लीज मेरा आह्वान सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, बिना लाइफ सेफ्टी के आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाईवे का हाईवे से यह हालत है कि 3% ऑफ हाईवे अगर है और डेथ्स उसके अंदर हो रही है 30%, मतलब
0: जी
1: जो डिस्क्रिपेंसी है परसेंटेज ऑफ हाईवेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रोड एक्सेस, ग्रेविटी ऑफ रोड एक्सेस हाईवे से बहुत ज्यादा होती है। तो जो गांव के लोग हैं एकदम से 1-1 किलोमीटर दूर के अंदर राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हाईवे पे हमने ट्रेनिंग दी है, वो लोग आके और एकदम से पहुंच के जान बचाए। जो मैंने बोला है आपको कि दिल्ली से जयपुर वाले का एनएसआई ने दिया था, उसके अंदर मैं खुद जाती थी। और अभी तक भी, आज तक भी वो लोग कहते हैं कि मैडम अब हमें दिल्ली जयपुर हाईवे पे हमको कम बुला रही है, हमसे कम करवाती है, हम अभी भी आप खासे सीखना चाहते हैं, जानकर से बच दीजिए। तो ये सब चीजें तो मेरे को लगता है कि सब लोग को उत्साह मिलना चाहिए मेरी बात से, और उत्साह मिले और मेरे से कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं जरूर सिखाना चाहूंगी। हमारा ट्रस्ट सिखाना चाहेगा, हमारा यूथ सिखाना चाहेगा। यूथ इज द फ्यूचर जनरेशन ऑफ एवरी कंट्री। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत मजा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को चलते चलते आपने इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर कोई एक लास्ट ब्रीफ पे कोई छोटा सा मैसेज आप देना चाहें हमारे लिस्टनर्स को तो वो दे दीजिए, फिर हम रैप अप करते हैं इसको।
1: यंग जनरेशन को हम कहना चाहती हूँ, देखिए यंग जनरेशन ही है जो ये काम कर सकती है कि इसके करेंगे। कोई बच्चा और कोई बूढ़ा रेड लाइट को स्किप नहीं करता है, तो जरूर कहीं भी प्लीज स्किप ना करें, क्योंकि सिर्फ थोड़ी देर के लिए येलो लाइट होती है, उसके बीच के अंदर लेफ्ट वाला फिर से आता है। प्लीज अपना ख्याल करिए, क्योंकि माँ बाप जिंदगी भर रोने के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो यूथ को ही मेरा ज्यादा कहना है कि हमारा मोबाइल मॉड्यूल नहीं सीखे, बल्कि अपनी जान को भी सुरक्षित रखें, ताकि आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहे, हंसी रहे, हंसी बोलते रहे, यही मेरी इच्छा है। क्या बात। एक और चीज, हमारा यूथ का परसेंटेज सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा यूथ का परसेंटेज इंडिया के अंदर है। उसको सहेजना बहुत जरूरी है, यूथ को सहेज के रखे रखे, और सबसे ज्यादा यूथ ही मर रहा है, परसेंटेज ऑफ यूथ ही मर रहा है, यंग यूथ की डेथ सबसे ज्यादा हो रही। तो यूथ प्लीज संभल के चलिए, सुरक्षित पर अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। जैसे आप बाहर जाते हैं और उनकी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, वैसे इंडिया के अंदर भी जो सेफ्टी रूल्स है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर चेंज करे हैं, उनके अंदर करें, उनको सभी को फॉलो करिए, ताकि कोई भी SUV आके अपने अधिकारी पर ऐसे लोग बेचारे जो पेमेंट जो सोचे उनको मार कर लोग भाग जाते हैं, हिट एंड रन करते हैं, ये चीजें नहीं होंगी। तो हमारे यहाँ देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित है।
0: तो डॉक्टर टंडन, पूरे रेडियो SN परिवार और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपको पद्मश्री सम्मान के लिए हार्दिक बधाई, और आपने जो इतने बढ़िया बढ़िया उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको विनम्र नमन है हमारी तरफ से। वी विश यू गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड मेनी मोर ईयर्स ऑफ इंस्पायरिंग सर्विस। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और आभार हमारी तरफ से।
1: थैंक यू वेरी मच।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें।
4: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

इस्तीफा, जुर्म की सबसे बड़ी सजा माफी, समझदार को इशारा काफी। तो भगवान सबको इशारे में समझने लायक अक्ल दे कि एक था कुम्हार। माटी, लीद, गार, चाक और नियाम से तंग आकर उसने छेनी हथौड़ा थाम लिया और देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ने लगा। उसका हाथ बेहद साफ था। हथौड़े की ठक ठक से वो कुछ ही दिनों में सारे इलाके में मशहूर हो गया। किसी और की गढ़ी मूर्तियां लोगों को पसंद ही नहीं आती। छोटे बड़े तमाम मंदिरों, थानों, देवरों और ठाकुर द्वारों में उसी की मूर्तियों की थापना होने लगी। उसके पास एक गधा था, गधे जैसा गधा, लंबोतरा चेहरा और वो ही ढैंचू ढैंचू का रेखना, वे ही लातें और वे ही सारी बातें। उसके मालिक कुम्हार ने मौज में आकर देवी देवताओं के शान के मुताबिक गधे पर सुरंगी झूल डाली, बबूल का ढोर, चंदन का ढांचा बनवाया। मूर्तियां तो वे ही थीं, पर कुम्हार का रुतबा काफी बढ़ गया। गधे पर मूर्तियां लादे जब वह तयशुदा मुहूर्त पर पहुंचता तो लोग उसे बधाते, आरती उतारते, मालाएं पहनाते, गुलाल उछालते। औरतें गधे पर भी हथेलियों से गुलाबी छापे लगाती, मांडड़े चितेरती। मूर्तियां गढ़ने वाला कुमार तो घी के पकवान खाता ही था, पर साथ ही साथ

गधे के ठाठ भी कम नहीं थे। लपसी, खीर, गुलगुले, घेवर और मालपुए खा खा कर वो कौड़ी की तरह चमकने लगा। उससे पहले शायद ही किसी गधे की ऐसी मौज बनी हो। लोग बाग दूर से ही कुम्हार और गधे को पहचान जाते, हाथ का काम छोड़कर उसकी ओर दौड़ते, मूर्तियों को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते, औरतें गीत गाती। पर गधे की अक्ल को क्या कहें कि उस खातिर और आव भगत से उसे यह भरम होने लगा कि वह उसके चरणों में शीश नवाते हैं, दंडवत करते हैं, बनाव सिंगार से लदी सुंदर सलोनी रमणियां उसी के लिए गीत गाती हैं, नरम नरम अंगुलियों से उसी के लिए मांडड़े चितेरती हैं। गधे का मालिक कुम्हार तो अपनी हैसियत अच्छी तरह जानता था, पर सुंड मुसुंड गधे का दिमाग फिर गया। ऐसा काहिल हुआ कि जब भी मौज में आता रुक जाता, पेट भरने पर भी गुलगुलों में मुंह डाले रहता, औरतों के गीत गाती टोली से टलना ही नहीं चाहता। मजबूरन कुम्हार को उसकी धुनाई करनी पड़ी, तो उसे ना चाहते हुए भी वहां से चलना पड़ा। दुखी मन से कुम्हार को बद्दुआएं दे देता। एक मर्तबा गौने पर आई नई बहू का कुंवारा रूप देखकर उसका एक अंगुल भी आगे बढ़ने का मन नहीं हुआ। कोंचते कोंचते कुम्हार की नाक में दम आ गया, पर पट्ठा टस से मस नहीं हुआ। बजरंग बली की मूरत की थापना का मुहूर्त निकला जा रहा था। आखिर कुम्हार का दिमाग गर्म हो गया, जम कर उसकी मरम्मत की। लहू लुहान होने पर उसे बेबस चलना पड़ा, पर मन में पक्की गांठ ली कि मुफ्तखोर हत्यारे कुम्हार के पास अब नहीं रहेगा। इतने लोग लुगाइयों के सामने इतनी बेहरमी से मारा, कुछ तो लिहाज मुरव्वत करनी थी। सयानों ने कितना लताड़ा, पर उसके कान पर जू न रेंगी। जाने कहां की मैं है, दिमाग आसमान में चढ़ा है। वो कोई मामूली गधा होता तो लोग उसके चरणों में शीश क्यों नवाते, मेहंदी रचे हाथों से बहू बेटियां छापे क्यों लगाती, उसे पकवान क्यों परोसती। सभी देवता और आदमी जब एक सरीखे नहीं होते तो सभी गधे भी एक सरीखे नहीं होते। वो अवतारी गधा ना होता तो कौन उसे सर आंखों पर बिठाता। यह बात उसके रोम रोम में घर कर गई। क्यों किसी की गुलामी करें, साला सर पर मूर्तियां ढोकर ले जाएगा तब पता चलेगा, सारी मटर गश्ती ठिकाने आ जाएगी। इस भरम के दूसरे ही दिन वो रस्सी तोड़ाकर भाग छूटा। एक एक घर उसका जाना पहचाना था, सीधे एक महाजन के यहां जा पहुंचा। कुम्हार के साथ वहां काफी खातिर हो चुकी थी। पांच मंदिर तो उसने खुद बनवाए थे, छक्कर घेवर और मालपुए खाए थे। चितेरते ही नथुओं में घी की महक घुल गई। सेठ के छोटे लड़के की बारात चढ़ रही थी। गुड़ की मांगलिक लपसी से एक बड़ी कड़ाही भरी थी। खाने की तैयारी हो रही थी कि हमेशा वाली खातिरदारी और मान सम्मान के भरोसे वो मस्तानी चाल से कड़ाही के पास गया। इधर उधर देखभाल करने की क्या जरूरत, भरम के गुमान में कड़ाही में मुंह डालकर लपसी खाने लगा। सहसा नाई की नजर उस पर पड़ गई। उसने न तो छापे देखे ना मानड़े, जलती हुई लकड़ी खींच कर नाक पर दे मारी। उसकी आंखों के सामने बिजली चमकी, हक्का बक्का खड़ा रहा जैसे काठ मार गया हो, भागने का भी होश न रहा। फिर नाई के कैसी कोताही, पीठ पर चार पांच एक और जमा दी। वो रेंकता हुआ सर पर पांव रखकर भागा। शायद जल्दी जल्दी में उसे पहचाना नहीं। जलन की चरमराहट जरा कम होने पर वो एक जाट के यहां जा पहुंचा। वहां भी काफी मजे लूट चुका था।
दूध, दही और हलवा। चौधरी ने तीनों देवरों की थापना करवाई थी, कुमार को सोने की चौकी मिली थी, गधे के बदन पर भी गुलाबी छापे मांडे थे, मेहंदी का टीका निकाला था। उसका सभाग कि चबूतरे पर ही रोटियों की टोकरी रखी थी। आड़े दिन तो दही सोगरे भी काफी, टोकरी में मुंह डालकर भचड़ भचड़ सोगरे खाने लगा। चौधरी हाथ में जेई लेकर बाहर आया तो उसकी आंखें दहक उठी। पंजे के बल होकर पीठ पर ऐसा करारा वार किया कि वो धूल चाटने लगा। उसका गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ, पेट पर दना दन चार पांच और जमा दी। हर चोट के साथ उसकी आंखों के आगे बिजली चमकती। गधा मार खाने में मजबूत होता है, दूसरा जानवर होता तो उठ भी नहीं पाता, पर वो तो ठोकरों के साथ ही आपा संभालकर घोड़े की रफ्तार से भागा। राह में उसके देखे भाले लुहार का घर आया। धौंकनी चल रही थी, पास ही बीज के लिए बाजरी की गठरी खुली पड़ी थी। ना कुछ बाजरी के लिए कौन मना करेगा, मुंह डालकर बकल बकल खाने लगा। फर फर की भनक सुनकर लुहार ने मुड़कर देखा, मार से लहू लुहान गधा, यहां भी बाज नहीं आया। लुहार के कलेजे में भट्टी दहक उठी। लाल सुर्ख हंसिए के मूठ पकड़कर उसके पुट्ठों पर डाम जड़ दिया। चमड़ी जलने की चरड़ सी आवाज हुई, थोड़ा सा धुआं उठा, रेंकने की ताकत भी ना बची। मुंह उठाकर सर पट भागा, बिना देखे सीधे कुमार के बाड़े की ओर। भरम का जाला कट गया कि कुमार के बाड़े के अलावा कोई आसरा नहीं, मूर्तियां ढोने से बेहतर कोई काम नहीं। भरम की जितनी मार खाई और जो डाम उगड़ा वो ही बहुत, बैठे बिठाए कैसी तो मत ओढ़ ली। जाने बूझे हाथ का परस पाकर उसने आंखें खोली। कुमार प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं जानता था कि तू वापस आएगा। वो चुपचाप पूंछ हिलाते आंसू बहाने लगा, सोचने लगा, किसी दिन हसीये की यह जलन भी खत्म होगी, जरूर खत्म होगी, पर भरम के मानड़े का दाग कभी नहीं मिटेगा।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

गुलामी कब तक? एक सूफी फकीर थे, वो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। एक आदमी स्वस्थ गुलाम खोज रहा था। उसने फकीर को देखा, फकीर स्वस्थ था, कपड़े जरूर फटे हुए थे। आदमी ने सोचा कि यह जरूर कोई भागा हुआ गुलाम है। उस आदमी ने फकीर से पूछा, क्यों जी, क्या तुम भागे हुए गुलाम हो? फकीर ने कहा, अरे वाह, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, भागा हुआ हूं और गुलाम भी हूं। फकीर का मतलब था, परमात्मा से दूर हूं तो गुलाम ही हूं। पर उस आदमी को फकीरी की इस भाषा से कोई मतलब नहीं था। उस आदमी ने कहा, चलो ठीक है, मैं भी एक गुलाम की तलाश में हूं, मैं तुम्हारा मालिक बनने को तैयार हूं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फकीर ने कहा, गजब है, ये तो यही मेरी खोज है, मैं भी तो मालिक को ही खोज रहा हूं। वह आदमी उसे घर ले गया और कहा, अब जो काम मैं बताऊं वो करना। फकीर ने कहा, यही तो मैं चाहता था कि कोई बताने वाला मिल जाए कि मैं करूं क्या, अपने लिए तो सब अनकिया हुआ जा रहा है, तुम भले मिले। आदमी ने सोचा, यह आदमी तो पागल है या कुछ समझने में गलती हुई है। पर फिर सोचा कि गुलाम ने खुद ही हामी भरी है, मुफ्त में मिला है, उसने उससे काम लेना शुरू कर दिया। वह आदमी इतना भला पाया कि उस आदमी ने उसका नाम खैर रख दिया। खैर मतलब भला। फिर उससे कपड़ा बुनना सिखाया तो उसका दूसरा नाम हो गया नसाज, यानी कपड़ा बुनने वाला। खैर नसाज उस सूफी फकीर का नाम हो गया। 10 साल बीत गए, उसने बड़ी सेवा की मालिक की। अब मालिक को कचोटने लगा कि वह बहुत शोषण कर रहा है, कभी उसे कुछ दिया नहीं। आदमी ने नसाज को बुलाया और कहा, मुझे लगता है मैं शोषण कर रहा हूं, अब और नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, अब तुम अपने मालिक हुए। नसाज ने कहा, बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा की तुमने, मुझे मेरा मालिक बना दिया। तुम्हारे पास मुझे दास बनने की कला सीखने को मिली, मेरा अहंकार टूट गया, अहंकार टूटा तो गुलामी मिटनी शुरू हो गई, और देखो तुम तक मुझे मुक्त कर रहे हो। पर सवाल है कि तुम कब तक खुद गुलाम बने रहोगे?

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज, आरजे रंजिला के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी। सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: बहुत खूब।
1: तानसेन जी, आप दुनिया के बेहतरीन फनकार हैं, आप लाजवाब हैं।
2: शुक्रिया हुजूर, आपकी इनायत है बस। मुझे यकीन है मुझसे भी अच्छे कई फनकार हैं दुनिया में।
1: आप शर्मा रहे हैं, आप सबसे बेहतर हैं।
3: जी हुजूर, तानसेन जी सबसे बेहतर हैं।
1: बीरबल, आप खामोश क्यों हैं? आप मेरी बात से सहमत नहीं?
4: माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन जैसा कि तानसेन जी ने खुद कहा है, उनसे भी बेहतर फनकार हैं इस दुनिया में।
1: बीरबल, आपको चुनौतियाँ पसंद हैं। खैर, मैं चाहता हूँ कि आप तानसेन जी से बेहतर फनकार ढूंढ लाए। और इस दौरान हम चाहते हैं कि आप हमारी अंगूठी कुएं से बाहर निकालें, बिना इसमें उतरे या किसी चीज का सहारा लिए। क्या आप इसे कर पाएंगे?
4: हुजूर, जहां तक एक फनकार की बात है, तो तानसेन जी के गुरु ऐसे ही एक फनकार हैं।
1: तानसेन जी आपके गुरु?
2: जी हुजूर, वो मेरे गुरु हैं और एक महान गायक हैं। वो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और एक महीने बाद लौटेंगे।
4: हुजूर, क्यों ना हम उनके लौटने का इंतजार करें और तब तक मैं आपकी अंगूठी निकालने का तरीका भी ढूंढ लूंगा।
1: ठीक है बीरबल, तुम्हें दोनों चुनौतियों को पूरा करने के लिए एक महीना है। बीरबल, क्या हुआ? क्या तुम अपनी बात भूल गए? कहाँ हैं तानसेन जी के गुरु?
4: हुजूर, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। गुरुजी अपनी यात्रा से लौट आए हैं।
1: तो फिर वो इस दरबार में मौजूद क्यों नहीं?
2: हुजूर, वो दरअसल अपने घर से बाहर नहीं निकलते। हमें उन्हें सुनने के लिए उन्हीं के घर जाना होगा।
1: ठीक है, अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते तो हम ही उनके घर चले चलते हैं। वैसे भी हम उन्हें सुनने के लिए बड़े बेचैन हैं। हम कल सवेरे ही उनका गाना सुनने के लिए उनके घर चलेंगे।
4: जैसी आपकी आज्ञा हुजूर।

0: अब यहाँ से आगे हमें पैदल चल के जाना होगा हुजूर, घोड़ों पर यहाँ से जाना मुमकिन नहीं।
1: अगर आपके गुरुजी इतने महान फनकार हैं, तो वो ऐसे वीरान जंगल में क्यों रहते हैं?
0: उन्हें दुनियादारी से दूर एकांत और शांति में रहना ज्यादा पसंद है। जहाँपनाह, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, पर हमें यहीं रुककर उनका इंतजार करना होगा। वो रोज इसी समय अपनी झोपड़ी से बाहर आकर रियाज शुरू करते हैं।
1: ठीक है, लेकिन हम उनकी झोपड़ी में उनका गाना क्यों नहीं सुन सकते?
0: हुजूर, वो किसी और के लिए नहीं गाते, वो तब ही गाते हैं जब उनका मन करता है, इसलिए हमें यहीं इंतजार करना होगा।

0: नमस्कार गुरुजी।
1: ओ धन्य भाग हमारे, आइए पधारिए।
2: जब बीरबल और तानसेन जी ने हमसे कहा कि आप सबसे बेहतर फनकार हैं, तब हमें यकीन नहीं हुआ, पर अब ये साबित हो गया है कि आप सबसे महान फनकार हैं।
1: ये तो संगीत के प्रति आपका प्रेम है, वरना मैं आपके तारीफ के लायक कहाँ, स्वयं संगीत ही महान है।
2: मुझे अच्छे फनकार की पहचान है गुरुजी, कृपया मेरी तरफ से ये छोटा सा नजराना कबूल कर लीजिए।
1: माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं इनाम के लिए गाना नहीं गाता, और वैसे भी मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। ये इनाम आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए।
2: अगर आप इनाम नहीं लेना चाहते तो ना सही, लेकिन मेरे साथ महल चलिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से रहेंगे और जब मन चाहे हम आपका गाना भी सुन सकेंगे।
1: माफी चाहता हूँ हुजूर, परंतु मैं इस जंगल में अपनी छोटी सी कुटिया में बहुत खुश हूँ। ये शांति मुझे आपके महल में नहीं मिल सकती, और वैसे भी मैं सिर्फ ईश्वर के लिए गाता हूँ, आपको ये बात शायद बुरी लगे।
2: हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे जरूर कहिएगा।
3: अब आगे दीजिए।
2: ये बताइए कि वो इतना अच्छा और आपसे भी बेहतर कैसे गाते हैं तानसेन जी?
3: दरअसल हुजूर, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। गुरुजी सिर्फ ईश्वर के लिए गाते हैं, जबकि तानसेन जी आपके लिए और हमारे लिए गाते हैं, और गुरुजी पूरी भक्ति के साथ गाते हैं, जो सिर्फ इस दुनिया और उसके ऐशो आराम को त्याग करने से ही प्राप्त होती है।
2: हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन उस दूसरी चुनौती का क्या हुआ? कहाँ है हमारी अंगूठी?
3: हुजूर हम उस कुएं के पास से गुजरेंगे और वो अंगूठी आपको मिल जाएगी।
2: ये तो हमें देखना होगा।

0: ये लीजिए हुजूर।
1: शाबाश बीरबल, अब ये बताओ कि तुमने ये किया कैसे?
0: हुजूर, जब आपने उस रोज अपनी अंगूठी कुएं में फेंकी, तब मैंने पास में पड़े गोबर को उठाया और उसे कुएं में अंगूठी के ऊपर फेंक दिया।

0: कुछ दिनों बाद जब वो गोबर सूख गया तब ये अंगूठी उसमें जम गई। जब कुछ ही दिन बाद बारिश हुई तब ये पूरा पानी से भर गया और सूखा हुआ गोबर ऊपर तैरने लगा। और ये रही आपकी अंगूठी हुजूर, ना ही मैं कुएं में उतरा और ना किसी चीज का सहारा लिया, प्रकृति ने ही मेरा काम कर दिया।
1: शाबाश बीरबल, तुम लाजवाब हो, शाबाश
0: शाबाश शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।
2: आगरा शहर में दो महाजन हुआ करते थे। उनमें से एक का नाम नेकीराम था। वह एक सीधा साधा शरीफ आदमी था जो कभी अपने ग्राहकों से बेईमानी नहीं करता था, न उनसे ज्यादा ब्याज लेता था और कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। दूसरे का नाम बदीराम था। वह एक लालची आदमी था जो हर समय अपने ग्राहकों से बेईमानी करने की ही सोचता था, साथ ही ब्याज भी बहुत ज्यादा मांगता था। बदीराम के ज्यादातर ग्राहक अपनी सारी जिंदगी उसका छोटा सा उधार चुकाने में बिता देते थे। एक दिन,
0: नमस्ते मित्र।
2: कमल, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई, आओ बैठो।
0: मित्र, मुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है। मुझे अपने व्यापार में लगाने के लिए 500 सोने की अशर्फियां उधार में चाहिए। ये पैसे मैं तुम्हें 6 महीने में लौटा दूंगा।
2: मैं काश तुम्हारी मदद कर सकता। क्या तुम शाम तक रुक सकते हो? आज कुछ लोग मेरे पैसे वापस लौटाने वाले हैं।
0: ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा, इन पैसों की मुझे आज ही जरूरत है।
2: मित्र, क्या 300 सोने की अशर्फियों से तुम्हारा काम बन जाएगा? मैं सिर्फ इतने का ही इंतजाम कर पाया, बाकी की रकम मैं तुम्हें अगले हफ्ते तक दे दूंगा।
0: नेकीराम, मुझे आज रात ही जयपुर के लिए रवाना होना है और अगर पैसे ना मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा सब कुछ दांव पे लगा है।
2: ठीक है, मैं कुछ सोच के बताता हूँ। हाँ, बदीराम बगल में ही है, मैं उसे काफी सालों से जानता हूँ, वो भी एक महाजन है। मैं तुम्हारे लिए उससे पैसे उधार लेता हूँ। मेरा मित्र कमल जयपुर से आया है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे 200 सोने की अशर्फियों की जरूरत है। ये रकम मैं 6 महीने में वापस लौटा दूंगा।
3: ठीक है नेकीराम, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ मैं तुम्हें ये उधार दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक, इस रकम पे 50 सोने की अशर्फिया का ब्याज होगा, और दूसरी ये कि अगर तुम 6 महीने में मेरी ये पूरी रकम नहीं लौटा सके तो तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा।
2: मेरे जिस्म का 1 सेर मांस?

0: ओ, ठीक है, मेरे मित्र को इस रकम की सख्त जरूरत है, तो मैं तुम्हारी ये शर्त मंजूर करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा मित्र मुझे धोखा नहीं देगा और मेरे पैसे जरूर लौटाएगा और मैं तुम्हारी इस शर्त से बच पाऊंगा।
1: ठीक है, ये लो तुम्हारी 200 सोने की अशर्फिया, लेकिन याद रखना, अगर तुमने 6 महीने में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा।
0: कमल, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है मित्र, कैसे भी करके ये रकम 6 महीने में लौटा देना।
2: हे भगवान, बड़ा जालिम आदमी है, घबराओ नहीं नेकीराम, मैं पूरी रकम लेके लौटूंगा और उस जालिम आदमी का कर्ज उतार दूंगा। तुम एक सच्चे मित्र हो, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूं मित्र।
1: नेकीराम, तुम्हारे 6 महीने पूरे हो गए हैं, कहाँ हैं मेरे पैसे?
0: बदिराम, मित्र मैं खुद कमल का इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी तक लौटा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे निराश नहीं करेगा और शाम से पहले जरूर लौटेगा। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें सूरज ढलने से पहले लौटा दूंगा।
1: खैर, तुम्हारे पास शाम तक का समय है, अगर तब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हें याद है ना, तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा।
0: बदिराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मेरा मित्र मुझे निराश नहीं करेगा।

0: नेकी राम, कहाँ हो तुम?
1: बदी राम, मैं अभी तुम्हें ही मिलने आ रहा था। कमल अब तक लौटा नहीं, जरूर कुछ समस्या हो गई होगी। वो एक दो दिन में जरूर लौटेगा, नहीं तो खुद मैं जयपुर जाकर उसका पता लगाऊंगा। मुझे सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत और दे दो।
0: बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। या तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ, या फिर शर्त के मुताबिक अपने जिस्म का एक सेर मांस मुझे दो।
1: बदीराम, मुझ पे रहम करो। अगर तुम मेरे जिस्म का एक सेर मांस काटोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे सिर्फ थोड़ी सी मोहलत और दे दो।
0: अब कोई फायदा नहीं, या तो पैसे दो या फिर अपने जिस्म का एक सेर मांस।
2: ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या समस्या है?
0: मुझे इजाजत दीजिए हुजूर, इस आदमी ने मुझसे उधार लिया है और अब ना तो ये उधार लौटा रहा है और ना ही शर्त के मुताबिक पैसे ना लौटाने पर अपने जिस्म का एक सेर मांस मुझे दे रहा है।
2: क्या ये सच बोल रहा है?
1: जी हुजूर, ये सच है। मैंने उधार लिया था, लेकिन मेरा मित्र जयपुर से अब तक लौटा नहीं, पर मुझे यकीन है वो जरूर आएगा और जल्द ही। मुझे बस थोड़ी मोहलत और चाहिए।
2: तुम इसे थोड़ी सी मोहलत और क्यों नहीं देते? इसे भी अपने ब्याज में जोड़ लेना।
0: नहीं हुजूर, मैं और नहीं रुक सकता। या तो वो मुझे मेरे पैसे लौटाए या फिर मुझे अपने जिस्म का एक सेर मांस दे।
3: नहीं नहीं, ये आदमी तो जालिम है। नेकी राम एक भला आदमी है और उसे थोड़ा समय तो और मिलना चाहिए।
2: खामोश, तुम दोनों मेरे साथ इसी वक्त दरबार चलो। कल सुबह शहंशाह अकबर खुद इसका फैसला करेंगे।

0: इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया हुजूर।
1: बीरबल, अब तुम ही ये मामला सुलझाओ।
2: हुजूर, मेरा नाम कमल है, नेकीराम का मित्र, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। मुझे शहर से लौटते हुए जरा देर हो गई, लेकिन मैं बदीराम के पूरे पैसे लाया हूँ।
1: बदीराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल गए, तो मेरे ख्याल से ये मसला अभी सुलझ गया है।
2: नहीं हुजूर, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, और शर्त के मुताबिक वक्त पे पैसे ना लौटाने पर मुझे अब उसके जिस्म के मांस का एक शेर हिस्सा चाहिए।
1: तुम इतने ढीठ क्यों बन रहे हो? पैसे लौटाने में सिर्फ एक दिन की ही तो देरी हुई है।
2: हुजूर, ये बात है वादा करके उसे निभाने की, लेकिन क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसलिए अगर ये अपना व्यापार बंद करके ये शहर छोड़ दे तो मैं उसका एक शेर मांस नहीं लूंगा।
3: हुजूर, ये शहर मेरा घर है, मैं ये शहर छोड़कर कहाँ जाऊंगा? ये मुझसे कैसे होगा?
2: मित्र, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम मेरे साथ जयपुर चलो और मेरे घर में रहना।
1: ठहरो, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने ढीठ क्यों हो। अपने पैसे लो और ये मसला अभी और इसी वक्त खत्म करो।
2: हुजूर, आप शहंशाह है, आपका हुक्म तो मानना ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि व्यापार में दिए किसी भी वादे की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप यही चाहते हैं तो
4: हुजूर, तुम नेकीराम के जिस्म का एक सेब मांस काट सकते हो, अगर यही तुम्हारी जिद है तो। सिपाही, इन्हें अपनी तलवार दो, जाइए शौक से अपने वादे के मुताबिक अपने हक का एक सेब मांस काट लीजिए। रुको, याद रखना, वादे के मुताबिक तुमने सिर्फ एक सेर मांस की ही मांग की है, लेकिन अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे तो तुम्हें उसके बदले में हमें अपना खून देना होगा।
2: खून? पर लेकिन ये कैसे हो सकता है?
4: ये कैसे करना है ये तुम्हारी समस्या है। वादे के मुताबिक तुम्हें एक सेर मांस ही काटना है, लेकिन खून नहीं बहा सकते। अगर आपसे बन सके तो फिर आगे बढ़ो।
2: मैं नहीं होगा।
4: हुजूर, ये आदमी अपने वादे के मुताबिक अपने हक को छोड़ रहा है।
1: तुम एक जालिम इंसान हो और तुम्हारे इरादे भी साफ नजर आते हैं। तुम बस नेकीराम को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि वो तुम्हारे

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी।
1: हम सचमुच खुशकिस्मत हैं जो इतने होशियार और बुद्धिमान लोग हमारे दरबार में हैं। दरअसल हम सिर्फ होशियार और अकलमंद लोगों से मिलकर ऊब गए हैं। हमें लगता है कि अब हमें कुछ मूर्ख लोगों से भी मिलना चाहिए। एक बादशाह की हैसियत से हमारे आसपास सिर्फ होशियार और समझदार लोग ही होते हैं। हमें लगता है कि हमारा कुछ बेवकूफों से मिलना भी काफी दिलचस्प साबित होगा। बीरबल, हमने आपको जो भी चुनौतियां दी हैं, आपने हमेशा उसे कामयाबी से सुलझाया है। अब आप उनका पता लगाइए जिन्हें हम अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागल कह सकें।
2: क्या आपकी यही इच्छा है जहांपनाह?
1: हाँ, हम यही चाहते हैं। कितना दिलचस्प होगा अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागलों से मिलना। आपके पास 1 महीने का वक्त है उन्हें ढूंढने के लिए।
2: वैसे मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे इतने वक्त की जरूरत होगी जहांपनाह।
1: बहुत खूब, तो आप उन्हें जल्द ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी करें। बीरबल, हम उनसे मिलने को बेताब हैं।
2: जैसी आपकी मर्जी हुजूर।
1: अब आप उनका पता लगाइए जिन्हें हम अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागल कह सकें।
2: इन पागलों को कहां ढूंढें?

0: सुनना जरा।
1: जी जी, क्या बात है? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको जानूं। तुम कौन हो और कहां जा रहे हो?
2: जी मैं रामू हूँ और मैं एक धोबी हूँ। मैं अपने गधे के लिए कुछ चारा लेकर लौट रहा हूँ।
1: तो तुम ये बोझ अपने सिर पर क्यों लादे हो बजाय गधे पर रखने के?
2: जी मैंने सोचा कि इतने लंबे सफर से गधा थक गया होगा और मुझे इसका बोझ कुछ हल्का करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बोझ अपने सिर पर रख लिया।
1: ओ, मुझे मेरा पहला पागल मिल गया।
2: जी हाँ, मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, इसीलिए मैं इसका बोझ कम कर रहा हूँ।
1: तुम मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हारे इस महान काम के लिए तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा।
2: इनाम? वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, चलिए जल्दी चलिए।

0: खबरदार, मैं कहता हूँ मेरा शेर तेरे गाय पे छोड़ दूंगा मैं।
1: अरे लेकिन ये तो गलत बात हुई ना।
0: क्या गलत बात हुई?
1: तुझे इससे क्या मिलेगा?
0: अरे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा शेर
1: मैं तेरे गाय तेरे शेर के हाथ पैर तोड़ दूंगा।
2: रुको, ये लड़ाई अभी बंद करो। अब मुझे बताओ कि तुम दोनों कौन हो और बात क्या है?
1: हुजूर, मैं हरी हूँ और ये गंगू है, ये मेरा दोस्त है, हम दोनों लकड़हारे हैं।
2: तो समस्या क्या है, तुम क्यों लड़ रहे हो?
1: हुजूर, ये मेरी गाय के ऊपर अपना शेर छोड़ने की धमकी दे रहा है।
2: शेर? गाय?
0: हाँ, मैं अपने शेर को कहूंगा कि तुम्हारे गाय को खा जाए।
2: जरा रुको, शेर कहाँ है और तुम्हारी गाय किधर है?
1: जैसे ही भगवान हमें वरदान देंगे मैं उनसे गाय मांगूंगा, और ये कह रहा है कि ये शेर मांगेगा
0: और मैं अपना शेर इसकी गाय पर छोड़ दूंगा।
1: देखा देखा आपने, इसकी ये मजाल, मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा।
2: मुझे शहंशाह के लिए दो पागल और मिल गए। लड़ाई बंद करो, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बादशाह से इनाम दिलवाऊंगा भगवान पर इतना विश्वास करने के लिए।
1: इनाम? इनाम? बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया जनाब।
0: मैं कहता हूँ मेरा शेर तेरे गाय पे छोड़ दूंगा।
1: अरे लेकिन ये तो गलत बात हुई ना।
0: क्या गलत बात हुई?
1: तुझे इसे
2: घर पर ही रहना, आज तो देर हो गई है, हम शहंशाह से कल मिलेंगे। मैं अभी थोड़ी सैर करके आता हूँ। चलो, मुझे तीन पागल तो मिल गए। माफ कीजिए, क्या मैं आपकी मदद करूँ?
3: ओ, क्या करोगे? मेरी अंगूठी खो गई है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ।
2: मैं जरूर मदद करूँगा। तुमने उसे कहाँ गिराया था?
3: मैंने उसे वहाँ उस पेड़ के नीचे गिराया था, पर वहाँ बहुत अंधेरा है इसलिए मैं उसे यहाँ ढूंढ रहा हूँ।
2: क्या पागल है, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा?
3: मैं यूसुफ हूँ। ये नाम वाम छोड़ो, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं?
2: सुनो, मैं तुम्हें बादशाह से इनाम में दूसरी अंगूठी दिलवा दूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कल शहंशाह से मिलवाऊंगा।
3: सच? क्या मुझे शहंशाह दूसरी अंगूठी देंगे?
2: हाँ हाँ, फिक्र न करो और इस अंगूठी को भूल जाओ। मैं शहंशाह से कहूंगा कि तुम्हें इनाम में अंगूठी चाहिए। अब मेरे साथ चलो।
4: बीरबल, तो क्या तुमने पागलों को ढूंढ निकाला?
2: जी हाँ जहांपनाह।
4: क्या तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगी? क्या हमारे शहर में इतने सारे पागल हैं?
2: नहीं जहांपनाह, मेरी खुशकिस्मती से मुझे सारे पागल एक ही दिन में मिल गए।
4: बताओ हमें, वे कौन हैं? और तुम ये क्यों समझते हो कि वो ही सबसे बड़े पागल हैं?
2: अपना पहला पागल रामू है और मैं उन्हें यहाँ अपने साथ लाया हूँ जहांपनाह।
4: बहुत दिलचस्प, पर ये तो सिर्फ चार ही पागल हैं, बाकी दो कहाँ हैं? क्या तुम्हें वे अभी तक नहीं मिले?
2: जहांपनाह, मैं दो इनसे भी बड़े पागलों को जानता हूँ।
4: ओह, हम उनसे मिलना चाहते हैं, वे कहाँ हैं?
2: जहांपनाह, इन सबसे बड़ा पागल हूँ मैं।
4: तुम? ये तुम क्या कह रहे हो?
2: जी हाँ जहांपनाह, मैं इन सबसे बड़ा पागल हूँ, क्योंकि मैं ही पागलों को ढूंढने का पागलपन करने चला था।
4: हमें तुमसे दूसरे बड़े पागल का नाम पूछते हुए डर लग रहा है बीरबल, पर फिर भी तुम बता सकते हो।
2: गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर हम सबसे बड़े पागल हैं आप, क्योंकि आपको ही पागलों से मिलने की चाह थी।
4: बीरबल बीरबल, हमने ये पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं। शाबाश।

0: साहब जहाँ पर
1: बीरबल, आपको आज रात एक खास मामला सुलझाना है। आपको महारानी का हार तलाश करना होगा।
0: जहाँ पना महारानी का हार?
1: हाँ, हुआ यूं कि
0: अच्छा, तो ये मामला है
1: बीरबल मेरे मित्र, आपको इसे आज रात ही सुलझाना है।
0: जहाँ पना, एक बात तो तय है कि हार चोरी ही हुआ है, वरना इतनी बार कमरे में ढूंढने पर जरूर मिल जाता। और चोर रात में कमरे के पास मौजूद सिपाही या फिर दासियों में से कोई होगा। जहाँ पना, कल रात वहाँ तैनात सिपाहियों और दासियों को महारानी के कमरे में बुलवाइए। मैं कुछ देर में हाजिर होता हूँ। मैं अपने एक मित्र को लाने जा रहा हूँ जो चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा।
1: महारानी के कमरे में क्यों, और कौन सा मित्र? तुम क्यों जाना चाहते हो? हम किसी के हाथों तुम्हारे मित्र को पैगाम भेज देते हैं।
0: जहाँ पना, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे खुद ही जाना पड़ेगा मेरे मित्र को लाने, क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियां हैं जो चोर को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी।
1: अब तो हम भी आपके मित्र से मिलने को बेताब हैं बीरबल।
0: मैं अभी हाजिर हुआ जहाँ पना।
2: अरे लाइन में क्या बात, अरे परेशान कर दिया। अरे हमें भी शुदा मिली, पता नहीं क्या हो गया। लाइन में क्या बात, अरे

0: बीरबल, ये क्या तमाशा है? हमने सोचा था कि आप अपने दोस्त को लाएंगे, फिर आप इस गधे को क्यों लाए यहाँ?
1: जहाँपनाह, यही मेरा मित्र है और ये जादुई ताकतों का मालिक है। ये चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। मुझे कुछ समय दीजिए।
0: ठीक है, पर जरा जल्दी करें।
1: जैसी आपकी मर्जी हुजूर। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मित्र जादुई शक्तियों के जरिए चोर का पता लगाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोग बारी बारी अंदर जाए और मेरे मित्र की पूंछ पकड़कर कहे कि मैंने हार नहीं चुराया, अब वापस आ जाए। जैसे ही सभी ऐसा कर लेंगे, मैं अंदर जाकर अपने मित्र से पूछूंगा और वो मुझे बताएगा कि चोर कौन है।
0: बीरबल, हम ये जानने को बेचैन हैं, पर हमें ताज्जुब है कि आप अपने मित्र से कैसे बात करेंगे। अगर आपका दोस्त सचमुच चोर का पता बता सकता है तो समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी कीजिए।
1: जाइए, पर याद रहे, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हें गधे की पूंछ पकड़कर कहना है मैंने हार नहीं चुराया।
2: मैंने हार नहीं चुराया।

0: शाहपना माफ करे, अब मुझे मेरे मित्र से बात करनी पड़ेगी।
1: जरूर।
0: मुझे इन सब के हाथ जांचने होंगे।
1: जरूर, जल्दी करें।
0: जापना, ये रहा आपका चूप।
1: क्या वो यही है बीरबल? ये आप कैसे कह सकते हैं? इस पर तो कोई निशान भी नहीं है।
2: जापना, मैंने आपकी बरसों सेवा की है। मैं कोई चोर नहीं हूँ। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती। और फिर बीरबल गधे की जबान कैसे समझ सकते हैं?
1: हाँ बीरबल, आप ये कैसे कह सकते हैं?
0: जहांपना, मैंने गधे की पूंछ में खास इत्र लगा दिया था। इसी वजह से मैंने सभी से गधे की पूंछ पकड़कर बोलने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ को हाथ नहीं लगाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने सभी के हाथों की जाँच की। सभी के हाथों से वही खुशबू आ रही है, सिर्फ इसे छोड़कर, क्योंकि राज खुले जाने के डर से इसने गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। जापना, गधा मेरे धोबी का है और उसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है।
1: तुम एहसान फरामोश हो। महल में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे भरोसे को तुमने खाक में मिला दिया है।
2: मुझे माफ कर दे जहांपना, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझ पर रहम करे, मैं चोरी की सारी चीजें वापस कर दूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका और दे दे जहांपना।
1: अब तुम भरोसे के काबिल नहीं, तुम्हें हरगिज माफी नहीं मिलेगी। सिपाहियों, इससे चोरी की सारी चीजें बरामद कर इसे काल कोठरी में डाल दो। आप सबको जो परेशानी हुई उसका हमें अफसोस है। जाइए, अपना अपना काम कीजिए। बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी होशियारी ने चोर को पकड़ने में मदद की और महारानी का बेशकीमती हार हमें वापस मिल गया, यकीनन तुम्हारे जादुई दोस्त की मदद से। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया।
0: शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया।
3: दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजीला के साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी।
1: शहंशाह अकबर और राजा बीरबल अक्सर भेष बदलकर अपने सल्तनत का मुआयना करते थे। एक दिन जब वो शहर के बाजार से गुजर रहे थे,
2: बीरबल कितना खूबसूरत कालीन है वो।
3: जी काफी खूबसूरत है हुजूर।
2: चलो जाकर पूछते हैं कि वो कितने में बेच रहा है। सलाम जनाब, वो नीला कालीन कितने का है?

0: ओ माशालाई कौन ये आशिकन शारे काबुल
1: बीरबल ये आदमी क्या कह रहा है कौन सी जबान में बात कर रहा है ये
2: मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ हुजूर जनाब हम जानना चाहते हैं कि वो नीले रंग का कालीन आप कितने में बेच रहे हो कितने का है
0: ओ माशालाई कभी शाम शमर कान इज मंसूब शाम
1: ये क्या बोल रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब रुकना बेकार है चलो वापस
2: रहने दीजिए जनाब हम किसी और रोज आएंगे खरीदने
1: बड़ी अजीब बात है ये हम इस सल्तनत पर हुकूमत कैसे कर सकते हैं अगर हमें लोगों की भाषा ही ना आए
2: हुजूर मेरे पास एक सुझाव है क्यों ना हम एक ऐसे आदमी को हमारे दरबार में रखें जो कई जुबान बोलता हो और उसे हमारे राज्य की शाही दुभाषा भी बना ले
1: ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है बीरबल

0: इसीलिए हमने एक ऐसे आदमी को जो कई भाषाओं का जानकार हो अपने दरबार में नियुक्त करने का फैसला किया है। सुखदेव सिंह जी, ऐसे आदमी को ढूंढने का काम हम आपको सौंपते हैं।
1: हुजूर, आप इत्मीनान रखें, मैं राज्य का सबसे बेहतरीन बहुभाषी ढूंढ लूंगा। जहां अपना, मैंने राज्य का सबसे बेहतरीन बहुभाष्य ढूंढ लिया है। वो कई भाषाएं सफाई और आराम से बोल सकता है।
2: आदाब जहां अपना, मेरा नाम बाहरी है और मैं 10 अलग अलग भाषाएं बोल सकता हूँ। आपके इस काम के लिए मुझसे बेहतर आदमी नहीं मिलेगा हुजूर।
0: तो फिर ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, और ये भी बताओ कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है।
2: जहाँ पना, आपके दरबार में काफी ज्ञानी लोग मौजूद हैं, और क्योंकि आदमी की जबान उसकी असली पहचान है, क्या इस दरबार में कोई आपके सवाल का जवाब दे सकता है?
0: ठीक है, हम अपने मंत्रियों को इसका जवाब देने को कहेंगे। सुखदेव सिंह जी, पहले आप बताइए।
3: तुम्हाला खूप भाषा येत असतील, पण माझ्यासारखी मराठी तर बोलून दाखवा।
2: साहेब, तुम्ही मराठवाड्याचे आहे म्हणजे फक्त तुम्हालाच्या मराठी येत असेल असं नाही ना?
3: मीरू तेलुगु अडा।
2: मीरु चप्पंडी, नेनु एक्कडि नुंचि वच्चानु? मीरु गुंटूरु नुंचि वच्चारु कदा। आम्ही कोलकातार माणूस, आम्ही जाणते चाहिजे तुम्ही बांगलार कोठात थेके एसेचो। আমার বাংলা মিষ্টি আর কবিতা খুব ভালো লাগে, আমি যে কোনো দিন বাঙালি হতে চাইব।

0: जहांपनाह, हमने इसे कई भाषाओं में सवाल किए हैं और हर भाषा पर इसकी जानकारी बिना किसी शक के बेहतरीन है। हम अब भी इसकी मातृभाषा नहीं जान पाए हैं।
1: तुम्हारा क्या ख्याल है बीरबल, तुमने कुछ नहीं कहा अब तक, क्या तुम बाहरी की मातृभाषा पता लगाने की कोशिश नहीं करोगे?
2: हुजूर, मुझे कल तक का वक्त दीजिए, मैं तब तक आपके सवाल का जवाब पता लगा लूंगा हुजूर।
1: ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास कल तक का समय है, हम जवाब जानने को बेचैन रहेंगे।
2: शुक्रिया जहांपनाह।

0: तो बीरबल, क्या तुम्हारे पास हमारे सवाल का जवाब है? क्या तुम ये पता लगा पाए कि बाहरी की असली मातृभाषा क्या है?
1: जी हुजूर, पता लगा लिया है।
0: तो बताओ बीरबल, बाहरी की मातृभाषा क्या है?
1: जहां पना, बाहरी की मातृभाषा बांग्ला है। अरे?
0: बोलो बाहरी, क्या बीरबल सही है?
2: बिल्कुल सही जहांपना।
0: शाबाश बीरबल, अब हमें ये बताओ कि तुमने बाहरी की मातृभाषा की जानकारी कैसे पाई?
1: जी हुजूर, कल रात मैंने अपने नौकर को बाहरी के कमरे के पास जाकर जोर जोर से आवाज करने को कहा। जब वो सो रहे थे, मैं बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ कोशिशों के बाद बाहरी चिल्लाते हुए बाहर आए।
3: आवाज कैसे?
1: दर्द, आश्चर्य और गुस्से के वक्त इंसान हमेशा अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करता है, इसलिए जब मैंने उसे बांग्ला में चिल्लाते हुए सुना, तब मैंने ये गुत्थी सुलझा ली। मैं बाहरी से कल रात उसकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ।
2: कोई बात नहीं राजा बीरबल, आप सचमुच इस राज्य के सबसे चतुर और ज्ञानी आदमी हैं।
0: शाबाश बीरबल, शाबाश।
1: शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे अकबर और बीरबल की कहानी। दोस्तों, आपने अभी सुना अकबर और बीरबल की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मेरी दुनिया में। तब तक आपकी दोस्त आरजे रंजिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के।
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: किसान भाइयों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो टंटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे गाय के गोबर में कितनी गुणवत्ता है, कितने प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कितना लाभ ले सकते हैं हम कृषि में। तो इससे जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
5: मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, पालेकर जी ने भी करवाए हैं, माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर ने महीनों इस पर रिसर्च करने के बाद पाया, उन्होंने भैंस का भी गोबर लिया, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय का भी गोबर लिया, बैल का भी लिया, लेकिन जो भारतीय नस्ल की देशी गाय है, ओनली देशी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, ये जो गाय हैं पूरे भारतवर्ष में जो जिन प्रांतों में परंपरा से चली आ रही, उनके गोबर गोमूत्र में यही कमाल है, बाकी कहीं नहीं मिला। तो हमने देसी गाय के गोबर गोमूत्र की जब रिसर्च करवाई तो गोमूत्र तो खनिज का भंडार मिला, और देसी गाय के एक ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया जीवाणु पाए, जो अन्य किसी में इतने नहीं। तो हम क्या करते हैं जीवामृत बनाने के लिए, देसी गाय जो स्वस्थ है 24 घंटे में रात दिन में 8 से 10 किलो गोबर देती, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। इस गोबर गोमूत्र को इस ड्रम में डाल दें पानी वाले में, और उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और बड़े पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी, और इसको लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 5 दिन घोलना है। छठे दिन 1 एकड़ का खाद तैयार है।
6: अच्छा,
5: अब मिश्रा जी, दुनिया में 1 एकड़ का 6 दिन में खाद तैयार हो जाए कोई पद्धति नहीं। और हाँ, और इसमें साइंस क्या है वो सब किसान बंधुओं के लिए समझने की बात ये है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे, असंख्य होंगे।
6: बिल्कुल।
5: और मूत्र जो हो खनिजों का भंडार है, जो जमीन को तत्व चाहिए उनसे भरा पड़ा है। अब इन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन दे दिया हमने, वो प्रोटीन है
6: जी।
5: जब वो जीवाणु इस प्रोटीन को खाएंगे तो पुष्ट होंगे, बलवान होंगे, स्वस्थ होंगे, और गुड़ डालते हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, और जो मिट्टी के जीवाणु हैं वो उनमें मिलके वो असंख्य संख्या में बढ़ेंगे, उनकी कोई गिनती नहीं, इतनी मात्रा में बढ़ते। अब इस घोल को हम 6 दिन से 12 दिन के बीच में स्प्रिंकल के द्वारा और ड्रिप के द्वारा या खुले पानी में, पानी के साथ इसको छोड़ दें, एक ड्रम को 1 एकड़ में
6: जी।
5: तो ये पूरे खेत में फैल जाएगा। जब ये खेत में जाएगा तो ये वहां जामुन का काम करेगा, जैसे 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दें तो सारा दूध दही में बदल जाता है, ऐसे ही ये जीवाणु जामुन का काम पूरे खेत में जाके करेंगे, और मिट्टी के जीवाणुओं से मिलके अनेक तरह के बैक्टीरिया वहां पैदा होंगे, अनेक प्रकार के, और ये बैक्टीरिया ही वो हैं जो 78% नाइट्रोजन आकाश में है उसको ये खींचेंगे और ये पौधे की जड़ को देंगे। इसके अतिरिक्त हमें नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी बाजार की जरूरत ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो, हमारी धरती में फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, ये तत्व पहले से ही विद्यमान होते हैं
6: जी।
5: लेकिन ये सारे तत्व धरती में होते हुए अपने आप पौधे के भोजन का निर्माण नहीं करते।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।
5: उदाहरण के लिए, बहुत मोटा उदाहरण, हमारे घर में किचन, रसोई है सबके घर में, रसोई में नमक भी है, तेल भी है, आटा भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, सारी चीज है, लेकिन उससे अपने आप भोजन तो नहीं बनेगा।
6: अपने आप तो नहीं बन सकता जी,
5: सारी चीज है लेकिन भोजन नहीं बनेगा। भोजन कब बनेगा, जब हमारी माता बहन उठेगी, वो आटे को परात में डालेगी, पानी से गूंदेगी, चपाती बनाएगी, दाल उठाएगी, सब्जी काटेगी, छौंका लगाएगी, पकाएगी, तभी वो भोजन तैयार होगा खाने के लिए। बिल्कुल जो काम रसोई में हमारी माता बहन करती है, वही काम किसान के खेत में जीवाणु करता है। जो तत्व धरती में है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम आदि जो तत्व हैं, वो गांठ बनाए पड़े हैं, उनसे उनको तोड़ के भोजन बनाने का काम पौधे के लिए जीवाणु करता है। तो धरती में जितना जीवाणु बढ़ेगा उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। लेकिन जो रासायनिक खेती है वो इन जीवाणुओं को मारने का काम करती है। तो यदि लंबे समय आप रासायनिक खेती करते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम बंजर जमीन बना के देंगे, कुछ नहीं पैदा होगा एक समय के बाद, बिल्कुल कुछ नहीं पैदा होगा। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो मित्र कीट हैं खेती में, किसान के बहुत बड़े मित्र हैं, उनमें एक केचुआ है, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सबसे बड़ा मित्र है। और ऐसे और भी कीट हैं जो मित्र का काम करते हैं। वो मोटा उदाहरण, आप एक खेत से एक केचुए को पकड़ो और यहां उसको लेके आओ, रखो और उसके ऊपर यूरिया डीएपी डाल दो, जिएगा या मरेगा?
6: नहीं जिएगा।
5: सीधा इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा
6: जी?
5: वो मरेगा। और उसी के ऊपर गाय का गोबर डाल दो तो वो परिवार बढ़ाएगा,
6: बिल्कुल
5: वो स्वस्थ होगा, उसका भोजन मिलेगा।

0: मिलेगा। अब इतना स्पष्ट है किसान बंधु के लिए कि हम रासायनिक खेती के द्वारा उन मित्रों को मारने का काम कर रहे हैं, तो बताइए धरती का ऑर्गेनिक कार्बन गुणवत्ता, उसकी फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? और इस बात को साइंटिस्ट समझेंगे तभी बात बनेगी। और इसके मैं बड़े प्रबल उदाहरण दूंगा अपने खेत के, बिल्कुल प्रबल। इस समय भी हमारे ये मित्र कीट कुछ बचे हुए हैं और वो यूरिया डीएपी कीटनाशक से डरते हुए धरती में नीचे समाधि लिए बैठे हैं। यदि उनका भोजन उनको मिलेगा तो वो अब भी बेचारे अपना काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं संभले और यूं ही चलते रहे, उनका बीज ही नष्ट हो गया तो फिर जमीन बंजर बनेगी, विनाश का रास्ता दिखाई पड़ता है। एक मैं और मोटा उदाहरण आपको देता हूं, आप तो गांव में रहते हैं, मुझे अपार प्रसन्नता और गांव के लोगों के लिए काम करते हैं बहुत खुशी मेरे को हुई। जब किसान घर से अपनी गाय को खोलता है, खूंटे से गाय निकली घर से बाहर और कच्ची जगह पर वो चलती है और चलते हुए एक गोबर यहां किया, एक यहां किया, एक यहां किया और चली गई, ऐसा होता है ना
1: जी? बिल्कुल।
0: आप अब गांव में जाके ये अनुभव करना, वो जो गाय ने गोबर किया है ना, आप 3 दिन के बाद उस गोबर को उलट के देखना, उसके नीचे आपको 2-3 छेद मिलेंगे।
1: अच्छा,
0: उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे। जो किसान बंधु सुन रहे हैं ना मेरे को, वो इस बात को एकदम स्वीकार करेंगे, ऐसा है। अब गाय ने जब गोबर किया तब छेद नहीं थे वहां, उस समय छेद नहीं था, लेकिन धरती में समाधि लिए जो मित्र जीव बैठे हैं उनको ऊपर उनका भोजन मिल गया। और उसकी गंध पा करके धरती को फोड़ के वो ऊपर भोजन लेने के लिए आ गए। ऐसे ही जब हम जीवामृत खेत में डालते हैं ना, जो मैंने बताया जी, और घन जीवामृत डालते हैं, तो ये अर्थवर्म 10 से 12 दिन के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर देगा, धरती को फोड़ के एकदम काम शुरू करेगा। और ये जो केचुआ है ये अपने जीवन में हजारों बच्चों को जन्म देता है और जब मरता है तो पौधे को खाद दे करके जाता है और नया परिवार बढ़ा के जाता है। और भारतीय केचुए में विशेषता क्या है, वो जो हमारा वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ तो विदेशी है, वो तो गोबर ही खाता है, हमारा केचुआ मिट्टी भी खाता है और गोबर भी लेता है, ये दोनों करता है। और ये काम कैसे करता है, ये देखिए, यूं जाता है और दूसरे छेद से आता, इस छेद से जाता, इससे आता, इससे जाता, इससे आता, जिस छेद से जाता उसे वापस नहीं आता, नया छेद बना के आता है। और ये 8-10 फीट तक जमीन में छिद्र बनाते हुए, कैसे छिद्र बनाता है, जब ये नीचे जाता है तो वर्मी वो शरीर से छोड़कर छेद को लीपते हुए जाता है, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता
1: जी।
0: और धरती में जो खनिज है उनको खा के पेट से निकाल के पौधे की जड़ को देता, जिसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व हैं जो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और पौधे की खुराक देने का काम करते हैं। ये काम के कर्तार्थ पर
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: अब जो छिद्र हैं उनसे ऑक्सीजन धरती को मिलता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और इसका कितना बड़ा काम ये करेगा कि जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे, तो ये अपना इतना परिवार बढ़ाएगा कि 1 एकड़ में मेरा खेत जो है उसमें कई लाखों की संख्या में केचुआ काम करता, कई लाख, और रात दिन काम करता, बिना पैसे का मजदूर है
1: जी।
0: वो सारी जमीन को मुलायम बना देता है, नीचे की जमीन को उलट देता, खनिज को नीचे को ऊपर दे देता, ये काम करता है। और जब लाखों केचुआ यही काम करते हैं तो पूरी धरती में छिद्रों का भंडार बनता, ऑक्सीजन से फर्टिलिटी बढ़ेगी, और जब वर्षा आएगी और चारों तरफ मेड़ हैं खेत के, सारा पानी इन छिद्रों के द्वारा धरती माँ के पेट में चला जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए जो सरकार खर्च करती है उसकी कोई जरूरत नहीं। यदि सारी धरती पे प्राकृतिक खेती होगी तो ये बाढ़ आने की नौबत ही नहीं आएगी। अब बाढ़ आती कैसे है? जमीन को यूरिया डीएपी ने पत्थर बना दिया, सख्त कर दिया, मित्र जीव बचे नहीं, छेद उसमें है नहीं। बारिश बरसती है, पानी तेजी से बह करके नदी नालों में जाके बाढ़ आ जाती है, धरती में जाने नहीं पाता, वाटर लेवल डे बाय डे डाउन आ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये विनाश का रास्ता यूं चल रहा है। दूसरा मिश्रा जी, जब ये तो हुई वर्षा का इलाज, पानी जाएगा तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, और ये पानी भी कैसा है, स्टीलाइज पवित्र वर्षा जल, धरती में जाएगा तो पीने के लिए भी काम आएगा, खेती के भी काम आएगा, हमारा भूगर्भ भंडार जल का भरेगा। जब अकाल पड़ेगा, जून का महीना होगा, लूएं चलेंगी, बारिश होगी नहीं, ऐसे समय पौधा कैसे बचेगा? तो ये जो छिद्र बनाए हैं ना, जब धरती तपेगी तो नीचे तो पानी है ना, उसमें वाष्प बनेगी
1: जी।
0: जब वाष्प बनेगी तो वो वाष्प इन्हीं छिद्रों से ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी। अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। और इसका उदाहरण क्या है? जंगल में जो नियम काम करता वही मेरे खेत में करना चाहिए। जंगल के पेड़ को यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, कीटनाशक कौन देता है, पानी कौन देता है? लेकिन समय पर आकर के वो पेड़ फलों से लद जाते हैं। आप जंगल के किसी पेड़ के पत्ते को तोड़कर लैब में ले जाओ और उसको टेस्ट कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलेगी। जब वहां ये नियम काम करता तो वही नियम हमारे खेत में भी करना चाहिए। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। प्रकृति जो काम जंगल में करती वही काम खेत में होना चाहिए, इसका नाम प्राकृतिक कृषि है। तो इसका ये इतना बड़ा लाभ है। इसमें दूसरा हमें खाद बनाते हैं, ये तो जीवामृत है
1: जी।
0: एक है घन जीवामृत, वो क्या है? जब किसान के पास ज्यादा गोबर हो जाए, जीवामृत की जरूरत खेत में ना रहे, तो वो सूखी देसी गाय की एक क्विंटल गोबर की खाद धरती में थोड़ा उसको पीट के बारीक कर ले, उसमें यही चीजें डालनी जो आपने जीवामृत में डाली, उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी और 5-7 किलो गौमूत्र उसमें मिला के और पशुशाला के कोने पे रख दे, प्लास्टिक से ना ढके, जूट की बोरी से ढक दे, ये घन जीवामृत 6 महीने भी खराब नहीं होता। इसमें जीवाणुओं का भंडार बन जाएगा। जब किसान खेती बीजे तो उससे पहले डीएपी की तरह धरती में इसको डाल दे और उसके बाद बीजे। ये आप ज्यादा कम बढ़ा सकते हैं, कोई खतरा नहीं। 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ डाल दें तो उत्पादन बहुत बढ़ेगा। और जीवामृत जो है, हर पानी जब देता किसान, हर पानी में जीवामृत छोड़ दे और 15-20 दिन में फसल के ऊपर 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डालकर उसका स्प्रे कर दे, तीसरे दिन फसल की रंगत बदलेगी। तो ये 2 तरह के हम खाद बनाते हैं। अब शुरू में जब हम रासायनिक से प्राकृतिक खेती में आएंगे तो धरती की ऑर्गेनिक कार्बन कम है, धरती बंजर कमजोर हो चुकी है, तो उसमें कीट पतंग आएंगे। उनके निदान के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी, प्राकृतिक कृषि, इसमें पूरा विवरण मैंने दिया है। उसमें हम नीमास्त्र, सूंठास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, ऐसे कुछ कीटनाशक बनाते हैं प्राकृतिक। गाय मूत्र में नीम, धतूरा, आग, चिरायता, गिलोय, ऐसी जड़ी बूटियों को पका के रख लेते हैं और उसको पानी में 2 लीटर डाल के, 15-20 लीटर पानी में 2 लीटर डाल के टंकी से छिड़काव करेंगे तो कीट का भी इलाज हो जाएगा। और उसमें जो फंगस वगैरह आती तो खट्टी छाछ, कई कई महीने पुरानी खट्टी छाछ, उसको भी हम पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं, तो वो पौधे को ताकत भी देगी और रोगों से भी बचाएगी। इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा, दोनों घर में किसान बना सकता है। और जब आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, ताकत उसकी बढ़ जाएगी, तो बीमारी आनी खत्म हो जाएगी। मेरे 200 एकड़ खेत में कीटनाशक में छिड़कता ही नहीं, ये जो मैंने बताया इसकी भी जरूरत नहीं है। अब बीमारी आना ही बंद होगी मेरे खेत में, और ये जो छिड़काव है ये भी कम हो गए हैं। इतनी जमीन उर्वरक बन गई है कि उसमें मित्र कीटों ने अपना काम इतना कर दिया है कि अद्भुत काम उसमें शुरू हो गया। तो एक तो पद्धति खाद के रूप में तो ये है जीवामृत, घन जीवामृत, और इसके साथ एक है आच्छादन, मल्चिंग। जब हम फसल बोते हैं तो इस प्राकृतिक खेती में एक तो मल्टी क्रॉप करते हैं, एक ही फसल नहीं बोते, एक साथ हम कई कई फसलें बीज देते हैं। गेहूं बोज दिया तो बीच में चना बो दो, चना उसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगा। ऐसे हम एक समय पर अनेक तरह की फसल बोते हैं, और वो एक अब आ गई किसान को लाभ हो गया, मूल फसल बचत में, और ये दूसरी फसल खर्चा निकाल देती है उसका, तो इससे किसान की आय भी बढ़ेगी। और जितना धरती को ढककर के हम रखेंगे उतना ही जमीन की और का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। अब ये जो मल्चिंग है वो क्या है, खेत का जो घास फूस है हम उसको आग लगाते हैं, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, इसे प्रदूषण भी बढ़ेगा और हमारे जो जीवाणु वो भी मरेंगे, मित्र जीव भी मरेंगे। हम क्या करते हैं, जो भी अवशेष जमीन में से निकलते हैं उनको काट के जब फसल बो दी, फसल को छोड़ के बाकी खाली जगह है उस पे उसको बिछाओ। उसके कितने जबरदस्त लाभ हैं वो किसान बंधु सुनेंगे। नंबर एक, जब हम धरती को ढक देंगे तो साइंटिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ऊपर होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ना शुरू हो जाता है, और वो आकाश में जाकर के वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। और हम उसे मल्चिंग करके ढकते हैं तो वो उड़ने नहीं पाता, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, एक काम। नंबर दो इस मल्चिंग का लाभ है कि 50% पानी आपका बच जाएगा, 50% पानी सारे देश की धरती का निकलना बंद हो जाएगा। क्यों, जब हम इसको ढके रखेंगे तो ये जो मल्चिंग है ये आकाश में जो जलीय तत्व है उसको खींचती है और ये जमीन को देती है, तो जमीन की नमी जो है ना वो बनी रहती
1: है।
0: किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए, पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए, और इस मल्चिंग से वो नमी बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी वो किसान बंधु इसको भी समझेंगे। आप अपने खेत में कोई फसल काटते हैं और उसका एक गट्ठा बना करके खेत में डाल देते हैं, जून का महीना है, मई जून का महीना, लुएं चल रही हैं, चारों तरफ पानी कहीं है नहीं, तप रही है जमीन। ऐसे मौसम में जो गट्ठा आपका खेत में पड़ा हुआ है फसल का भार, जिसको बोलते हैं गट्ठा बोलते हैं, वो उस भार को उलट के देखें, उसके नीचे नमी मिलेगी। सब किसान इसको स्वीकार, ये नमी कहां से आई जब चारों तरफ सूखा पड़ा है। ये जो मल्चिंग है, अवशेष हैं, ये आकाश के जलीय तत्व को खींच के जमीन को देते हैं, तो पानी की 50% 50% जरूरत ही कम हो जाएगी। दो लाभ हो गए। तीसरा लाभ,
3: किसान साथियों, हम लगातार खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे हैं। सो किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो 90.8 FM के साथ, छावा की आवाज़।

0: FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: તીસરા લાભ ઇસકા યે હૈ કે જો કેચુઆ હૈ અર્થવર્મ હૈ વો રાત મે કામ કરતા દિન મે નહીં કરતા. દિન મે ક્યો નહીં કરતા? જબ વો બહાર આતા તો ઉસે પક્ષી ઉઠા લે જાતે હૈ
2: જી.
1: ઉસકો અપની મોત કા ખતરા હૈ. વો ઇસલિયે અંધેરે મે કામ કરેગા, પ્રકાશ होते ही वो अंदर चुप बैठ जाता है. यदि किसान मल्चिंग करता जमीन को ढकता है तो वो केचवा जो है रात की तरह अनुभव करके मरने के भय उसका खत्म कर दिया तो वो फिर रात और दिन काम करेगा.
2: डबल शिफ्ट,
1: वो डबल शिफ्ट पे आ जाएगा. डबल शिफ्ट करेगा और वो किसान की जमीन को ऑक्सीजन भी देगा, खाद भी तैयार करेगा और वो वर्षा जल का नीचे जाने का भी प्रबंध करेगा और गर्मी में पेड़ को सूखने भी नहीं देगा. ये अद्भुत काम वो करेगा. और चौथा इसका लाभ क्या होगा कि जो जीवाणु हैं जो हमने गोबर से लिए थे, जिनको खाने के लिए हमने दाल का बेसन दिया था, अब धरती में वो आ गए तो क्या खाएंगे? उनको भोजन तो चाहिए. ये जो मल्चिंग है घास फूस, ये उसका भोजन है. वो खाएंगे, ज्यादा काम करेंगे, पुष्ट रहेंगे और इस सारी मल्चिंग को खा के खाद में बदल देंगे. इसको भी खाद में बदल देंगे. और अंतिम पांचवा इसका लाभ क्या है? जो किसान बहुत लेबर लगा करके घास निकालता खेत की, इसके बिछाने से खरपतवार पैदा ही नहीं होगा. क्योंकि उसको सूर्य की धूप नहीं मिलेगी
2: जी.
1: वो निकलेगा लेकिन पीला पड़ के वहीं खत्म हो जाएगा, उसका बीज ही नष्ट हो जाएगा.
2: अच्छा.
1: और ये खरपतवार की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी. तो ये प्राकृतिक खेती का दोनों तरफ से इस रूप में लाभ मिलता है. जब हम ये करेंगे तो इससे ऑर्गेनिक कार्बन, जो जमीन की फर्टिलिटी, वो बढ़ेगी. मैंने अपने खेत में, मेरे दो खेत थे, एक मैं 50, ये 100 एकड़ की मैंने जो बात की है
2: जी,
1: इसमें मैं प्राकृतिक खेती करता हूं. इसी के साथ बीच में एक पक्की सड़क से इधर हमारा 100 एकड़ का खेत था जो मैंने भाड़े पे, लीज पे, ठेके पे किसानों को दिया हुआ था.
2: बटाई पे
1: दिया? बटाई पे दिया
2: जी.
1: ये किसान बंधुओं के लिए बहुत बड़ा प्रमाण, इसे सुनना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं. वो जो भाड़े पे बटाई पे मैंने खेत दिया था, मतलब मैं इकट्ठा पैसा लेता था, बटाई पे नहीं कुछ लेता था मैं. मैंने फिक्स किया था कि मैं 30,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, 40,000 रुपये पर एकड़ लूंगा और मेरा खेत तुम्हारा हो गया. मिश्रा जी, अब से 3 बरस पहले वो सब किसान इकट्ठे होके आए मेरे पास और उन्होंने कहा, जी हम आपका खेत नहीं लेंगे, छोड़ रहे हैं. क्यों छोड़ रहे भाई? कि जी इसमें कुछ नहीं पैदा होता, हमारा तो खर्चा भी नहीं निकलता, हम तो इसने कर्जा ही बना दिए. मैंने कहा क्यों? कि जी होता ही नहीं पैदा. मैंने कहा मेरे ये खेत और ये तो इकट्ठे हैं और जब मैंने जमीन दी थी तब नहीं होता था कि? तब तो बहुत पैदा होता था, अब नहीं होता. मैंने गांव के और लोग बुलाए, भाई ये लोग सत बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल सच कह रहे, कुछ नहीं होता इनमें, खर्चा नहीं निकलता इनका. उन्होंने छोड़ दिए मेरे खेत. मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुरुक्षेत्र में जो डॉक्टर हरिओम की चर्चा की, उनको मैंने बुलाया. मेरे परिचय में भी थे, डॉक्टर साहब किसानों ने मेरा खेत छोड़ दिया और ये कहकर के छोड़ा इसमें कुछ लाभ नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं इसका? उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं पता लगेगा, मैं इस पूरे खेत के मिट्टी के सैंपल लूंगा और इनको यूनिवर्सिटी की लैब में भेजूंगा
2: जी.
1: वहां से टेस्टिंग होने के बाद पता लगेगा भूमि की क्या स्थिति है. उन्होंने सैंपल ले लिए, सैकड़ों सैंपल लेकर भेज दिए. 1.5-2 महीने बाद रिपोर्ट आई उन्होंने कहा किसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 पाया, किसी का 0.4 पाया, किसी का 0.5 से सब नीचे नीचे था
3: जी।
1: तो उन्होंने कहा जी ये किसान जो कह रहे बिल्कुल ठीक है, इस जमीन की फर्टिलिटी खत्म है, इसमें तो यूरिया डीएपी भरकम डालोगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। मैंने कहा अब क्या करूं मैं, तो डॉक्टर हरिओम जी ने कागज पेन लेके लिखना शुरू किया, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटास, इतना जिंक, इतना फास्फोरस, ये और इसमें जो अवशेष होंगे फसल के वो इसी में काटने पड़ेंगे। जैसे धीरे धीरे सालों में बंजर हुई है, ऐसे कई सालों में जाके ये उपजाऊ बनेगी। मैंने कहा ये तो बड़ी चिंता का विषय, इतनी जमीन बर्बाद हो गई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बहुत लंबा रास्ता आपने बता दिया, मैं तो अपने ढंग से खेत करूंगा, आप क्या करोगे? मैं कहा ये जीवामृत घनजीवामृत डालूंगा। डॉक्टर हरिओम जी कहने लगे महाराज दुनिया बहुत आगे चली गई, साइंस का जमाना है, गोबर गोमूत्र से क्या बनेगा, साइंटिस्ट मैं हूं या आप हैं, जो मैं कहूं वो करो। मैंने कहा आप वाले कहने से तो ये बंजर हुई है जो इन लोगों ने किया है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहा मैं यही करूंगा जो अपनी बाकी खेत में करता हूं, जीवामृत घनजीवामृत डालूंगा। वो कहने लगे इसे कुछ नहीं होगा, आपकी मर्जी, जमीन आपकी, मैंने अपना बता दिया राय, अब जो करना करिए, और वो चले गए।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: मिश्रा जी 3 साल पहले उस बंजर जमीन में मैंने 5-5 क्विंटल घनजीवामृत डलवाया पर एकड़, और उसमें धान की रोपाई की। जब भी पानी देता तो जीवामृत का उसमें घोल छोड़ देता, और 15 दिन बाद जीवामृत का मैंने 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डाल के उसका छिड़काव शुरू किया
3: जी।
1: फसल लहलाने लगी।
3: अच्छा,
1: इतना बढ़िया हरा भरा खेत। मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, मेरे जानकार थे वो, मैं कहा एक बार आओ आपको करिश्मा दिखाता हूं। तब उन्होंने 2-3 महीने के खेत को देखा तो उन्होंने कहा खेत तो वही है जिसे सैंपल लिए थे, लेकिन ये इतनी अच्छी फसल कैसे है? तुमने यूरिया डीएपी डाला होगा? मैं कहा ना, एक बूंद भी नहीं, यही डाला बस। तो उन्होंने कहा जब ये फसल कटे तो मेरे को तोल होगा तो मेरे को दिखाना। तो उस बंजर भूमि में पहले साल एवरेज 21 क्विंटल धान निकला मेरा पहले वर्ष, और उसी चीज को मैंने बराबर चलाए रखा। अगले वर्ष उसी जमीन में एक ही साल के अंतर से 28 क्विंटल प्रति एकड़ धान निकला अगले वर्ष। अब वो कहने लगा कि भाई ये हो नहीं सकता, ये तो करिश्मा है। तो उन्होंने एक वर्ष के बाद उस मिट्टी के दोबारा सैंपल लिए, उनकी उत्सुकता बढ़ गई। वो भले आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है, वो जिद्दी नहीं है, और उन्होंने कहा भाई यदि ये है तो ये तो बहुत
3: क्रांतिकारी
1: काम है।
3: जी जी।
1: तो उन्होंने उस पूरी जमीन के दोबारा सैंपल लेके फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार को भेजे और एक दो जगह भेजे, और वहां से फिर रिपोर्ट आई जिस जमीन का एक साल पहले 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे ऑर्गेनिक कार्बन था, उस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन एक साल में 0.7, 0.8 हो गया।
3: अच्छा।
1: वो कहने लगा हमारी साइंस में तो हो ही नहीं सकता। कभी आज भी पूरे देश का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट इस बात को मानेंगे नहीं, और वो ठीक है, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो उनकी सिस्टम तो जीवाणु को मारने का काम करता है, उनका सिस्टम तो केचुए को मारने का काम करता है, मित्र कीट को मारने का काम करता है। जो जीव ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं वो मार दिए तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा कैसे? वो तो ये काम करते हैं। अब हमने जब ये किया तो इससे तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले जीव बढ़ गए, तो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन एक ही साल में 0.3, 0.4, 0.5 से 0.7 और 8 पे गया। तो उसने कहा भाई कमाल हो गया, ये तो अजीब है। और आश्चर्य उनको तब हुआ जब तीसरे वर्ष उसी में 32 क्विंटल एवरेज से धान पैदा हुआ, 32 क्विंटल। और अभी एक महीना पहले ये अब की साल जो कटा है उन्हीं खेतों में 33 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ। और अभी आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी गुजरात की 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। जब हमारा धान खेत में खड़ा था, दूसरी फसलें खड़ी थी, चारों एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर हमारे खेत में कुरुक्षेत्र गए।
3: अच्छा।
1: उन्होंने जाके देखा और ये अनुभव किया कि ऐसी फसल प्राकृतिक में हो सकती हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन चारों ने स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने अपने और साइंटिस्ट वहां पर भेजे। तो अब मेरी जमीन का, अब उसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अब करवाया है तो वो 0.8, 0.9 और 1 से भी ऊपर चला गया है।
3: अच्छा।
1: 1 से भी ऊपर चला गया। अब स्थिति ये पूरे खेत की हो चुकी है अभी जो किया। इसका एक और अंतिम उदाहरण मैं देता हूं। अब इन साइंटिस्ट में ये देख के आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ सकता है। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतनी जमीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, उसमें रोग भी नहीं आएंगे, हमारी जमीन में खुशबू आना शुरू होगी। अभी पिछले दिनों वही डॉक्टर बलजीत सारन और उन लोगों की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट नया किया। उन्होंने जिला कुरुक्षेत्र की अलग अलग तहसीलों में गए, वो उन तहसील के एक किसान के खेत से मिट्टी ली, दूसरे तहसील के किसान के मिट्टी ली, तीसरे से ली जो रासायनिक खेती करते थे।
3: जी।
1: ऐसे 5 किसान उन्होंने लिए जो रासायनिक खेती करते थे, उनकी मिट्टी लेकर के वो आए और उन्होंने सारी 5 किसानों की मिट्टी को इकट्ठा मिला करके यू मिला लिया और लैब में लेकर रिसर्च किया उस पे, तो उसकी 1 ग्राम मिट्टी में 30,05,000 जीवाणु मिले रासायनिक खेती में। फिर उन्होंने हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की मिट्टी को लिया 5 जगह से फिर उसको यूं ही मिलाया और लैब में लेके गए तो उसमें 161 करोड़ जीवाणु मिले 1 ग्राम मिट्टी में। हमारी 1 ग्राम में 161 करोड़ और रासायनिक में 30,05,000। अब आप ये साइंटिफिक आधार इससे बड़ा क्या होगा? साइंटिस्ट इस बात को तो मानेंगे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जितना ज्यादा होगा तभी वो फसल बढ़िया देगी। और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम मित्र जीव करते हैं, जीवाणु करते हैं, अब रासायनिक तो उनको मारने का काम करती है। और उसके बाद भी इस सिस्टम को जो ना माने तो ये तो किसान के साथ, बेचारे के साथ और लोगों के साथ बड़ी
3: बिल्कुल
1: नाइंसाफी है ना जी। तो ये इतने उदाहरण मोटे मोटे मैंने आपकी सेवा में दिए हैं, मोटी मोटी जानकारी दी है। और इसका लाभ क्या होने वाला है जो मैं निवेदन करता हूं, कहने को ये प्राकृतिक खेती है लेकिन एक काम से अनेक लाभ और क्रांतिकारी काम क्या होगा, रासायनिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है और प्राकृतिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करने का काम करती है। हवा हमारे अनुकूल बनेगी, पानी जल जीवन है, ये उसको वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। और आज पानी पीने लायक नहीं बचा है, बोतल लिए घूमते हैं।
3: जी जी।
1: प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसमें जहर नहीं जाएगा तो हमारा पानी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। 2 लाभ। तीसरा, प्राकृतिक खेती से जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन दे करके जाएंगे और रासायनिक से उनको बंजर जमीन देके जाएंगे। चौथा, जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है इसका नस्ल सुधार किया जाए और ये गाय चलती फिरती जीवाणुओं की फैक्ट्री है, यदि ये बचेगी तो इसका A2 दूध वो तो मानव के कल्याण पीने के काम आएगा और इसका गोबर गोमूत्र कृषि को बचाएगा। इस समय भारत सरकार 125,000 करोड़ रुपया वार्षिक यूरिया DAP पे सब्सिडी देती है। इतना बड़ा धन यदि देश के विकास में लगे तो देश कहां जाएगा?
3: बिल्कुल।
1: और ये 125,000 करोड़ नहीं, फिर किसानी से खरीदता है, ये 200,000 करोड़ का मामला है और पेस्टिसाइड वो अलग है। कितना बड़ा एक चक्रव्यूह चल रहा है, इससे निजात मिलेगी। और पांचवा इसका लाभ है कि जिस आहार को जहर वाले को खा के अस्पताल भरे पड़े, मैं सब बंधुओं से निवेदन करके पूछता हूं कि जब रासायनिक खेती नहीं थी 50-60 साल पहले, कोई कैंसर को जानता था? कोई डायबिटीज को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई हाइपरटेंशन को जानता था? ये इतने असाध्य रोग जिनके निदान के लिए अरबों रुपए के मेडिकल बनाए जा रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा है,
3: जमीन
1: आदमी बीमार हो करके वहां पड़ेगा, काम नहीं कर पाएगा, परिवार दुखी पर बीमार दुखी, ये सारी से मुक्ति का रास्ता इसे मिलेगा। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता करें कि किसान खुशहाल हो, किसान उन्नत हो, उसकी आय बढ़नी चाहिए, ये वो विकल्प है जो किसान की आय बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। और इसका एक प्रबल उदाहरण, मैं 4 वर्ष तक हिमाचल में भी गवर्नर रहा, अंतिम 2 साल में मैंने वहां प्राकृतिक खेती का अभियान शुरू किया। जब मेरे खेत में ये परिणाम आए तो मैंने सोचा इस राजभवन में बैठ के क्या करेगा, इन किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, जब एक सिस्टम तूने प्रैक्टिकल कर लिया तो इनका भला होना चाहिए। मैं गांव में घूमना शुरू हुआ और मैंने किसानों को जोड़ना शुरू किया। अंत के 2 साल में मैंने 50,000 किसान प्राकृतिक खेती से जोड़ दिए।
3: अच्छा।
1: और इसको देख करके प्रदेश सरकार ने इसमें पूरी रुचि ली और उन्होंने एक अलग से विभाग स्थापित कर दिया, उसमें एक IAS अधिकारी रखे, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोन सोलन के डॉक्टर राजेश्वर चंदेल साइंटिस्ट इसमें रखे, और उन लोगों ने समझ के, और मैं लगातार उनसे संपर्क में हूं, मेरे आने के बाद 1,00,000 किसान नए जोड़ दिए उन्होंने। अब 1,50,000 किसान लगभग प्राकृतिक खेती करते हैं जहर मुक्त। और 12 अप्रैल को पिछली जो अप्रैल गई है इसमें चीफ सेक्रेटरी हिमाचल की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने पूछा भाई ये जो प्राकृतिक खेती आप करते हैं, जो आचार्य देवव्रत चला के गए थे, इसका कोई लाभ हुआ या हानि हुई? तो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए।
3: अच्छा।
1: कि इस खेती करने के बाद जो लोगों ने खेती की उनकी 27% इनकम बढ़ गई है और 56% खेती की लागत कम हो गई। वहां के अमर उजाला अखबार ने इस न्यूज को छापा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: यानी के 27% तो आय बढ़ गई और 56% लागत कम हो गई,
3: वो भी आय बढ़ी।
1: और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान की आय दुगनी करने का अभियान चलाया, तो यदि दोनों को जोड़ दें तो डबल की ओर बढ़ गए कि नहीं?
3: बिल्कुल।
1: तो इस खेती में प्राकृतिक में लागत शून्य के बराबर हो जाती और उत्पादन कम होता नहीं, उत्पादन बराबर चलेगा और लागत घट जाएगी तो किसान की आय वैसे ही बढ़ गई।
3: बिल्कुल।
1: अब अंतिम बात मैं करता हूं, अभी जो मेरे खेत में धान की बात मैं करता हूँ, 33 क्विंटल एवरेज पैदा हुई है, और जो रासायनिक खेती करते हैं

0: उनकी 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ हुई है। अब रासायनिक वाले ने पानी से भी उसको भर के रखा, मैं पानी भी 50% दिया, उसके 10 से 12 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्चाया, मेरा 1000 रुपए प्रति एकड़ खर्चाया। उसका उत्पादन 28 से 30 क्विंटल हुआ, मेरा उत्पादन 33 क्विंटल हुआ। अब और ये चीज जाके मेरे खेत में देख लो, आप वहां की मिट्टी टेस्ट कर दो, हमारी फसलों को जाके देख लो। और मजे की बात ये मिश्रा जी, आज कैंसर से कोई नहीं मरना चाहता, आज उपभोक्ता को ये पता लगे कि इस उत्पादन में जहर नहीं है तो वो उसे डबल कीमत पे भी लेने को तैयार है।
1: बिल्कुल।
0: और इस समय गुजरात सरकार, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आत्मा एग्रीकल्चर, हमारे मनीष भारद्वाज जी जो सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी, सब लोग, पूरी प्रदेश सरकार पूरे मनोयोग से इस पद्धति को जनमानस तक किसानों में पहुंचाने का अभियान चलाया। अभी हमने डांग जिला है, इस 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारे कृषि सचिव महोदय, आत्मा के डायरेक्टर महोदय, सब ने उस जिले को प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया। भारत का पहला प्राकृतिक जिला वो होगा,
1: यानी हर किसान प्राकृतिक खेती कर,
0: बिल्कुल, उसमें एक भी किसान नहीं बचेगा। वहां यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी पे प्रतिबंध है, और उसके लिए प्रदेश सरकार ने सहयोग दिया उनको, 1 हेक्टेयर के लिए 1000 रुपया प्रति एकड़, वो 10000 रुपया प्रति एकड़, हाँ, इतना सहयोग देंगे ताकि उनका मनोबल आए
1: जी,
0: उनको दिक्कत ना आए, और ये काम शुरू कर दिया। और प्रदेश सरकार ने जो किसान, यहाँ 2 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती शुरू की, और वो जो देसी गाय किसान घर में रखता उसको 900 रुपया महीना प्रदेश सरकार गाय के रख रखाव के लिए दे रही है। तो ये काम यहाँ शुरू होने से किसानों में एक जागृति आई है। अभी हमने 6 दिन का एक शिविर आज ही संपन्न किया है, इस दिसंबर मास में 3-4 शिविर और लगाने हम जा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है, और हम किसानों में ये विचार मजबूती से फैला रहे हैं, और हजारों लाखों जो किसान कर रहे हैं उनके जो अनुभव आने लगे बड़े संतोषजनक हैं, और वो बड़े उत्साहित हैं। तो ये कृषि जो है हमारी, ये प्राकृतिक है, जैविक नहीं, रासायनिक नहीं है। इस समय हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि जी ये खेती साइंटिफिक नहीं है, इस पर वो नहीं हुए हैं शोध, तो हम उनसे आग्रह करते हैं आप शोध करिए, हम तो आपको आह्वान करते हैं। वो उदाहरण देते हैं, लंका ने इस काम को शुरू किया जैविक को, वहां बड़ा उत्पादन कम हो गया, दिक्कत आ गई, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, जैविक किया इसलिए उत्पादन कम हुआ, उन्होंने प्राकृतिक नहीं किया इसलिए फेल हुए, प्राकृतिक करें। हमारे टी विजय कुमार चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश रहे, आईएएस अधिकारी, वो हिमाचल आंध्र प्रदेश में पिछले 5-7 साल से इस खेती को करवाते हैं, 5 लाख से ज्यादा किसान उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जहां पानी भी नहीं है वहां 3-3 फसल किसानों की शुरू हो गई इस प्राकृतिक, इसी पद्धति से। यदि ये सफल नहीं होती तो 1.5 लाख किसान हिमाचल में क्यों जुड़ता,
1: बिल्कुल,
0: यदि ये ना होती तो हमारे गुजरात में क्यों जुड़ता, 7-8 साल से जो आंध्र प्रदेश में करते वो क्यों जुड़ते। जैविक कृषि को 30 साल से हम करते आ रहे, उसे कोई नहीं जुड़ा, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, उसमें उत्पादन पूरा होता नहीं, खर्चे कम होते नहीं। तो जैविक कृषि भिन्न है, प्राकृतिक कृषि भिन्न है, हम प्राकृतिक कृषि के अभियान को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के कृषि मंत्री जी ने भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस कृषि को हम बढ़ाकर देश के किसान को खुशहाल बनाना चाहते हैं, और जमीन को फर्टिलिटी बचाना चाहते हैं, पर्यावरण बचे, पानी बचे, गाय बचे और किसान की आय बढ़े, लोगों को स्वास्थ्य मिले। धन्यवाद।
1: बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत। और मुझे लगता है कि
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: मेरे मन में जो सवाल आ रहे थे, आप स्वतः उनका जवाब देते चले जा रहे थे। मैं मन में मेरे श्रीलंका शब्द आया और आपने लंका कह दिया। तो इतने सरल तरीके से और इतने बहुत लूसिडली आपने बताया, बहुत धन्यवाद इसका। क्या जो भारत जैसे देश में जहाँ पर छोटी जोत के किसान हैं
0: जी,
1: उनके लिए भी इसका अर्थशास्त्र ठीक बैठता है?
0: इसमें मिश्रा जी, छोटे किसान के लिए तो ये वरदान है
1: जी।
0: कारण क्या है, छोटा किसान वो ट्रैक्टर रखेगा तो बड़ा उसको खर्चा बढ़ेगा। यदि वो गाय रखता है, 2-2.5 एकड़ का है, तो बैल से करेगा तो मजबूत भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, और घर में गाय होगी तो बच्चे दूध पिएंगे। और एक देसी गाय से तो 18-20 एकड़ से भी ज्यादा खेती हो सकती है। उदाहरण के लिए गाय दूध भले ही रोज ना दे, गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देगी
1: जी।
0: और एक दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खा तैयार है, तो 30 दिन के गोबर गोमूत्र से तो 30 एकड़ का तैयार है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो इतना बड़ा उपकारी जीव है कि इसका उपयोग किया जाए तो छोटा किसान मल्टी क्रॉप करेगा। 1 एकड़ में जब 4-4, 5-5 तरह की फसल एक ही दम लेगा तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी।
1: बिल्कुल।
0: और ये जीवामृत, घन जीवामृत जितना डालेगा, इसका नुकसान ही कुछ नहीं है। इसका तो लाभ ही लाभ, फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। और आश्चर्य ये कि मेरे जो अपने खेत हैं, इस साल उनमें केवल 1 बार जीवामृत देना पड़ा हमें।
1: अच्छा।
0: 1 बार वो इतने बढ़ गए कि वो काटने पड़े हमें, पहले पशुओं को खिलाने पड़े। इतनी बढ़ गए वो, उनको खतरा था ये गिर जाएंगे और फल कम आएगा, तो काटना पड़ा। इसलिए क्योंकि उस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.9 और 1 से ऊपर चला गया,
1: ऊपर चला गया जी।
0: बीमारी भी नहीं आनी आती, क्योंकि वो बीमारी वहां आएगी जहां कमजोरी होगी। अब ये जो कोरोना आया है, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, जिस आदमी की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रोंग होगी वो लड़ाई लड़ेगा, जो इम्यूनिटी कमजोर हो मर जाएगा। जब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग है, तो उसको बीमारी आएगी नहीं। जी धरती में यूरिया DAP से उसकी जान निकाल दी, बीमारी तो उसमें आएगी। जो एंटीबायोटिक रोज खाएगा वो कैसे बीमारी से लड़ेगा? तो वही स्थिति भूमि के साथ।
1: बिल्कुल। और ये कैंसर जो वगैरह, ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक इत्तेफाक नहीं है कि अचानक इतने सारे, हम में से हर इंसान अपने आसपास किसी ना किसी को जानता है जो इसे जूझ रहा हो या जूझ चुका हो। और ये पिछले 8-10 सालों, 10-15 साल की ही,
0: हाँ, इसी की देन है,
1: इसी की देन है। तो बहुत जो आप बात कर रहे हैं वो एकदम जुड़ के एक सेंस उसका।
0: मिश्रा जी, पंजाब के किसान ने सबसे ज्यादा यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया। वहां भटिंडा एक जिला है
1: जी,
0: वहां से कैंसर ट्रेन प्रतिदिन बीकानेर के लिए चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन
1: एक्सप्रेस। जी,
0: हाँ। यानी के पूरी भर के चलती, इतना कैंसर पहले कभी नहीं था। तो ये जो खानपान हमारा और स्लो पॉइजन, पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP जहर शरीर में जा रहा है, उसके दुष्परिणाम।
1: और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, एक ये तो किसान को फायदे हैं
0: जी,
1: और उपभोक्ता को
0: हाँ बहुत बड़ा। और इसी के लिए हमारे जो कृषि सचिव महोदय हैं, कृषि विभाग है, वो बराबर इस मिशन पे लगा है। अब हमने लगभग 100 FPO बनाए और 1 FPO में 300 किसान जोड़ दिए। अब जो छोटा किसान है 2-2.5-4 एकड़ का, वो अपना उत्पाद बेचने जाता बड़ा उसको दिक्कत आती है। अब 300 किसान एक तरह की फसल इकट्ठी बेचेंगे तो उसका भाव उचित मिलेगा, उसकी जो पैसा मूल्य मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा। तो इस दिशा में भी लगातार प्रयास हैं, अनेक जगह संपर्क बनाते जा रहे हैं ताकि इसका किसानों को उचित दाम मिले और उनकी मार्केट की व्यवस्था बढ़िया बन सके। इसमें भी बराबर काम चल रहा है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। साथ ही आपने जाना कैसे एक गाय जो हमारी देसी गाय है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और जो प्राकृतिक खेती है और जैविक खेती है इससे हमें कैसे लाभ लिया जा सकता है। जैसे आपने जीवामृत और आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में पता चला है। साथ ही आशा करते हैं कि आप सभी किसान भाई प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ अपना रुख करेंगे और अपनी खेती को, अपनी आजीविका को सशक्त बनाएंगे। इसी के साथ किसान साथियों, यहां पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी आरजे तनुषा आपके तरानों की हमसफर को सिर्फ एसएन रेडियो पर। एक खास और रूह को छू लेने वाले शो में जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। ये शो सिर्फ एक शो नहीं, ये एक सफर है उन लोगों के साथ जो सिर्फ खुद नहीं बदले बल्कि दूसरों की जिंदगी में रोशनी ले आए। आज हमारे साथ एक ऐसी प्रेरणा देने वाली पर्सनालिटी हैं, मिसेस मीता माथुर जी, जो एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, कम्युनिकेशन और लीडरशिप कोच हैं, एंटरप्रेन्योर हैं जिनके खुद के वेंचर्स हैं तानिया क्राफ्ट्स और बिग लैडर, और ये हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाली एक मेंटर हैं। तो चलिए आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग शुरू करते हैं मीता माथुर जी के साथ।
2: हेलो, तो मीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
3: बहुत ही एक्साइटेड और बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका कि आपने मुझे रंगों की दुनिया में आमंत्रित किया। बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए।
2: जी मैम, हम भी इक्वली एक्साइटेड हैं। आपकी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी रही है, इतनी लंबी जर्नी रही है, तो हम शुरुआत से अगर शुरू करें मैम, ये 27 इयर्स से आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, इतने सारे रोल्स निभा रहे हैं, लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं, मेंटर हैं, कीनोट स्पीकर हैं, इतनी लंबी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई मैम? बचपन में कोई बीज डला या कोई एज यू ग्रू आपके जीवन के जो एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने आपको ऐसे शेप किया? किस तरह से आप इस मेंटोरशिप के रास्ते पे आए?
3: थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए, और आपने बहुत सारी यादें मेरी ताजा कर दी। जैसे कि आपने कहा कि हर चीज थी, बचपन से भी बीज था और यात्रा में धीरे धीरे ऐसे ही कुछ होता रहा। सच कहूँ तो ये सफर किसी एक दिन डिसाइड नहीं हुआ। जैसे कि हर सफर होता है, हर जर्नी होती है, स्टेप बाय स्टेप बनता है, ये भी धीरे धीरे बनता रहा। सो एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते बिजनेस अच्छे से चल रहा था, परिवार अच्छे से चल रहा था, पर किसी ने एक दिन मुझसे ये कहा कि आपसे बात करके लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। और पहली बार ही मिलने से मैंने आपसे इतनी सारी बातें कह दी, पता नहीं क्यों मैंने सारी चीजें आपसे बात कर ली। बस वही मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, मुझे समझ आया कि शायद मैं दूसरों की लाइफ के अंदर कुछ इम्पैक्ट कर पा रही हूँ। मंजिल का पता नहीं था, सफर सच लगने लगा। तो लोगों की बातें सुनते सुनते मुझे लगा कि हाँ शायद मेरा रास्ता मुझे मिलने लगा। मैं लोगों को सुनती रही, समझ आया लोगों को एडवाइस नहीं चाहिए, एक एहसास चाहिए कि वो अकेले नहीं है, लोग उन्हें समझते हैं और भी लोग हैं जो कि इसी जर्नी में उनके साथ हैं। तो बस ये जो मेंटरशिप की, ये लाइफ कोच की, एनएलपी प्रैक्टिशनर की, ये जर्नी ऐसे ही शुरू हुई।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग अकेले हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ उन्हें कोई सुन ले, कोई उन्हें समझ ले बिना जजमेंट के, और उनका हाथ पकड़ के उनको एक रास्ता दिखा दे जो शायद उस समय वो नहीं देख पा रहे। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मैम, एंड आपको कूडोज है कि आप

इतने सालों तक इस प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड किया, इतने ग्रेस के साथ, इतने पनाश के साथ। इसी नोट पे दोस्तों हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत। अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जब इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। सुनते हैं सुहाना सफर और ये मौसम हसीन।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक नीता मैम।
1: थैंक यू
0: मैम। आपने लोगों को अंडरस्टैंड किया, उनको रूट लेवल पे जाके उनकी प्रॉब्लम्स को सुना, उन्हें कोच किया और आपने 3500 से ज्यादा लोगों के साथ आज तक काम किया है। हर इंसान आई एम श्योर बहुत अलग होता है, वो एक अलग प्रोजेक्ट होता है, एक अलग पर्सनैलिटी होता है, अलग एक्सपीरियंसेस से आपके सामने खड़ा होता है, अलग स्ट्रगल्स के साथ। तो ऐसे में जब आप इतने वेरीड तरह के लोगों के साथ डील करते हैं, इतने वेरीड एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं, तो आप कैसे किसी इंसान तक सच में पहुंच पाते हैं? क्या आपका कोई मोडस ऑपरेंडी रहता है, कोई एक अप्रोच रहता है, कोई एक तरीका है जिससे आप उनको रीच आउट कर पाते हैं, या यू जस्ट लेट योरसेल्फ लिसन? मतलब जैसे एज इज वेयर इज, जैसे वो चीज आती है उसी को वैसे ही डील करते हैं।
1: सही कहा आपने। इस प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे किस्म किस्म के लोग मिलते हैं और सच में हर चेहरा एक किताब होता है, बस पढ़ना आना चाहिए। और हर दिल में एक कहानी है, बस सुनना आना चाहिए। तो आपने कहा लिसनिंग, एग्जैक्टली यही एक सीक्रेट है। हर इंसान अलग है पर उसमें एक चीज कॉमन होती है कि हर कोई यही चाहता है कि उसे बिना जज किए सुन लें। अ फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ड और बीइंग अंडरस्टूड। तो एक सिंपल सी फिलॉसफी है मेरी कि सुनना ही मेरी सेवा है। कभी किसी ने सिर्फ इतना पूछा हो यू नो कि तू ठीक है, और फिर एकदम से यू नो जर जर रो पड़ते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने जेन्युइनली उनसे ऑथेंटिकली पूछा होता है कि तू ठीक है। एक्चुअली आई कॉल इट द लॉस्ट आर्ट ऑफ लिसनिंग। सब अपने में इतने ज्यादा मशगूल रहते हैं कि किसी के पास वक्त ही नहीं है कि ठहर के अगले की सुन लें।
0: अच्छा।
1: सब अपनी दुनिया में हैं और अपनी दुनिया में से क्रॉस ओवर करके दूसरे की दुनिया में नहीं आ सकते। सो इन अ वे माई लाइफ ऑफ कोचिंग इज टू लिसन विदाउट ओपिनियन, विदाउट जजमेंट। मैं पहले उन्हें ना एक स्पेस देती हूँ, आंसर सॉल्यूशन ये सब बाद में। एक ट्रस्ट, एक अंडरस्टैंडिंग, एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाना बहुत जरूरी है मेरे लिए।
0: बिल्कुल।
1: और यूं ही यू नो कारवा बढ़ता गया, 3500 प्लस लोग हो गए, काउंट नहीं करती मैं। बट अगर किसी की भी लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट हुआ हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे को मेरा रिजल्ट मिल गया, मुझे मेरा जो मैं चाहती थी वो हो गया, सेटिस्फाइड लाइफ हुई और नींद भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है कि मैं, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे उनके पास जाना नहीं पड़ता, वो अपने आप मुझे ढूंढ के आ जाते हैं कि नीता मैम आपके पास टाइम कब है, मैं कब आ सकती हूँ। मेरे दरवाजे खुले हैं, आप मुझे 10 बजे फोन करिए, 11 बजे फोन करिए, मैं आपके साथ हूँ। सिर्फ एक सेवा करनी है, वो है कि सुन लो लोगों को। एवरीबडी हैज अ स्टोरी, जस्ट लिसन टू देम।
0: हाउ ब्यूटिफुली पुट। एंड आपने कितनी खूबसूरती से एनालॉजी ड्रॉ की कि हर इंसान एक किताब है, उस किताब को पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करना ही आपका काम है, उसको सुन के उसे पढ़ के। तो सच है ये, कई बार हम सामने लिखी हुई लिखाई को किसी के चेहरे पे नहीं पढ़ पाते। और बहुत ही खूबसूरत, अगेन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम आप एक NLP प्रैक्टिशनर भी हैं और माइंडसेट शिफ्ट कोच भी हैं, तो पहले तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि NLP एग्जैक्टली होता क्या है बहुत सिंपल शब्दों में, और आपका जो वेंचर है बिग लैडर उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: आई एम सो ग्लैड कि आपने NLP के बारे में पूछा। ये एक साइंस है, एक आर्ट फॉर्म है। NLP का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो एनालॉजी की बात कर रहे थे किताबों की, तो अब मैं एक और एनालॉजी ड्रॉ करना चाहती हूँ कि आपका जो ब्रेन है वो एक सुपर कंप्यूटर है। और इस जिस तरह हर कंप्यूटर को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, तो हम भी अपने सुपर कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने ब्रेन को। और उसकी जो न्यूरो लिंग्विस्टिक जो प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है वो है आपके थॉट्स, केवल आपके थॉट्स। और यही थॉट्स ट्रिगर करते हैं हर वो चीज जो आपके साथ घटती है, जो आपके साथ होता है। आपके थॉट्स ही होते हैं जो कि हर चीज की रूट होता है। तो सिंपल शब्दों में कहूँ कि माइंडसेट शिफ्ट का मतलब क्या है कि सेम कहानी पर नया मतलब।
0: जी,
1: हम NLP में इसे कहते हैं रीफ्रेमिंग। जिस तरीके से कोई एक पुरानी पेंटिंग है, तस्वीर है, उसका फ्रेम बदल दीजिए, या आप जो चश्मा लगाती हैं उसका फ्रेम बदल दीजिए तो एकदम से नया लगने लग जाता है। इसी तरह किसी भी सिचुएशन को आप एक अलग तरीके से पोर्ट्रे कर सकती हैं। एक्चुअली जिंदगी में ना सिचुएशन उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, जो हम परसीव करते हैं अपने थॉट्स के साथ. मेरी जो सोच है वो ज्यादा पावरफुल होती है. और बिग लैडर का तो हमेशा से कोटेशन यही रहा है कि ट्रांसफॉर्म योर थॉट्स एंड यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो अगर आपके जो ख्याल है, आपके जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है. एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ, जैसे अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपने गुड मॉर्निंग कहा और उनके सामने से जवाब नहीं आया, तो एक सोच ये हो सकती कि देखिए मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अपने आपको क्या समझते हैं, मुझे बात नहीं कर रहे. दूसरी सोच ये हो सकती अरे शायद वो बिजी है. और रियलिटी या सिचुएशन सेम है, फीलिंग अलग हो गई. तो जिंदगी 10% वो होती है जो आपके साथ हो रहा है या सिचुएशन है, और 90% वो होती है जिस जो आप उसके बारे में सोचते हैं, आपकी परसेप्शन होती है, आपका थॉट होता है.
0: राइट.
1: तो एक छोटी सी प्रैक्टिस है हम आपके लिए या आपके सुनने वालों के लिए, हम सबके लिए, कि कभी भी, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही, उनको आप नहीं रोक सकते, तो खुद से जरा ये पूछिए क्या ये हकीकत है, क्या ये फैक्ट है, या केवल ये कहानी है जो मेरे ब्रेन मुझे आप सुना रहा है.
0: राइट. बिल्कुल बिल्कुल.
1: नजरिए का तो खेल है, ये सब नजरिए का खेल है. वरना बात तो वही है, नजरिया बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे. NLP में हम यही कहते हैं. बिग लैडर मैंने तकरीबन 5 साल पहले इसी सोच के साथ शुरू करी थी, क्योंकि उम्र के साथ, लोगों से मिलने के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ, सब समझ आया कि लाइफ इज रियली नॉट व्हाट इज हैपनिंग, इट इज जस्ट योर परसेप्शन मीटर मात्र. यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर थॉट्स. और जब अपने साथ चेंजेस, मेरे खुद की जीवन में जब मैंने चेंजेस देखे और फिनोमिनल चेंजेस, मेरे रिलेशनशिप्स बदलने लग गए, मेरा काम करने का तरीका बदलने लगा, मेरी जिंदगी में मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा बिल्कुल नए लेवल पे थी. मैंने कहा ये क्या हो रहा है. एंड जब आप तह तक जाते हैं, रूट्स पर जाते हैं, तो आपने देखा बस आपने क्या किया, कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल से आपने अपने थॉट्स चेंज कर लिए, अपने आपको पॉजिटिविटी देने की कोशिश करी. एक एनर्जी है, हम सब एनर्जी हैं, और यही एनर्जी का खेल है. आप अपनी एनर्जी कैसी रखती हैं, हेल्दी एनर्जी है या अनहेल्दी एनर्जी है.
0: बिल्कुल.
1: तो यही बिग लैडर का एक मोटो रहा है कि व्हेन यू वांट टू रीच हायर यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर थॉट्स एंड दैट विल डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ.
0: राइट राइट. बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें जवाब दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लो के साथ. और बिल्कुल सही है, नजर बदले और नजरिया बदलेगा. और सच है कि कई बार हम आजकल की दुनिया में, स्पेशली पहले तो लोगों के अंदर पेशेंस होता था और एक वेट होता था, एक समझ होती थी सामने वाले के टाइम की, खुद के टाइम की एक रिस्पेक्ट होती थी. बट अब वो सब खत्म हो गया है विद द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्ल्ड, जिसमें हम एक मैसेज का रिप्लाई इंस्टेंटली एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर वो नहीं आए उस तरह से तो हम पता नहीं क्या क्या रिएक्शन देने लग जाते हैं, क्या क्या सोचने लग जाते हैं, उधेड़ बुन में चले जाते हैं. तो अगर आप अपने थॉट्स को संभाल सके, उनका एक यू कैन टेक देम बाय देयर रेन एंड होल्ड योर हॉर्सेस बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग, आई थिंक आप बहुत चीजें चेंज कर लेंगे, सिर्फ खुद के लिए नहीं, सामने वाले के लिए भी. और जीवन सच में रिएक्शन से भरा है. अगर आप अपने रिएक्शंस को चेंज करते हैं, अपने माइंड को चेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं. तो थैंक यू सो मच मीता मैम फॉर डूइंग दिस वंडरफुल वर्क, एंड कूडोज टू बिग लैडर्स. बिग बिग बिग विशेस फॉर अ बिग लैडर मेड ग्रो बिगर एंड बिगर एंड बिकम
1: द बिगेस्ट लैडर
0: दैट देयर इज. जी
1: थैंक यू सो मच.
0: जी तो दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब सोच बदलती है, और सोच बदलती है तो दुनिया भी बदल जाती है. इसी नोट पे हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, लव यू जिंदगी.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक मीता मैम।
1: थैंक यू
0: मैम। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं अगर हम एनएलपी की बात करते हैं, माइंडसेट शिफ्ट की बात कर रहे हैं और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने रिएक्शंस को ट्रांसफॉर्म करके अपना जीवन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं बट अपनी बात नहीं रख पाते उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस सही कम्युनिकेशन के साथ। तो आप कैसे इन दोनों चीजों को मैनेज करते हैं, आपके हिसाब से कैसे कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन एक की रोल्स हैं एक सही एक टैलेंट को पहचान देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, और आप इसको कैसे इंस्टिल करते हैं आप जिनके साथ काम करते हैं उनके अंदर?
1: पहले तो आई एम सो ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा
0: जी,
1: क्योंकि जब हम थॉट्स की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म योर थॉट्स की बात करें, पर वो आपके सब कुछ आपके ब्रेन में हो रहा है, बट एक्सटीरियर वर्ल्ड में क्या हो रहा है? एक्सटीरियर वर्ल्ड में वो आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से प्रोजेक्ट होता है। आपके थॉट्स बाहरी दुनिया में आपका कॉन्फिडेंस की तरह से और आपकी कम्युनिकेशन के तरीके से नजर आता है। और कॉन्फिडेंस की कमी क्यों हो रही है दुनिया में, क्यों इतना टैलेंट और इतना सब कुछ होने के बाद भी कॉन्फिडेंस क्यों कम है? रीजन है कि भाई एक पुरानी बात, लोग क्या सोचेंगे, है ना, कि भाई जो जजमेंट से, रिजेक्शन से, ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है, इसी वजह से कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी आ रही है। लोग कहते हैं कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब बोलेंगे, पर सच तो ये है कि बोलेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा,
0: राइट।
1: तो ये एक जो गोल चक्कर है, इससे हम कभी बाहर ही नहीं आ पाते, तो ना कॉन्फिडेंस आता है ना बोलते हैं। तो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन का तो बहुत ही सिंपल रिश्ता है, जैसे सांस और आवाज। तो मीटिंग में जैसे अगर आप देखोगे ना, इतनी मीटिंग्स के अंदर जब लोगों को अपना आइडियाज ओपिनियन रखने होते हैं तो वो नहीं रख पाते और बहुत चुप रहते हैं, इवन दो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही नॉलेजेबल होंगे फिर भी वो नहीं बोल पाते। और एक एवरेज सा पर्सन बोलता है, एक्टिव लिसनर है, प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछता है एंड देन ही सीकिंग एक्सप्लेनेशंस, वो व्यक्ति जो है वो नजर आता है, उस व्यक्ति की इमेज डिफरेंट होती है,
0: right।
1: और फिर आप गेस करिए प्रमोशंस किसे मिलते हैं,
0: राइट,
1: है ना। सो यस, सो आपकी जो वॉइस है दैट इज योर विजिबिलिटी, राइट। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि ना जब परफेक्ट होंगे, परफेक्शन एक मिथ है, परफेक्शन एक इल्यूजन है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। तो उसका इंतजार मत करिए कि जिस दिन मेरी कम्युनिकेशन, मेरी लैंग्वेज स्किल्स, मेरी आर्टिकुलेशन, मेरी वोकैबुलरी अच्छी होगी उस दिन मैं बोलना शुरू करूंगी। मैं कह रही हूँ कि आप किसी भी भाषा में बोलिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी में बोलिए, अपनी मातृभाषा में बोलिए, पर अपनी ओपिनियन रखना सीखिए। जिस दिन आप किसी भी भाषा में अपनी ओपिनियन रखना शुरू करेंगे उस दिन वो जो घुट घुट के, क्योंकि जो व्यक्ति नॉलेजेबल है पर उसको कोई भाव नहीं मिल रहा है, उसको कोई देख नहीं रहा, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, तो वो बहुत घुट जाता है और बहुत इट डजंट फील एक्नॉलेज्ड, तो वो चीज खत्म हो जाएगी और ऐसे ही हिम्मत जुड़नी शुरू हो जाएगी,
0: राइट।
1: तो खामोशी ने बहुत सपने तोड़े हैं, बहुत सारे सपने अधूरे रह जाते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ प्लीज आवाज उठाओ, रास्ता खुद का खुद मिल जाएगा, आपने खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस और कहीं से नहीं, अपने अंदर से ही आता है, प्रैक्टिस से आता है। अकेले में प्रैक्टिस करिए, दूसरों के साथ सेफ स्पेस में प्रैक्टिस करिए। हम बिग लैडर में एक सेफ स्पेस फॉर्म करते हैं जहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, अलग अलग सिचुएशंस, प्रेजेंटेशन, स्पीचेस।

0: इवन नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस मैरिड कपल के बीच में, भाइयों के बीच में, तो इस तरह की बहुत सारी हम प्रैक्टिसेस सीखते हैं एज पर क्लाइंट. और यही सिखाया जाता है कि परफेक्ट होने का वेट नहीं करिए, बस एक बार धीरे धीरे बोलने का पहला कदम लीजिए, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल, उस मोमेंट का वेट मत करिए जब सारे सिग्नल्स ग्रीन हो और तभी आप अपनी गाड़ी निकालेंगे. धीरे धीरे,
0: क्या बात,
1: जी जी उसी धीरे धीरे शुरू करिए, जो है आपके अंदर उसको टैप करिए और सेफ स्पेसेस में, जैसे कि मैम ने बताया, जैसे एनएलपी प्रैक्टिशनर्स और ऐसी बिग लैडर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उन स्पेस, उन सेफ स्पेसेस को टैप करिए और अपने आप के अंदर के पोटेंशियल को बाहर लेके आइए. मैम, इसी से जो आपने बताया कि आपके कम्युनिकेशन मॉडल्स ऐसे होते हैं कि यू नो भाई बहन एंड यू नो रिलेशनशिप्स में दे हैव दोज कॉन्वर्सेशंस जिससे आप टैप कर सकते हो अपने राइट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैंने आपके बारे में ये जाना कि आप रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को भी अपनी लीडरशिप के अंदर उतारते हैं और उनसे भी आप ड्रॉ करते हैं इंस्पिरेशन और उनसे भी आप ड्रॉ करते हैं यू नो एग्जाम्पल्स. तो किस तरह से कॉर्पोरेट या पर्सनल लाइफ में इन टीचिंग्स को कोई इंसान आज के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकता है, अगर आप कुछ एग्जांपल्स के साथ बता सकें?
0: आपकी तो रिसर्च बहुत बढ़िया है. यस यस, मैं रामायण महाभारत चाणक्य और बहुत सारी देवी देवताओं की और स्पेशली नवदुर्गा, इन सारी जो बुक्स हैं, कहानियां हैं, ग्रंथ हैं, इनमें से एग्जाम्पल्स लेके, क्योंकि ये देखिए ये हमारे बहुत पुराने ग्रंथ हैं और सब लोगों को ये समझ आते हैं. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग सम एग्जांपल्स, कोई फॉरेन एंटरप्रेन्योर का या बिजनेसमैन का एग्जांपल देने की जगह मैं यही एग्जांपल्स देके लोगों को सिखाती हूँ.
1: right.
0: क्योंकि देखिए सीख तो पुरानी हो सकती है पर सच हमेशा सच है, सच हमेशा नया होता है. जो समझ ले इन बातों को वही असली लीडर होता है.
1: सही है,
0: कोई पुरानी बात नहीं है ये. ग्राउंड लेवल पर जब मैंने काम किया और बहुत गहराई से एक बात मुझे समझ में आई कि महिलाओं क्या ज्यादातर लोगों में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आइडियाज की कोई कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, हिम्मत की कमी नहीं है, पर जो सबसे ज्यादा बदलने का जो चैलेंज है वो है आपके अंदर का डाउट.
1: राइट.
0: और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके आंसर्स भी नए नहीं है, ये सब हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखे हुए हैं. हमारे ग्रंथों में लीडरशिप की सिर्फ थ्योरी नहीं है, जीते जाते एग्जाम्पल्स के साथ समझाया. जैसे श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कम्युनिकेशन और क्लैरिटी बिना लीडरशिप अधूरी है. अर्जुन जब बहुत कंफ्यूजन में थे, डाउट में थे और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे बीच मैदान में, उनका सही गाइडेंस ने उन्हें वॉरियर बना दिया. इसी तरह भगवान राम ने दिखाया कि लीडरशिप में इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सबसे ऊपर होती है.
1: राइट.
0: तो देखिए आप अगर सीखना चाहें तो हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में सब लिखा है. उन्होंने हमें सिखाया कि डेलीगेशन कैसे होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, रिस्क लेना पड़ता है, पेशेंस होती है, कम्युनिकेशन सही होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए. ये सब जो सारी पहेलियां जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, उस सब की आंसर्स इन कहानियों में है. आप कहानी समझिए, भगवान का लिटरेचर समझिए, रिलीजन समझिए, जो भी समझिए इनको, इसमें मैं नहीं जा रही. मैं कह रही हूँ कि ये सब कुछ लिखा हुआ है.
1: बिल्कुल.
0: एक्चुअली जमाना तो नया है पर समस्या पुरानी ही है. उसका समाधान भी कहीं से कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में ही है.
1: राइट.
0: तो आज की जो विमेन एंटरप्रेन्योर है उसको बस एक चीज समझनी है कि नया बनने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपनी असली शक्ति याद करनी है.
1: right.
0: नव दुर्गा की कहानियों में मैं सिखाती हूँ.
1: जी.
0: जैसे कोई महिला बिजनेस वुमन है ना, कोई वुमन एंटरप्रेन्योर है, उसे डर लगता है क्या होगा. वैसे ही जैसे अर्जुन को भी तो लगा था ना युद्ध के मैदान में.
1: राइट.
0: डिफरेंस बस इतना है, उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब ढूंढा. तो जो सीख ढूंढते हैं आज के दौर में वो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है.
1: बिल्कुल.
0: और जब महिला अपनी कहानी को समझ लेती है तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, वो सब पूरी पूरी जनरेशन को, फैमिली को, पूरी जनरेशन को इंस्पायर कर लेती है. इसलिए बहुत जरूरी मैं मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के थ्रू और जितने भी आपके लोग सुन रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज इनको ना, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि इनको माइथोलॉजी बोल दिया. ये मिथ नहीं है, ये कहानियां हैं, ये हिस्ट्री है, ये आपका इतिहास है, बड़े बड़े शास्त्र हैं, इनको प्लीज अपने घर में दोबारा से लेके आइए और सरल शब्दों में अपने बच्चों के साथ शेयर करिए। वो सिंड्रेला और स्लीपिंग ब्यूटी की जगह अगर आप राम भगवान और श्री कृष्ण की कहानियां सुनाएंगे, फिर देखिए आपकी जेनरेशन क्या खिलती है और क्या लोगों को समझ आएगा। मैं आपको कह रही हूँ, इंडिया में नहीं, ये मैं सिंगापुर और बाहर विदेशों में भी मैंने इसी तरह से लीडरशिप सिखाया
1: जी।
0: उन लोगों ने इसको कहानियां, हमारे लिए रिलीजन है ना आज, उनके लिए तो कहानियां आएंगे।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने इतना अच्छे से समझा, इतने क्वेश्चंस पूछे, इतना तरीके से। और मुझे आज भी लोग ये कहते हैं कि मैम वो जो आपने इतने साल पुरानी बात हमें कही थी वो हमें याद किया।
1: बिल्कुल।
0: सो ऑल योर प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड, वेदर इट इज इन कॉर्पोरेट इंडिया और इन योर रिलेशनशिप इन योर होम, इन सब के जवाब आपके शास्त्र में है।
1: बिल्कुल,
0: ढूंढना है बस, केवल ढूंढना है, केवल ढूंढना है।
1: बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि अगर हम अपने एंशियंट विजडम को थोड़ी वैल्यू और वैलिडेशन दें फिर से लाइफ में, जो आजकल हो रहा है, खैर पिछले 5 सालों में बहुत बदलाव आया है लोगों के अंदर और सच में लोग इनसे ड्रॉ करना शुरू किया है लोगों ने और अपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया है जो पहले नहीं जानते थे बच्चे। शायद मेरी जनरेशन में कोई, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने अपने ग्रंथों को पढ़ा होगा, बट अब मैं देखती हूँ अब चेंज आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे भी काफी टॉक है एंशियंट विजडम के बारे में, एंशियंट सिस्टम के बारे में, नॉलेज सिस्टम के बारे में। तो बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको अपने जीवन में, अपने काम में उतारा है और हम चाहेंगे कि इस कॉन्वर्जेशन को सुन के हमारे बहुत सारे श्रोतागण बहुत प्रेरणा ड्रॉ करें और अपने जीवन को बदलाव की तरफ लेके जाएं। इसी एहसास के साथ, इसी बदलाव की सोच के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत। तो दोस्तों, जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस जज्बे के साथ हम सुनेंगे, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की पुकार।

0: Welcome back, Meeta ma'am.
1: Thank you once again.
2: जी क्या खूबसूरत गीत है ये और क्या खूबसूरत कॉन्वर्जेशन आपके साथ हो रहे हैं मैम. आपने वुमेन जी आपने पिछले सेगमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट को थोड़ा सा टच किया, तो मेरा अगला सवाल इसी पे है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ और प्रोफेशनल्स के साथ आप काफी काम करते हैं, तो आज की महिलाओं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आपके हिसाब से क्या है और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि आप उनको रूट लेवल से देखते हैं तो आप जानते हैं किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, आती हैं, और क्या स्ट्रेंथ के साथ वो आती हैं जब काम पे आती हैं, वर्कफोर्स का एक हिस्सा बनती हैं. और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि तान्या क्राफ्ट के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं.
1: गुड क्वेश्चन. स्ट्रेंथ क्या है और चैलेंज क्या है
2: जी.
1: तो ग्राउंड लेवल पर एक ही चीज बहुत क्लियरली दिखी मुझे इतने सालों में कि पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, आइडियाज की, मेहनत की, पैशन की कोई कमी नहीं है. पर सबसे बड़ा चैलेंज वही है जो सदियों से है, वो है सेल्फ डाउट. और उसके साथ एक और चीज शुरू हो जाती है, लोग क्या कहेंगे. टैलेंट को दुनिया नहीं रोक सकती, पर डाउट सब कुछ रोक देता है. एक वुमन एंटरप्रेन्योर जब काम शुरू करती है तो पहला सवाल उसका यही होता है, क्या मैं कर पाऊंगी. ये सवाल नहीं होता कि मैं कैसे करूंगी, हाउ आई विल डू इट, विल आई बी एबल टू डू इट. और जैसा ही उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, कोई हाथ मिलता है, कोई कहीं से कोई एनकरेजमेंट का वर्ड मिलता है, तो वो फिर खुद को ही नहीं, दूसरों को और आसपास के सारे कम्युनिटी को उठा लेते हैं. तो बहुत ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सेल्फ डाउट है, जो हम थॉट्स की बात कर रहे थे, एनएलपी की पहले बात कर रहे थे, थॉट्स ही जो है जो हमारी जो नौका है ना उसमें छेद करके बैठा हुआ है. क्या करें, तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए छोटे छोटे कदम लीजिए. कोई जरूरत नहीं है कि बहुत लंबा आपको लंबा सफर है. हर सफर जो है वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से ही होगा. तो यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है. और क्या उनकी एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि क्योंकि वो इतनी नर्चरिंग और इतनी पेशेंस उनके में इनबिल्ट होता है कि वो फिर सिर्फ अपने लिए ही नहीं और सबके लिए भी काम करती है, फिर वो अकेली नहीं करती है. और यही एक बहुत खूबसूरत बात है कि सबको साथ लेके चलती है. और इसी प्रेरणा से और इसी को सबको देख के मुझे भी लगा कि और कुछ नहीं, अगर मैं हेल्प कर सकती तो एटलीस्ट उनको कॉन्फिडेंस और इनकरेजमेंट देने में, वो मुझसे आके बात करें, मुझसे सुने, अगर कहीं पे भी उनको चैलेंज फील हो रहा है.

0: अपनी उड़ान पे यकीन कर लो। बस जो भी है, एक हाथ ऐसा ढूंढो, एक साथी ऐसा ढूंढो जो आपको सपोर्ट कर सके। और सेल्फ डाउट तो होता ही है, सबको ही होता है। अननोन अनसर्टन फ्यूचर को लेके डाउट तो होगा ही, बट वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि फिर देखिए, ये आपके जो एक ही लाइफ है, मैं यही सब जानते हैं। और इसी लाइफ में जब आपको करना है, वेट मत करिए, समय निकलता जा रहा है। आप ऐसा कोई एक पर्सन ढूंढिए जो कि आपको सपोर्ट कर सके। तान्या, अगर आपके बारे में आपने प्रश्न पूछा, तो एग्जैक्टली यही हुआ। जब मैं एमएनसीज में काम कर रही थी, तो लगा कि बहुत सारा टाइम और एनर्जीज एंड एफर्ट्स हम इन कंपनियों में डाल रहे हैं, इतना ही है जब हम अपने लिए करते तो कितना एक अलग ही रंग होगा। तो वही जिंदगी के अलग रंग ढूंढने के चक्कर में हमने भी सोचा कि हम भी एक ऐसी चीज, और एक महिला के होने के नाते फैशन में हमेशा से इंटरेस्ट रहा, तो एक हाई फैशन गार्मेंट्स का एक्सपोर्ट शुरू किया। पर धीरे धीरे देखिए, जैसे जिंदगी बदलती है, बिजनेस बदल गया, और इस वक्त तान्या क्राफ्ट में हम डिजाइन करते हैं और डिलीवर करते हैं हाई एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए लिनन, जिसके अंदर बाथ लिनन, बेड लिनन, किचन लिनन होता है, जो होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स के अंदर, यूएस और कनाडा के अंदर, यूरोप में ये होता है। फिर हम कुछ डिजाइनर आइटम्स भी करते हैं, जिसके अंदर बाथरूम्स हो सकते हैं, बहुत डिजाइनर कम्फर्टर्स होते हैं, तो ये हम लोग करते हैं। तो जिंदगी ने बहुत सारे रंग दिखाए हमें भी। कभी एक एक एम्प्लॉई का, फिर एक बिजनेस ओनर का, एक वुमन एंटरप्रेन्योर होने का, उस बिजनेस में नए नए रंग। फिर बिग लैडर शुरू हुआ 2020 के अंदर, तो दो बिजनेसेस हैंडल करते करते और लोगों के साथ काम करते करते बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रंग से हम समझ में आने लगे, और इस
1: बिल्कुल
0: तरीके से धीरे धीरे चल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और
0: जी
1: आपसे बात करके बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक यू नो एक सूदिंग बाम लग रहा हो मुझे, जैसे एक बहुत ही कंफर्टिंग कॉन्वर्जेशन हो रही है। जी बिल्कुल, एक सहजता है, एक सरलता है आपकी वाणी में, आपकी आवाज में, आपके एहसास में। तो वो सच में एक कन्वे होती है कि आप इस काम से जुड़े हैं, तो वो आपकी आवाज में झलकता है विथ टाइम। आई थिंक वो आपकी आवाज में आ गया है, वो सहजता, वो समझ, सरलता। तो बहुत ही खूबसूरत मैम। और अगेन बेस्ट विशेस टू तान्या क्राफ्ट कि वो बहुत बड़ा हो और बहुत इंटरनेशनल, ग्लोबली ग्रो करे।
0: सो
1: इसी
0: ग्रेटफुल टू यू।
1: जी, इसी एहसास के साथ मेरा अगला सवाल है कि आपने बताया कई बार लोग सेल्फ साबोटाज करते हैं, खुद ही की ग्रोथ में खुद ही आड़े आ जाते हैं, और अगेन वो सब डाउट्स होते हैं, वो सब दिमाग की अगेन सोच होती है। तो हम कैसे पहचान सकते हैं अपनी ग्रोथ के आगे, अगर हम खुद ही आ रहे हैं तो कैसे पहचाने और कैसे उसको ओवरकम करें? और इसी के साथ हमारे लिसनर्स के लिए कोई एक क्लैरिटी का, कॉन्फिडेंस का, डायरेक्शन देने वाला एक कोई मैसेज अगर आप देना चाहें कि आप इस तरह से अपना रास्ता बना सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, तो वो क्या होगा?
0: जरूर जरूर, बहुत बढ़िया सवाल। सेल्फ साबोटाज का मतलब ये होता है कि भाई, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। वो आवाज जो आपको रोकती है, जो कहती है तू नहीं कर पाएगी, कैसे नहीं हो पाएगा। तो इसको पहचानना कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कंफर्ट जोन में है या सेल्फ साबोटाज में है? तो आप अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, है ना। मेरी एडवाइस भी, फाइनल एडवाइस अगर आपने कही है, मेरी फाइनल एडवाइस भी है कि अपने शब्दों को जरा गौर से सुनिए। जब आप अपने साथ 5 मिनट 10 मिनट टाइम बिताती हैं, तो वो क्या वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं? तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि, तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि, और क्योंकि के बाद जो भी सेंटेंस आ रहा है ना, वो सेल्फ साबोटाज या आपके कंफर्ट जोन का सेंटेंस है। वो एक बहाना है, वो एक आपको तसल्ली दे रहा है आपको कि तुम इसलिए नहीं कर पाओगी कि तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया है, तुम इसलिए नहीं कर पाओगी तुम महिला हो, तुम इसलिए नहीं कर पाओगी तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। तो ये जो भी क्योंकि के बाद जो स्टेटमेंट आया ना, वो आपका सैबोटाज है, वो आपका कंफर्ट जोन है, वो आपका बहाना है कि भाई मेरे से क्यों नहीं हो पाएगा, वही आपका दुश्मन है। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर भी हैं, और कभी कभी आप अपने जिंदगी के ब्रेक भी हैं। तो हम खुद ही डिले करते हैं, डाउट करते हैं, कंपेयर करते हैं, और फिर कहते हैं अरे मुझे तो मौका ही नहीं मिला, मुझे तो लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, मुझे उसने रोका, मुझे इसने रोका। नहीं नहीं अगर कोई लिसनर इस वक्त क्लैरिटी या कॉन्फिडेंस ढूंढ रहा है, तो एक सिंपल स्टेप करिए, रोज 5 मिनट बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ एक कमरे में बैठिए और लिखिए। मैं फोकस करना चाहती हूँ कि प्लीज लिखिए, राइट इट डाउन, मैं सच में क्या चाहती हूँ, मुझे लाइफ में क्या चाहिए।

0: जिस दिन ये क्लैरिटी आएगा ना, वो क्लैरिटी क्रिएट करेगा कॉन्फिडेंस।
1: बिल्कुल
0: तो एक लाइन कहना चाहूंगी कि जब खुद से मुलाकात होती है तब रास्ते साफ नजर आते हैं, जो जवाब बाहर ढूंढते थे वो अंदर ही मिल जाते।
1: बिल्कुल।
0: तो जिंदगी के रंग बाहर नहीं मिलते, जब आप अपनी आवाज पहचान लेते हैं ना तो हर गीत आपकी कहानी बन जाती है।
1: बिल्कुल।
0: मैं अपने श्रोता को, अपने लिसनर्स को सिर्फ यही कहना चाहूंगी, कॉन्फिडेंस से पहले क्लैरिटी ढूंढिए, क्योंकि क्लैरिटी ही आपके लिए कॉन्फिडेंस लाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि व्हेन द व्हाई इज क्लियर द हाउ इज इजी, और
0: सो नाइस। यस,
1: सच में आपके अंदर ही आपके सारे गीत हैं, सारे सरगम हैं, सारे साज हैं। तो अपने अंदर को टैप करें और अपनी खूबसूरती को बाहर लेके आए। जैसे कि मैम ने बताया कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये अपना बेस्ट पोटेंशियल टैप कर सकते हैं, अपनी बेस्ट एक जर्नी लिव कर सकते हैं। तो अभी बहुत देर नहीं हुई है जो हमें सुन रहे हैं, बहुत देर नहीं हुई है, कभी भी शुरू करने के लिए देर नहीं होती जीवन में। आज शायद ये कॉन्वर्जेशन आप सुन ही इसलिए रहे हैं ताकि आप अपने जीवन को एक नए पड़ाव पे लेके आ सकें। तो इसी डिवाइन इंटरवेंशन के साथ, इसी ब्यूटीफुल सोच के साथ, इसी गहरे एहसास के साथ हम आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। और थैंक यू सो मच मीता मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके कोई पार्टिंग थॉट्स हों तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें।
0: खुद अपने आप फ्रेंड बनिए, प्लीज बी वेरी काइंड टू योर माइंड एंड बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। इससे पहले कि आप दुनिया में कोई दोस्त ढूंढें, अपने लिए एक दोस्त बनिए, अपनी बात सुनिए, और अपना जब आप ये अपनी खुद की बात सुनने लगेंगे तब आपको कोई बुलंदियों से नहीं रोक पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं हूँ मीता माथुर फ्रॉम बिरला।
1: थैंक
0: यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट्स बीन अ प्लेजर।
1: थैंक यू सो मच मैम, इट्स ट्रूली बीन अ प्लेजर होस्टिंग यू। तो दोस्तों, जिंदगी के रंग तब और गहरे हो जाते हैं जब हम खुद को समझने लगते हैं। मीता माथुर जी ने आज हमें यही सिखाया कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मीता जी का। आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुद पर थोड़ा विश्वास रखिए और जिंदगी को थोड़ा ज्यादा महसूस कीजिए। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

इस्तीफा, जुर्म की सबसे बड़ी सजा माफी, समझदार को इशारा काफी। तो भगवान सबको इशारे में समझने लायक अक्ल दे कि एक था कुम्हार, माटी लीद गार चाक और नियाम से तंग आकर उसने छेनी हथौड़ा थाम लिया और देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ने लगा। उसका हाथ बेहद साफ था, हथौड़े की ठक ठक से वो कुछ ही दिनों में सारे इलाके में मशहूर हो गया। किसी और की गढ़ी मूर्तियां लोगों को पसंद ही नहीं आती। छोटे बड़े तमाम मंदिरों थानों देवरों और ठाकुर द्वारों में उसी की मूर्तियों की थापना होने लगी। उसके पास एक गधा था, गधे जैसा गधा, लंबोतरा चेहरा और वो ही ढैंचू ढैंचू का रेकना, वे ही लातें और वे ही सारी बातें। उसके मालिक कुम्हार ने मौज में आकर देवी देवताओं के शान के मुताबिक गधे पर सुरंगी झूल डाली, बबूल का ढोर चंदन का ढांचा बनवाया। मूर्तियां तो वे ही थीं, पर कुम्हार का रुतबा काफी बढ़ गया। गधे पर मूर्तियां लादे जब वह तयशुदा मुहूर्त पर पहुंचता तो लोग उसे बधाते, आरती उतारते, मालाएं पहनाते, गुलाल उछालते। औरतें गधे पर भी हथेलियों से गुलाबी छापे लगाती, मांडड़े चितेरती। मूर्तियां गढ़ने वाला कुम्हार तो घी के पकवान खाता ही था, पर साथ ही साथ गधे के ठाठ भी कम नहीं थे। लपसी खीर गुलगुले घेवर और मालपुए खा खा कर वो कौड़ी की तरह चमकने लगा। उससे पहले शायद ही किसी गधे की ऐसी मौज बनी हो। लोग बाग दूर से ही कुम्हार और गधे को पहचान जाते, हाथ का काम छोड़कर उसकी ओर दौड़ते, मूर्तियों को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते, औरतें गीत गाती। पर गधे की अक्ल को क्या कहें कि उस खातिर और आव भगत से उसे यह भ्रम होने लगा कि वह उसके चरणों में शीश नवाते हैं, दंडवत करते हैं, बनाव सिंगार से लदी सुंदर सलोनी रमणियां उसी के लिए गीत गाती हैं, नरम नरम अंगुलियों से उसी के लिए मांडड़े चितेरती हैं। गधे का मालिक कुम्हार तो अपनी हैसियत अच्छी तरह जानता था, पर सुंड मुसुंड गधे का दिमाग फिर गया। ऐसा काहिल हुआ कि जब भी मौज में आता रुक जाता, पेट भरने पर भी गुलगुलों में मुंह डाले रहता, औरतों के गीत गाती टोली से टलना ही नहीं चाहता। मजबूरन कुम्हार को उसकी धुनाई करनी पड़ी, तो उसे न चाहते हुए भी वहां से चलना पड़ा। दुखी मन से कुम्हार को बद्दुआएं दे देता। एक मर्तबा गौने पर आई नई बहू का कुंवारा रूप देखकर उसका एक अंगुल भी आगे बढ़ने का मन नहीं हुआ। कोंचते कोंचते कुम्हार की नाक में दम आ गया, पर पट्ठा टस से मस नहीं हुआ। बजरंग बली की मूरत की थापना का मुहूर्त निकला जा रहा था। आखिर कुम्हार का दिमाग गर्म हो गया, जम कर उसकी मरम्मत की।

है, दिमाग आसमान में चढ़ा है। वो कोई मामूली गधा होता तो लोग उसके चरणों में शीश क्यों नवाते? मेहंदी रचे हाथों से बहु बेटियां छापे क्यों लगाती? उसे पकवान क्यों परोसती? सभी देवता और आदमी जब एक सरीखे नहीं होते तो सभी गधे भी एक सरीखे नहीं होते। वो अवतारी गधा ना होता तो कौन उसे सर आंखों पर बिठाता? यह बात उसके रोम रोम में घर कर गई। क्यों किसी की गुलामी करें? साला सर पर मूर्तियां ढोकर ले जाएगा तब पता चलेगा, सारी मटर गश्ती ठिकाने आ जाएगी। इस भरम के दूसरे ही दिन वो रस्सी तोड़ाकर भाग छूटा। एक एक घर उसका जाना पहचाना था। सीधे एक महाजन के यहां जा पहुंचा। कुम्हार के साथ वहां काफी खातिर हो चुकी थी। पांच मंदिर तो उसने खुद बनवाए थे, छक्कर घेवर और मालपुए खाए थे। चितेरते ही नथुओं में घी की महक घुल गई। सेठ के छोटे लड़के की बारात चढ़ रही थी। गुड़ की मांगलिक लपसी से एक बड़ी कड़ाही भरी थी। खाने की तैयारी हो रही थी कि हमेशा वाली खातिरदारी और मान सम्मान के भरोसे वो मस्तानी चाल से कड़ाही के पास गया। इधर उधर देखभाल करने की क्या जरूरत? भरम के गुमान में कड़ाही में मुंह डालकर लपसी खाने लगा। सहसा नाई की नजर उस पर पड़ गई। उसने न तो छापे देखे ना मानड़े। जलती हुई लकड़ी खींच कर नाक पर दे मारी। उसकी आंखों के सामने बिजली चमकी। हक्का बक्का खड़ा रहा जैसे काठ मार गया हो। भागने का भी होश न रहा। फिर नाई के कैसी कोताही, पीठ पर चार पांच एक और जमा दी। वो रेंकता हुआ सर पर पांव रखकर भागा। शायद जल्दी जल्दी में उसे पहचाना नहीं। जलन की चरमराहट जरा कम होने पर वो एक जाट के यहां जा पहुंचा। वहां भी काफी मजे लूट चुका था, दूध दही और हलवा। चौधरी ने तीनों देवरों की थापना करवाई थी। कुमार को सोने की चौकी मिली थी। गधे के बदन पर भी गुलाबी छापे मांडे थे। मेहंदी का टीका निकाला था। उसका सभाग कि चबूतरे पर ही रोटियों की टोकरी रखी थी। आड़े दिन तो दही सोगरे भी काफी। टोकरी में मुंह डालकर भचड़ भचड़ सोगरे खाने लगा। चौधरी हाथ में जई लेकर बाहर आया तो उसकी आंखें दहक उठी। पंजे के बल होकर पीठ पर ऐसा करारा वार किया कि वो धूल चाटने लगा। उसका गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ। पेट पर दना दन चार पांच और जमा दी। हर चोट के साथ उसकी आंखों के आगे बिजली चमकती। गधा मार खाने में मजबूत होता है, दूसरा जानवर होता तो उठ भी नहीं पाता। पर वो तो ठोकरों के साथ ही आपा संभाल कर घोड़े की रफ्तार से भागा। राह में उसके देखे भाले लुहार का घर आया। धौंकनी चल रही थी। पास ही बीज के लिए बाजरी की गठरी खुली पड़ी थी। ना कुछ बाजरी के लिए कौन मना करेगा। मुंह डालकर बकल बकल खाने लगा। फर फर की भनक सुनकर लुहार ने मुड़कर देखा। मार से लहू लुहान गधा यहां भी बाज नहीं आया। लुहार के कलेजे में भट्टी दहक उठी। लाल सुर्ख हसिए के मूठ पकड़कर उसके पुट्ठों पर डाम जड़ दिया। चमड़ी जलने की चरड़ सी आवाज हुई। थोड़ा सा धुआं उठा। रेंकने की ताकत भी ना बची। मुंह उठाकर सर पट भागा, बिना देखे सीधे कुमार के बाड़े की ओर। भरम का जाला कट गया कि कुमार के बाड़े के अलावा कोई आसरा नहीं। मूर्तियां ढोने से बेहतर कोई काम नहीं। भरम की जितनी मार खाई और जो डाम उगड़ा वो ही बहुत। बैठे बिठाए कैसी तो मत ओढ़ ली। जाने बूझे हाथ का परस पाकर उसने आंखें खोलीं।

हार प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं जानता था कि तू वापस आएगा। वो चुपचाप पूंछ हिलाते आंसू बहाने लगा, सोचने लगा, किसी दिन हसीये की यह जलन भी खत्म होगी, जरूर खत्म होगी, पर भरम के मानड़े का दाग कभी नहीं मिटेगा।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

गुलामी कब तक? एक सूफी फकीर थे, वो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। एक आदमी स्वस्थ गुलाम खोज रहा था। उसने फकीर को देखा, फकीर स्वस्थ था, कपड़े जरूर फटे हुए थे। आदमी ने सोचा कि यह जरूर कोई भागा हुआ गुलाम है। उस आदमी ने फकीर से पूछा, क्यों जी, क्या तुम भागे हुए गुलाम हो? फकीर ने कहा, अरे वाह, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, भागा हुआ हूं और गुलाम भी हूं। फकीर का मतलब था, परमात्मा से दूर हूं तो गुलाम ही हूं। पर उस आदमी को फकीरी की इस भाषा से कोई मतलब नहीं था। उस आदमी ने कहा, चलो ठीक है, मैं भी एक गुलाम की तलाश में हूं, मैं तुम्हारा मालिक बनने को तैयार हूं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फकीर ने कहा, गजब है, ये तो यही मेरी खोज है, मैं भी तो मालिक को ही खोज रहा हूं। वह आदमी उसे घर ले गया और कहा, अब जो काम मैं बताऊं वो करना। फकीर ने कहा, यही तो मैं चाहता था कि कोई बताने वाला मिल जाए कि मैं करूं क्या, अपने लिए तो सब अनकिया हुआ जा रहा है, तुम भले मिले। आदमी ने सोचा, यह आदमी तो पागल है या कुछ समझने में गलती हुई है। पर फिर सोचा कि गुलाम ने खुद ही हामी भरी है, मुफ्त में मिला है, उसने उससे काम लेना शुरू कर दिया। वह आदमी इतना भला पाया कि उस आदमी ने उसका नाम खैर रख दिया। खैर मतलब भला। फिर उससे कपड़ा बुनना सिखाया तो उसका दूसरा नाम हो गया नसाज, यानी कपड़ा बुनने वाला। खैर नसाज उस सूफी फकीर का नाम हो गया। 10 साल बीत गए, उसने बड़ी सेवा की मालिक की। अब मालिक को कचोटने लगा कि वह बहुत शोषण कर रहा है, कभी उसे कुछ दिया नहीं। आदमी ने नसाज को बुलाया और कहा, मुझे लगता है मैं शोषण कर रहा हूं, अब और नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, अब तुम अपने मालिक हुए। नसाज ने कहा, बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा की तुमने, मुझे मेरा मालिक बना दिया। तुम्हारे पास मुझे दास बनने की कला सीखने को मिली, मेरा अहंकार टूट गया, अहंकार टूटा तो गुलामी मिटनी शुरू हो गई, और देखो तुम तक मुझे मुक्त कर रहे हो। पर सवाल है कि तुम कब तक खुद गुलाम बने रहोगे?

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रहीं, एक्ट्रेस रहीं हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एंड रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक क्रिश्चियन हैं। आइए उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं महेंद्र गौतम जी का जयपुर से। गौतम भाई, जरा ये बताइए अदाकारा हेलेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शी वॉज अ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। उनकी केमिस्ट्री जो आयशा भोसले के साथ में है और उनके जो गाने हैं वो आपको वैसे ही थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो वो उनके गाने अपने आप में बहुत मजेदार गाने होते थे, आप थिरकते थे उनसे, आज भी थिरक उठते हो।
0: बेहतरीन बेहतरीन गौतम भाई, थैंक यू सो मच गौतम, आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

बड़ी ही मजेदार बात है कि एज एक्ट्रेस हेलन और उनके लिए गाना गाने वाली हमारी प्रसिद्ध गीत गायिका आशा भोसले जी की बेहद गहरी दोस्ती थी। आशा भोसले जी ने हेलन के करीब करीब सारे गाने गाए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन ने सलीम खान जी से शादी की, जिसकी वजह से वो सलमान खान जी की फैमिली से जुड़ी। यूं देखा जाए तो सलमान खान उनके सौतेले बेटे हैं, बट दोनों के बीच बेहद प्यार है। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साथ पद्म श्री अवार्ड्स के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, सांसों में तेजी थी, दिल में बेबसी थी। परली ने पहले बताया ही नहीं कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

साथ में चलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहे भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है। जब दिल पे चुड़ियां चलती है, जब चैन से कोई सोता है।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुईं, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है

देवानंद जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

0: कटारी
1: है मीठी

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि देवानंद साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था, क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थीं। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: गांवों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इस

किससे पूछूं मैं भला अब, देखा कहीं मुमताज़ को, मेरी भी एक मुमताज़ थी, मेरी भी एक मुमताज़ थी। दोस्तों, जब मोहब्बत का अंत एक मुकम्मल खामोशी में बदल जाता है और यादों की परछाइयाँ ही इंसान का इकलौता वजूद बन जाती हैं, तब दिल का मलाल ऐसे ही अल्फाज इख्तियार कर लेता है। मधुकर राजस्थानी साहब की कलम से निकले ये अल्फाज ताज की उस आलिशान खूबसूरती की बात नहीं करते, बल्कि उस आम इंसान के टूटे हुए तसव्वुर की बात करते हैं जिसका सब कुछ उजड़ चुका है। वो शाहजहां जैसी हैसियत तो नहीं रखता कि महल तामीर कर सके, मगर उसका बिछड़ने का मलाल किसी शहंशाह से कम भी नहीं। साल 1969 की इस तारीखी गैर फिल्मी नज्म को जब रूहानी तासीर देने की बात आई, तो मन्ना डे साहब ने इस कलाम को सिर्फ अपनी बेमिसाल आवाज ही नहीं दी, बल्कि इसकी धुन भी खुद अपने ही संगीत के सांचे में ढाली। इस नज्म की बनावट वाकई बहुत अनोखी है। शुरुआत की चार सत्रें एक बेहद धीमी और दर्दनाक बंदिश में तैरती हैं और फिर अचानक साजों का बहाव तेज हो जाता है, जो जहन पर एक मुकम्मल और गहरा नक्श छोड़ जाता है। दोस्तों, इस नज्म की याद आज मुझे अचानक हो आई। बचपन में इसे बहुत सुना था, तब इतने जज्बात और एहसासों से रूबरू नहीं हुई थी ना, सो गहराई समझ ना पाई, लेकिन रूह को तब से ही इससे आशनाई हो गई होगी, तभी तो आज अचानक ही इसकी याद हो आई। नज्म का जरा मिसरा गौर फरमाएं। पत्थरों की ओट में महकी हुई तन्हाइयां, पत्थरों की ओट में महकी हुई तन्हाइयां कुछ नहीं कहती, डालियों की झूमती और डोलती परछाइयां कुछ नहीं कहती, खेलती थी साहिल में लहर ले रही अंगड़ाइयां कुछ नहीं कहती, ये जान के चुपचाप हैं मेरे मुकद्दर की तरह, हमने तो इनके सामने खोला था दिल के राज को, किससे पूछूं मैं भला, देखा कहीं मुमताज़ को, मेरी भी एक मुमताज़ थी, मेरी भी एक मुमताज़ थी। ये नज़्म मैंने जितनी बार सुनी या जितनी बार भी सुनती हूँ, बारहा आँखों से आंसू बहने लगते हैं दोस्तों। तो आप सुनिए और बताइए, कहीं देखा है क्या मुमताज़ को? मन्ना डे जी की आवाज़ में ये खूबसूरत कलाम, आपकी नज़र।

गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात। गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात। नवाए मीर सुनाओ, बड़ी उदास है रात। दोस्तों, रात का सन्नाटा जब गहरा होता है, दिल के छुपे हुए जख्म और पुरानी यादें एक खामोश सैलाब की तरह उमड़ पड़ती हैं। उर्दू अदब के होनहार चमकते सितारे फिराक गोरखपुरी साहब ने इस कलाम में दिल की उसी उदासी को साजों का सहारा दिया है। वो कहते हैं, उदास रात को काटने के लिए संगीत का सहारा लो, और नवाए मीर यानी मीर तकी मीर के उन दर्द भरे शेरों को दोहराओ जो सदियों से आशिकों के टूटे दिलों का मरहम कर रहे हैं। इस नायाब कलाम को साल 1990 के मशहूर सीरियल कहकशां के लिए जब जगजीत जी ने अपने तिलस्मी सुरों से नवाजा, तो ये हर तन्हा दिल की इबादत बन गई। गजल का मिसरा मुलाहिज़ा फरमाएं, मकां की बंदिशे टूटी, मकां की बंदिशे टूटी, जमी के साए उड़े, हवा का रुख तो देखो, बड़ी उदास है रात। फिर शायर कहता है, कसक है दिल में, धड़कन में एक बेकरारी है, कसक है दिल में, धड़कन में एक बेकरारी है, कोई सुबकी तो छुपाओ, बड़ी उदास है रात। तो आइए इस दूसरे पायदान पर सुनते हैं जगजीत सिंह जी की पुरसोज आवाज में ये गजल, गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात। नवाए मीर सुनाओ, बड़ी उदास है रात। आपकी नजर।

रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जनाना हो गए। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ऐसा भी हसीन मोड़ आता है जब कोई अजनबी हमारी ज़िंदगी के दायरे में चुपके से कदम रखता है और धीरे धीरे हमारे वजूद का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। तस्लीम फाजली साहब ने इस कलाम में मोहब्बत की इसी मुकम्मल सुपुर्दगी और रफ्तार को लिखा है। वो कहते हैं कि जो शख्स कल तक महज एक अजनबी था, वो रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे मेरी हस्ती का सामा हो गया। पहले वो मेरी जान बना, फिर जाने जा और आखिर में मेरी रूह का मालिक बन गया। दोस्तों, की है क्या ऐसी पारसा मोहब्बत किसी से आपने? बुनियादी तौर पर उस्ताद मेहदी हसन साहब की आवाज़ में मशहूर हुए इस तारीखी दर्द को आज हम एक बिल्कुल नए और नायाब अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। आज इस नफीस कलाम को अपनी खूबसूरत आवाज़ का पैरहन दिया है सरहद पार के ही संजीदा गुलकार मोहम्मद अली साहब ने, जिनकी भारी पुरसर और ठहरी हुई आवाज़ में जो एक मखमली सुकून है, वो इस सदाबहार कलाम के साथ मिलकर जहन पर एक नया सुरूर तारी कर देता है। गज़ल का मिसरा तो सुने जरा। बकौल शायर, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुले बादामा हो गए। रानाइयाँ यानी हुस्न की खूबसूरती, गुल बेदामा यानी फूलों के आगोश में सिमट जाना। शायर की ज़ुबानी समझें तो वक्त गुजरने के साथ साथ महबूब के हुस्न और उसकी सादगी की कशिश इस कदर बढ़ती गई कि वो खिलते हुए फूल से बढ़कर बहार का मुकम्मल मंजर बन गया। और जब ये दीवानगी आखिरी हदों को छूती है तो मोहम्मद अली साहब का ये मिसरा सीधे कलेजे के पार उतर जाता है। सुनिए, सोजे गम को खा लिया, सोजे गम को खा लिया बेचैनियों की रात ने, पहले दर्द फिर दर्दे दिल फिर दर्दे पन्हा हो गए। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस बेहद नफीस पड़ाव पर सुनते हैं मोहम्मद अली साहब की आवाज़ में ये मशहूर शाहकार, रफ्ता रफ्ता वो मेरी जिंदगी का सामा हो गए। पहले जाने जा फिर जाने जनाना हो गए। शौक फरमाई।

न डर मौत से इतना कि मौत डर से आ जाए। जिंदगी बस में कहाँ तेरे, मौत अगर से आ जाए। जिंदगी एक शराब तो आदमी बेताब तो, भागता है तेरे पीछे, मिलती जिसका

कहे आदमी से, आदमी अजीब तू। दोस्तों, आपके लिए इस महफिल का सबसे हटकर नगीना है ये गज़ल, जो कि आप यकीन नहीं करेंगे कि किसने गाई। क्या आपको अभी जो मैंने मिसरे सुनाए कुछ याद आया? चलो, नहीं आया तो मैं बताती हूँ। इस नायाब और गहरे खसूसी कलाम को गाया है हमारे बहुत प्यारे गुलुकार सुरेश वाडेकर साहब ने। ये गज़ल उनकी निजी एल्बम कुछ और नहीं से ली गई है। इसको लिखा है उदय पौडकर ने और मौसीकी से सवारा है पुंडलिक कोल्हटकर ने और श्याम शीर सागर जी ने। तो आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर साहब की आवाज़ में ये बेहद बेहतरीन गज़ल। ना जिंदगी के करीब तू, ना मौत के करीब तू, आदमी कहे आदमी से, आदमी अजीब तू। आपकी नज़र।

दोस्तों, हमारी अगली पेशकश बूझिए तो किस आवाज़ में इस महफिल में अपने रंग बिखेरेगी। ये हमारे किशोर दा की आवाज़ में वो नगमा है जो अनरिलीज्ड वर्जन है। इसको लिखा है योगेश जी ने। दोस्तों, ये किशोर दा का बहुत ही सुंदर अनरिलीज्ड शाहकार है जो आमतौर पर महफिल गज़ल में सुनाई नहीं देता। किशोर दा की आवाज़ का वो मखमली धीमापन और उनके लहजे की सादगी इन सीधे सादे अल्फाज के साथ मिलकर जहन पर एक नया सुकून तारी कर देती है। इसका मिसरा नोश फरमाए। प्यार है वो रंगों का बादल जीवन पर जो छाए, प्यार है रंगों का बादल जीवन पर जो छाए, मन चाहे तो बरसे वरना बिन बरसे उड़ जाए। कभी ये मन की प्यास बुझाए, कभी ये आग लगाए, रेत में ये मोती सा चमके शबनम सा खो जाए। प्यार अजनबी है जाने कहाँ से आए, कितना गहरा कितना सादा कितना सच्चा एहसास प्यार का। आइए किशोर दा की जादू भरी आवाज़ में सुनते हैं ये नगमा। प्यार अजनबी है जाने कहाँ से आए, जाने कहाँ से आए, कब जीवन में फूल खिलाए कब आंसू दे जाए। प्यार अजनबी है आपकी नज़र।

दोस्तों, अब हमारी आज की इस महफिल का ये आखिरी कलाम है। ये नगमा रूह की उस बेबसी को बयां करता है जहां दो चाहने वाले ज़माने की बंदिशों के आगे घुटने टेक देते हैं। बाबू सिंह मान ने इस कलाम में उस कड़वे सच को लिखा है कि कभी कभी मोहब्बत करना जितना आसान है, उसे निभा पाना उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल या दर्दनाक साबित होता है। इंसान इसी कश्मकश में पूरी तरह से टूट जाता है कि वो अपने जज्बातों की सुने या इस दुनिया के दस्तूर को माने। और जब इस खामोश तबाही को सुरों का लिबास देने की बात आई तो उभर कर आए एक ऐसे बाकमाल और मुनफरिद गुलकार सुखविंदर सिंह साहब। सुखविंदर जी की गायकी की ये खासियत रही है कि उनकी बुलंद पुरअसर और सूफियाना आवाज़ में जो एक रूहानी टीस छुपी होती है, वो आदेश श्रीवास्तव साहब की इस नाजुक धुन में के साथ मिलकर जहन पर एक अजब सा सुकून तारी कर देती है। उनका वो साफ पंजाबी और उर्दू का मिला जुला लहजा सीधे सुनने वालों के दिल के हार पार हो जाता है। इस कलाम का अंदाज़े बयां सुनिए। बकौल शायर, लाई वी ना गई ते निभाई वी ना गई, लाई वी ना गई ते निभाई वी ना गई, मैंने मारदा मैंने मारदा मैनू जग सारा, तेरी मेरी इंज टुट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा। दोस्तों, सीधा साधा मतलब है, मोहब्बत की भी ना गई, मोहब्बत की भी ना गई और निभाई भी ना गई, ताने मारता है अब मुझे जग सारा, तेरी मेरी इस तरह से टूट गई सोनिए जैसे टूटे कोई अंबर से तारा। दोस्तों, है तो ये पंजाबी कलाम, लेकिन मोहब्बत की जुबां इतनी भी कठिन नहीं होती कि दिल तक पहुंच भी ना पाए। शायर फिर कहता है, हो सोचिया नहीं सी मेरा प्यार भूल जावेंगी, मैंने सोचा नहीं था कि तू मेरा प्यार भूल जाएगी, इन्ने किते हुए तू करार भूल जाएंगी, इतने मेरे साथ करार किए हुए भूल जाएगी, करार भूल जाएगी। फिर कहते, दिल टूटिया ना जुड़े दोबारा। अब इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है समझना कि टूटा हुआ दिल तो जुड़े ना दोबारा, तेरी मेरी इंज टूट गई सोनिए, तेरी मेरी ऐसे टूट गई सोनिए जिवें टूटिया अंबर तो तारा, जैसे टूट गया अंबर से तारा। आपकी नज़र प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी

दोस्तों, सुरों, साजों और अनोखे एहसासों की जिस सरजमीं पर आज हम सब सफ़र कर रहे थे, अब वहाँ इस महफिल को समेटने का वक्त आ पहुँचा है। मन्ना डे साहब के उस टूटे हुए तसव्वुर से शुरू हुआ अल्फाज का ये कारवां, जगजीत जी के उस उदास रात के सन्नाटे, मोहम्मद अली साहब की रफ्ता रफ्ता बढ़ती हुई मोहब्बत और सुरेश वाडेकर की वो दार्शनिक पहेली, किशोरदा के उस अजनबी अछूते रंग और आखिर में सुखविंदर सिंह साहब की इस बुलंद सुफियाना पेशकश तक आते आते हमारे जहन को एक नया फलसफा सौंप गया। हकीकत ये है कि रेडियो बंद होने पर भी इन अजीम फनकारों की आवाज़ें आपकी तन्हाई का हमसाया बनकर आपके साथ रहेंगी। सो उसी असर को अपने दिलों में महफूज रखते हुए अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो मुझे, यानी आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय को अब इस मोड़ पर इजाज़त दीजिए। आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर। अपनी सेहत का, अपने चाहने वालों का, अपनी सोच का खूब ख्याल रखिएगा। आप सभी हसीन कदरदानों को मेरी तरफ से एक बेहद हसीन और पुरसकून शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

0: दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: शहरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: किसान भाइयों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो टंटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे गाय के गोबर में कितनी गुणवत्ता है, कितने प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कितना लाभ ले सकते हैं हम कृषि में। तो इससे जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
5: मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, पालेकर जी ने भी करवाए हैं, माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर ने महीनों इस पर रिसर्च करने के बाद पाया, उन्होंने भैंस का भी गोबर लिया, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय का भी गोबर लिया, बैल का भी लिया, लेकिन जो भारतीय नस्ल की देशी गाय है, ओनली देशी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, ये जो गाय हैं पूरे भारतवर्ष में जो जिन प्रांतों में परंपरा से चली आ रही, उनके गोबर गोमूत्र में यही कमाल है, बाकी कहीं नहीं मिला। तो हमने देसी गाय के गोबर गोमूत्र की जब रिसर्च करवाई तो गोमूत्र तो खनिज का भंडार मिला, और देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया जीवाणु पाए, जो अन्य किसी में इतने नहीं। तो हम क्या करते हैं जीवामृत बनाने के लिए, देसी गाय जो स्वस्थ है 24 घंटे में रात दिन में 8 से 10 किलो गोबर देती, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। इस गोबर गोमूत्र को इस ड्रम में डाल दें पानी वाले में, और उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी, और इसको लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 5 दिन घोलना है। छठे दिन 1 एकड़ का खाद तैयार है।
6: अच्छा,
5: अब मिश्रा जी, दुनिया में 1 एकड़ का 6 दिन में खाद तैयार हो जाए कोई पद्धति नहीं। और हाँ, और इसमें साइंस क्या है वो सब किसान बंधुओं के लिए समझने की बात ये है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे, असंख्य होंगे।
6: बिल्कुल।
5: और मूत्र जो हो खनिजों का भंडार है, जो जमीन को तत्व चाहिए उनसे भरा पड़ा है। अब इन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन दे दिया हमने, वो प्रोटीन है
6: जी।
5: जब वो जीवाणु इस प्रोटीन को खाएंगे तो पुष्ट होंगे, बलवान होंगे, स्वस्थ होंगे, और गुड़ डालते हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, और जो मिट्टी के जीवाणु हैं वो उनमें मिलके वो असंख्य संख्या में बढ़ेंगे, उनकी कोई गिनती नहीं, इतनी मात्रा में बढ़ते। अब इस घोल को हम 6 दिन से 12 दिन के बीच में स्प्रिंकल के द्वारा और ड्रिप के द्वारा या खुले पानी में, पानी के साथ इसको छोड़ दें, 1 ड्रम को 1 एकड़ में
6: जी।
5: तो ये पूरे खेत में फैल जाएगा। जब ये खेत में जाएगा तो ये वहां जामुन का काम करेगा। जैसे 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दें तो सारा दूध दही में बदल जाता है, ऐसे ही ये जीवाणु जामुन का काम पूरे खेत में जाके करेंगे, और मिट्टी के जीवाणुओं से मिलके अनेक तरह के बैक्टीरिया वहां पैदा होंगे, अनेक प्रकार के, और ये बैक्टीरिया ही वो हैं जो 78% नाइट्रोजन आकाश में है उसको ये खींचेंगे और ये पौधे की जड़ को देंगे। इसके अतिरिक्त हमें नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी बाजार की जरूरत ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी धरती में फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, ये तत्व पहले से ही विद्यमान होते हैं
6: जी।
5: लेकिन ये सारे तत्व धरती में होते हुए अपने आप पौधे के भोजन का निर्माण नहीं करते।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
5: उदाहरण के लिए, बहुत मोटा उदाहरण, हमारे घर में किचन रसोई है, सबके घर में रसोई में नमक भी है, तेल भी है, आटा भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, सारी चीज हैं, लेकिन उससे अपने आप भोजन तो नहीं बनेगा।
6: अपने आप तो नहीं बन सकता जी।
5: सारी चीज है लेकिन भोजन नहीं बनेगा। भोजन कब बनेगा? जब हमारी माता बहन उठेगी, वो आटे को परात में डालेगी, पानी से गूंदेगी, चपाती बनाएगी, दाल उठाएगी, सब्जी काटेगी, छौंका लगाएगी, पकाएगी, तभी वो भोजन तैयार होगा खाने के लिए। बिल्कुल जो काम रसोई में हमारी माता बहन करती है, वही काम किसान के खेत में जीवाणु करता है। जो तत्व धरती में है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम आदि जो तत्व हैं, वो गांठ बनाए पड़े हैं, उनसे उनको तोड़ के भोजन बनाने का काम पौधे के लिए जीवाणु करता है। तो धरती में जितना जीवाणु बढ़ेगा उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। लेकिन जो रासायनिक खेती है वो इन जीवाणुओं को मारने का काम करती है। तो यदि लंबे समय आप रासायनिक खेती करते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम बंजर जमीन बना के देंगे, कुछ नहीं पैदा होगा एक समय के बाद, बिल्कुल कुछ नहीं पैदा होगा। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो मित्र कीट हैं खेती में, किसान के बहुत बड़े मित्र हैं, उनमें एक केचुआ है, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सबसे बड़ा मित्र है। और ऐसे और भी कीट हैं जो मित्र का काम करते हैं। वो मोटा उदाहरण, आप एक खेत से एक केचुए को पकड़ो और यहां उसको लेके आओ, रखो और उसके ऊपर यूरिया डीएपी डाल दो, जिएगा या मरेगा?
6: नहीं जिएगा।
5: सीधा, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा
6: जी?
5: वो मरेगा। और उसी के ऊपर गाय का गोबर डाल दो तो वो परिवार बढ़ाएगा,
6: बिल्कुल
5: वो स्वस्थ होगा, उसका भोजन मिलेगा। अब इतना स्पष्ट है किसान बंधु के लिए कि हम रासायनिक खेती के द्वारा उन मित्रों को मारने का काम कर रहे हैं। तो बताइए धरती का ऑर्गेनिक कार्बन गुणवत्ता, उसकी फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? और इस बात को साइंटिस्ट समझेंगे तभी बात बनेगी। और इसके मैं बड़े प्रबल उदाहरण दूंगा अपने खेत के, बिल्कुल प्रबल। इस समय भी हमारे ये मित्र कीट कुछ बचे हुए हैं और वो यूरिया डीएपी कीटनाशक से डरते हुए धरती में नीचे समाधि लिए बैठे हैं। यदि उनका भोजन उनको मिलेगा तो वो अब भी बेचारे अपना काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं संभले और यूं ही चलते रहे, उनका बीज ही नष्ट हो गया तो फिर जमीन बंजर बनेगी, विनाश का रास्ता दिखाई पड़ता है। एक मैं और मोटा उदाहरण आपको देता हूं, आप तो गांव में रहते हैं
6: जी।
5: मुझे अपार प्रसन्नता, और गांव के लोगों के लिए काम करते हैं, बहुत खुशी मेरे को हुई। जब किसान घर से अपनी गाय को खोलता है, खूंटे से गाय निकली घर से बाहर और कच्ची जगह पर वो चलती है, और चलते हुए एक गोबर यहां किया, एक यहां किया, एक यहां किया और चली गई, ऐसा होता है ना
6: जी? बिल्कुल।
5: आप अब गांव में जाके ये अनुभव करना, वो जो गाय ने गोबर किया है ना, आप 3 दिन के बाद उस गोबर को उलट के देखना, उसके नीचे आपको 2-3 छेद मिलेंगे।
6: अच्छा,
5: उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे। जो किसान बंधु सुन रहे हैं ना मेरे को, वो इस बात को एकदम स्वीकार करेंगे, ऐसा है। अब गाय ने जब गोबर किया तब छेद नहीं थे वहां, उस समय छेद नहीं था, लेकिन धरती में समाधि लिए जो मित्र जीव बैठे हैं उनको ऊपर उनका भोजन मिल गया। और उसकी गंध पा करके धरती को फोड़ के वो ऊपर भोजन लेने के लिए आ गए। ऐसे ही जब हम जीवामृत खेत में डालते हैं ना, जो मैंने बताया
6: जी।
5: और घन जीवामृत डालते हैं तो ये अर्थवर्म 10 से 12 दिन के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर देगा, धरती को फोड़ के एकदम काम शुरू करेगा। और ये जो केचुआ है ये अपने जीवन में हजारों बच्चों को जन्म देता है, और जब मरता है तो पौधे को खाद दे करके जाता है और नया परिवार बढ़ा के जाता है। और भारतीय केचुए में विशेषता क्या है, वो जो हमारा वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ तो विदेशी है, वो तो गोबर ही खाता है, हमारा केचुआ मिट्टी भी खाता है और गोबर भी लेता है, ये दोनों करता है। और ये काम कैसे करता है, ये देखिए यूं जाता है और दूसरे छेद से आता, इस छेद से जाता, इससे आता, इससे जाता, इससे आता, जिस छेद से जाता उससे वापस नहीं आता, नया छेद बना के आता है। और ये 8-10 फीट तक जमीन में छिद्र बनाते हुए, कैसे छिद्र बनाता है, जब ये नीचे जाता तो वर्मी वो शरीर से छोड़कर छेद को लीपते हुए जाता, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता
6: जी।
5: और धरती में जो खनिज है उनको खा के पेट से निकाल के पौधे की जड़ को देता, जिसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व हैं जो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और पौधे की खुराक देने का काम करते हैं। ये काम की करता अर्थपन।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आप रेडियो आपकी बातें।
5: अब जो छिद्र हैं उनसे ऑक्सीजन धरती को मिलता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और इसका कितना बड़ा काम ये करेगा कि जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे, तो ये अपना इतना परिवार बढ़ाएगा कि एक एकड़ में मेरा खेत जो है उसमें कई लाखों की संख्या में केचुआ काम करता, कई लाख, और रात दिन काम करता, बिना पैसे का मजदूर है
6: जी।
5: वो सारी जमीन को मुलायम बना देता है, नीचे की जमीन को उलट देता, खनिज को नीचे को ऊपर दे देता, ये काम करता है। और जब लाखों केचुआ यही काम करते हैं तो पूरी धरती में छिद्रों का भंडार बनता, ऑक्सीजन से फर्टिलिटी बढ़ेगी। और जब वर्षा आएगी और चारों तरफ मेड़ है खेत के, सारा पानी इन छिद्रों के द्वारा धरती माँ के पेट में चला जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए जो सरकार खर्च करती है उसकी कोई जरूरत नहीं। यदि सारी धरती पे प्राकृतिक खेती होगी तो ये बाढ़ आने की नौबत ही नहीं आएगी। अब बाढ़ आती कैसे है, जमीन को यूरिया डीएपी ने पत्थर बना दिया, सख्त कर दिया, मित्र जीव बचे नहीं, छेद उसमें है नहीं, बारिश बरसती है, पानी तेजी से बह करके नदी नालों में जाके बाढ़ आ जाती है, धरती में जाने नहीं पाता, वाटर लेवल डे बाय डे डाउन आ रहा है
6: बिल्कुल।
5: तो ये विनाश का रास्ता यूं चल रहा है। दूसरा मिश्रा जी, जब ये तो हुई वर्षा का इलाज, पानी जाएगा तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, और ये पानी भी कैसा है, स्टीलाइज पवित्र वर्षा जल धरती में जाएगा तो पीने के लिए भी काम आएगा, खेती के भी काम आएगा, हमारा भूगर्भ भंडार जल का भरेगा। जब अकाल पड़ेगा, जून का महीना होगा, लूएं चलेंगी, बारिश होगी नहीं, ऐसे समय पौधा कैसे बचेगा, तो ये जो छिद्र बनाए है ना, जब धरती तपेगी तो नीचे तो पानी है ना, उसमें वाष्प बनेगी
6: जी।
5: जब वाष्प बनेगी तो वो वाष्प इन्हीं छिद्रों से ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी, अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। और इसका उदाहरण क्या है, जंगल में जो नियम काम करता वही मेरे खेत में करना चाहिए। जंगल के पेड़ को यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, कीटनाशक कौन देता है, पानी कौन देता है, लेकिन समय पर आकर के वो पेड़ फलों से लद जाते हैं। आप जंगल के किसी पेड़ के पत्ते को तोड़कर लैब में ले जाओ और उसको टेस्ट कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलेगी। जब वहां ये नियम काम करता तो वही नियम हमारे खेत में भी करना चाहिए। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। प्रकृति जो काम जंगल में करती वही काम खेत में होना चाहिए, इसका नाम प्राकृतिक कृषि है। तो इसका ये इतना बड़ा लाभ है। इसमें दूसरा हमें खाद बनाते हैं, ये तो जीवामृत है
6: जी।
5: एक है घन जीवामृत, वो क्या है, जब किसान के पास ज्यादा गोबर हो जाए, जीवामृत की जरूरत खेत में ना रहे, तो वो सूखी देसी गाय की एक क्विंटल गोबर की खाद धरती में थोड़ा उसको पीट के बारीक कर ले, उसमें यही चीजें डालनी जो आपने जीवामृत में डाली, उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी और 5-7 किलो गौमूत्र उसमें मिला के और पशुशाला के कोने पर रख दे, प्लास्टिक से ना ढके, जूट की बोरी से ढक दे। ये घन जीवामृत 6 महीने भी खराब नहीं होता।
6: अच्छा।
5: इसमें जीवाणुओं का भंडार बन जाएगा। जब किसान खेती बीजे तो उससे पहले DAP की तरह धरती में इसको डाल दे और उसके बाद बीजे। ये आप ज्यादा कम बढ़ा सकते हैं, कोई खतरा नहीं। 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ डाल दें तो उत्पादन बहुत बढ़ेगा। और जीवामृत जो है, हर पानी जब देता किसान, हर पानी में जीवामृत छोड़ दे और 15-20 दिन में फसल के ऊपर 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डालकर उसका स्प्रे कर दे, तीसरे दिन फसल की रंगत बदलेगी। तो ये 2 तरह के हम खाद बनाते हैं। अब शुरू में जब हम रासायनिक से प्राकृतिक खेती में आएंगे तो धरती की ऑर्गेनिक कार्बन कम है, धरती बंजर कमजोर हो चुकी है, तो उसमें कीट पतंग आएंगे। उनके निदान के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी, प्राकृतिक कृषि, इसमें पूरा विवरण मैंने दिया है। उसमें नीमास्त्र, सूंठास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, ऐसे कुछ कीटनाशक बनाते हैं प्राकृतिक। गाय मूत्र में नीम, धतूरा, आग, चिरायता, गिलोय, ऐसी जड़ी बूटियों को पका के रख लेते हैं और उसको पानी में 2 लीटर डाल के, 15-20 लीटर पानी में 2 लीटर डाल के टंकी से छिड़काव करेंगे तो कीट का भी इलाज हो जाएगा। और उसमें जो फंगस वगैरह आती तो खट्टी छाछ, कई कई महीने पुरानी खट्टी छाछ, उसको भी हम पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं तो वो पौधे को ताकत भी देगी और रोगों से भी बचाएगी। इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा, दोनों घर में किसान बना सकता है। और जब आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, ताकत उसकी बढ़ जाएगी, तो बीमारी आनी खत्म हो जाएगी। मेरे 200 एकड़ खेत में कीटनाशक में छिड़कता ही नहीं, ये जो मैंने बताया इसकी भी जरूरत नहीं है। अब बीमारी आना ही बंद होगी मेरे खेत में और ये जो छिड़काव है ये भी कम हो गए हैं। इतनी जमीन उर्वरक बन गई है कि उसमें मित्र कीटों ने अपना काम इतना कर दिया है कि अद्भुत काम उसमें शुरू हो गया। तो एक तो पद्धति खाद के रूप में तो ये है, जीवामृत, घन जीवामृत। और इसके साथ एक है आच्छादन, मल्चिंग। जब हम फसल बोते हैं तो इस प्राकृतिक खेती में एक तो मल्टी क्रॉप करते हैं, एक ही फसल नहीं बोते, एक साथ हम कई कई फसलें बीज देते हैं। गेहूं बोझ दिया तो बीच में चना बो दो, चना उसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगा। ऐसे हम एक समय पर अनेक तरह की फसल बोते हैं और वो एक अब आ गई, किसान को लाभ हो गया, मूल फसल बचत में और ये दूसरी फसल खर्चा निकाल देती है उसका, तो इससे किसान की आय भी बढ़ेगी। और जितना धरती को ढककर के हम रखेंगे उतना ही जमीन की का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। अब ये जो मल्चिंग है वो क्या है, खेत का जो घास फूस है हम उसको आग लगाते, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, इसे प्रदूषण भी बढ़ेगा और हमारे जो जीवाणु वो भी मरेंगे, मित्र जीव भी मरेंगे। हम क्या करते हैं, जो भी अवशेष जमीन में से निकलते हैं उनको काट के जब फसल बो दी, फसल को छोड़ के बाकी खाली जगह है उस पे उसको बिछाओ। उसके कितने जबरदस्त लाभ हैं वो किसान बंधु सुनेंगे। नंबर एक, जब हम धरती को ढक देंगे तो साइंटिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ऊपर होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ना शुरू हो जाता है और वो आकाश में जाकर के वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। और हम उसे मल्चिंग करके ढकते हैं तो वो उड़ने नहीं पाता, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। एक काम। नंबर 2 इस मल्चिंग का लाभ है, कि 50% पानी आपका बच जाएगा, 50% पानी सारे देश की धरती का निकलना बंद हो जाएगा। क्यों? जब हम इसको ढके रखेंगे तो ये जो मल्चिंग है ये आकाश में जो जलीय तत्व है उसको खींचती है और ये जमीन को देती है, तो जमीन की नमी जो है ना वो बनी रहती
6: है।
5: किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए, पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए, और इस मल्चिंग से वो नमी बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी वो किसान बंधु इसको भी समझेंगे। आप अपने खेत में कोई फसल काटते हैं और उसका एक गट्ठा बना करके खेत में डाल देते हैं। जून का महीना है, मई जून का महीना, लूएं चल रही हैं, चारों तरफ पानी कहीं है नहीं, तप रही है जमीन। ऐसे मौसम में जो गट्ठा आपका खेत में पड़ा हुआ है फसल का, भार जिसको बोलते हैं, गट्ठा बोलते हैं, वो उस भार को उलट के देखें, उसके नीचे नमी मिलेगी। सब किसान इसको स्वीकार, ये नमी कहां से आई जब चारों तरफ सूखा पड़ा है। ये जो मल्चिंग है, अवशेष हैं, ये आकाश के जलीय तत्व को खींच के जमीन को देते हैं। तो पानी की 50% 50% जरूरत ही कम हो जाएगी। दो लाभ हो गए। तीसरा लाभ,
4: किसान साथियों, हम लगातार खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे हैं। सो किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडा व्हील 90.8 एफएम के साथ, छावा की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांडा व्हील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांडिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: तीसरा लाभ इसका यह है कि जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो रात में काम करता है, दिन में नहीं करता। दिन में क्यों नहीं करता? जब वो बाहर आता तो उसे पक्षी उठा ले जाते हैं
2: जी।
1: उसको अपनी मौत का खतरा है, वो इसलिए अंधेरे में काम करेगा, प्रकाश होते ही वो अंदर चुप बैठ जाता है
2: जी।
1: यदि किसान मल्चिंग करता, जमीन को ढकता है, तो वो केचवा जो है रात की तरह अनुभव करके मरने के भय उसका खत्म कर दिया, तो वो फिर रात और दिन काम करेगा,
2: डबल शिफ्ट,
1: वो डबल शिफ्ट पे आ जाएगा, डबल शिफ्ट करेगा, और वो किसान की जमीन को ऑक्सीजन भी देगा, खाद भी तैयार करेगा, और वो वर्षा जल का नीचे जाने का भी प्रबंध करेगा, और गर्मी में पेड़ को सूखने भी नहीं देगा। ये अद्भुत काम वो करेगा। और चौथा इसका लाभ क्या होगा कि जो जीवाणु हैं, जो हमने गोबर से लिए थे, जिनको खाने के लिए हमने दाल का बेसन दिया था, अब धरती में वो आ गए तो क्या खाएंगे, उनको भोजन तो चाहिए। ये जो मल्चिंग है, घास फूस, ये उसका भोजन है, वो खाएंगे, ज्यादा काम करेंगे, पुष्ट रहेंगे, और इस सारी मल्चिंग को खा के खाद में बदल देंगे, इसको भी खाद में बदल देंगे। और अंतिम पांचवा इसका लाभ क्या है, जो किसान बहुत लेबर लगा करके घास निकालता खेत की, इसके बिछाने से खरपतवार पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसको सूर्य की धूप नहीं मिलेगी, वो निकलेगा लेकिन पीला पड़ के वहीं खत्म हो जाएगा, उसका बीज ही नष्ट हो जाएगा, और ये खरपतवार की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक खेती का दोनों तरफ से इस रूप में लाभ मिलता है। जब हम ये करेंगे तो इससे ऑर्गेनिक कार्बन, जो जमीन की फर्टिलिटी, वो बढ़ेगी। मैंने अपने खेत में, मेरे दो खेत थे, एक मैं 50, ये 100 एकड़ की मैंने जो बात की है
2: जी,
1: इसमें मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। इसी के साथ बीच में एक पक्की सड़क से इधर हमारा 100 एकड़ का खेत था, जो मैंने भाड़े पे, लीज पे, ठेके पे किसानों को दिया हुआ था,
2: बटाई पे दिया था।
1: ये किसान बंधुओं के लिए बहुत बड़ा प्रमाण, इसे सुनना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। वो जो भाड़े पे, बटाई पे मैंने खेत दिया था, मतलब मैं इकट्ठा पैसा लेता था, बटाई पे नहीं कुछ लेता था मैं। मैंने फिक्स किया था कि मैं 30,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, 40,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, और मेरा खेत तुम्हारा हो गया। मिश्रा जी, अब से 3 बरस पहले वो सब किसान इकट्ठे होके आए मेरे पास, और उन्होंने कहा, जी हम आपका खेत नहीं लेंगे, छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे भाई? कि जी इसमें कुछ नहीं पैदा होता, हमारा तो खर्चा भी नहीं निकलता, हम तो इसने कर्जा ही बना दिए। मैंने कहा क्यों? कि जी होता ही नहीं पैदा। मैंने कहा मेरे ये खेत और ये तो इकट्ठे हैं, और जब मैंने जमीन दी थी तब नहीं होता था, कि तब तो बहुत पैदा होता था, अब नहीं होता। मैंने गांव के और लोग बुलाए, भाई ये लोग सत बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल सच कह रहे, कुछ नहीं होता इनमें, खर्चा नहीं निकलता इनका। उन्होंने छोड़ दिए मेरे खेत। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुरुक्षेत्र में जो डॉक्टर हरिओम की चर्चा की, उनको मैंने बुलाया,

0: मेरे परिचय में भी थे डॉक्टर साहब, किसानों ने मेरा खेत छोड़ दिया और ये कह करके छोड़ा, इसमें कुछ लाभ नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं इसका। उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं पता लगेगा, मैं इस पूरे खेत के मिट्टी के सैंपल लूँगा और इनको यूनिवर्सिटी की लैब में भेजूँगा
1: जी,
0: वहाँ से टेस्टिंग होने के बाद पता लगेगा भूमि की क्या स्थिति है। उन्होंने सैंपल ले लिए, सैकड़ों सैंपल लेकर भेज दिए। डेढ़ दो महीने बाद रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा किसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 पाया, किसी का 0.4 पाया, किसी का 0.5 से सब नीचे नीचे था
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा जी ये किसान जो कह रहे बिल्कुल ठीक है, इस जमीन की फर्टिलिटी खत्म है, इसमें तो यूरिया डीएपी भरकम डालोगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। मैंने कहा अब क्या करूं मैं, तो डॉक्टर हरिओम जी ने कागज पेन लेके लिखना शुरू किया, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटास, इतना जिंक, इतना फास्फोरस, ये और इसमें जो अवशेष होंगे फसल के वो इसी में काटने पड़ेंगे। जैसे धीरे धीरे सालों में ये बंजर हुई है, ऐसे कई सालों में जाके ये उपजाऊ बनेगी। मैंने कहा ये तो बड़ी चिंता का विषय, इतनी जमीन बर्बाद हो गई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बहुत लंबा रास्ता आपने बता दिया, मैं तो अपने ढंग से खेत करूंगा, आप क्या करोगे। मैं कहा ये जीवामृत घनजीवामृत डालूंगा। डॉक्टर हरिओम जी कहने लगे महाराज दुनिया बहुत आगे चली गई, साइंस का जमाना है, गोबर गोमूत्र से क्या बनेगा, साइंटिस्ट मैं हूं या आप हैं, जो मैं कहूं वो करो। मैंने कहा आप वाले कहने से तो ये बंजर हुई है जो इन लोगों ने किया है, तो आप क्या करेंगे। मैं कहा मैं यही करूंगा जो अपनी बाकी खेत में करता हूं, जीवामृत घनजीवामृत डालूंगा। वो कहने लगे इसे कुछ नहीं होगा, आपकी मर्जी, जमीन आपकी, मैंने अपना बता दिया राय, अब जो करना करिए, और वो चले गए।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: मिश्रा जी 3 साल पहले उस बंजर जमीन में मैंने 5-5 क्विंटल घनजीवामृत डलवाया पर एकड़, और उसमें धान की रोपाई की। जब भी पानी देता तो जीवामृत का उसमें घोल छोड़ देता, और 15 दिन बाद जीवामृत का मैंने 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डाल के उसका छिड़काव शुरू किया
1: जी।
0: फसल लहलाने लगी।
1: अच्छा,
0: इतना बढ़िया हरा भरा खेत। मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, मेरे जानकार थे वो, मैं कहा एक बार आओ आपको करिश्मा दिखाता हूं। तब उन्होंने 2-3 महीने के खेत को देखा तो उन्होंने कहा खेत तो वही है जिसे सैंपल लिए थे, लेकिन ये इतनी अच्छी फसल कैसे है, तुमने यूरिया डीएपी डाला होगा। मैं कहा ना एक बूंद भी नहीं, यही डाला बस। तो उन्होंने कहा जब ये फसल कटे तो मेरे को तोल होगा तो मेरे को दिखाना। तो उस बंजर भूमि में पहले साल एवरेज 21 क्विंटल धान निकला मेरा पहले वर्ष, और उसी चीज को मैंने बराबर चलाए रखा। अगले वर्ष उसी जमीन में एक ही साल के अंतर से 28 क्विंटल प्रति एकड़ धान निकला अगले वर्ष। अब वो कहने लगा कि भाई ये हो नहीं सकता, ये तो करिश्मा है। तो उन्होंने एक वर्ष के बाद उस मिट्टी के दोबारा सैंपल लिए, उनकी उत्सुकता बढ़ गई। वो भले आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है, वो जिद्दी नहीं है, और उन्होंने कहा भाई यदि ये है तो ये तो बहुत
1: क्रांतिकारी
0: काम है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने उस पूरी जमीन के दोबारा सैंपल लेके फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार को भेजे और एक दो जगह भेजे, और वहां से फिर रिपोर्ट आई जिस जमीन का एक साल पहले 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे ऑर्गेनिक कार्बन था, उस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन एक साल में 0.7, 0.8 हो गया।
1: अच्छा।
0: वो कहने लगा हमारी साइंस में तो हो ही नहीं सकता। कभी आज भी पूरे देश का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट इस बात को मानेंगे नहीं। और वो ठीक है, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो उनकी सिस्टम तो जीवाणु को मारने का काम करता है, उनका सिस्टम तो केचुए को मारने का काम करता है, मित्र कीट को मारने का काम करता है। जो जीव ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं वो मार दिए तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा कैसे? वो तो ये काम करते हैं। अब हमने जब ये किया तो इससे तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले जीव बढ़ गए, तो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन एक ही साल में 0.3, 0.4, 0.5 से 0.7 और 8 पे गया। तो उसने कहा भाई कमाल हो गया, ये तो अजीब है। और आश्चर्य उनको तब हुआ जब तीसरे वर्ष उसी में 32 क्विंटल एवरेज से धान पैदा हुआ, 32 क्विंटल। और अभी एक महीना पहले ये अब की साल जो कटा है उन्हीं खेतों में 33 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ। और अभी आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी गुजरात की 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। जब हमारा धान खेत में खड़ा था, दूसरी फसलें खड़ी थी, चारों एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर हमारे खेत में कुरुक्षेत्र गए।
1: अच्छा।
0: उन्होंने जाके देखा और ये अनुभव किया कि ऐसी फसल प्राकृतिक में हो सकती हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन चारों ने स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने अपने और साइंटिस्ट वहां पर भेजे। तो अब मेरी जमीन का, अब उसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अब करवाया है तो वो 0.8, 0.9 और 1 से भी ऊपर चला गया।
1: अच्छा।
0: 1 से भी ऊपर चला गया। अब स्थिति ये पूरे खेत की हो चुकी है अभी जो किया। इसका एक और अंतिम उदाहरण मैं देता हूं। अब इन साइंटिस्ट में ये देख के आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ सकता है। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतनी जमीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी
1: जी, बिल्कुल।
0: उसमें रोग भी नहीं आएंगे, हमारी जमीन में खुशबू आना शुरू हो गई। अभी पिछले दिनों वही डॉक्टर बलजीत सारन और उन लोगों की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट नया किया
1: जी।
0: उन्होंने जिला कुरुक्षेत्र की अलग अलग तहसीलों में गए, वो उन तहसील के एक किसान के खेत से मिट्टी ली, दूसरे तहसील के किसान के मिट्टी ली, तीसरे से ली जो रासायनिक खेती करते थे
1: जी।
0: ऐसे 5 किसान उन्होंने लिए जो रासायनिक खेती करते थे, उनकी मिट्टी लेकर के वो आए और उन्होंने सारी 5 किसानों की मिट्टी को इकट्ठा मिला करके यू मिला लिया और लैब में लेकर रिसर्च किया उस पे, तो उसकी 1 ग्राम मिट्टी में 30,05,000 जीवाणु मिले रासायनिक खेती में। फिर उन्होंने हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की मिट्टी को लिया 5 जगह से फिर उसको यूं ही मिलाया और लैब में लेके गए तो उसमें 161 करोड़ जीवाणु मिले।
1: अरे
0: भाई, 1 ग्राम मिट्टी में, हमारी 1 ग्राम में 161 करोड़ और रासायनिक में 30,05,000। अब आप ये साइंटिफिक आधार इससे बड़ा क्या होगा? साइंटिस्ट इस बात को तो मानेंगे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जितना ज्यादा होगा तभी वो फसल बढ़िया देगी। और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम मित्र जीव करते हैं, जीवाणु करते हैं, अब रासायनिक तो उनको मारने का काम करती है। और उसके बाद भी इस सिस्टम को जो ना माने तो ये तो किसान के साथ, बेचारे के साथ और लोगों के साथ बड़ी
1: बिल्कुल
0: नाइंसाफी है ना जी। तो ये इतने उदाहरण मोटे मोटे मैंने आपकी सेवा में दिए हैं, मोटी मोटी जानकारी दी है। और इसका लाभ क्या होने वाला है जो मैं निवेदन करता हूं, कहने को ये प्राकृतिक खेती है लेकिन एक काम से अनेक लाभ और क्रांतिकारी काम क्या होगा, रासायनिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है और प्राकृतिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करने का काम करती है। हवा हमारे अनुकूल बनेगी, पानी जल जीवन है, ये उसको वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। और आज पानी पीने लायक नहीं बचा है, बोतल लिए घूमते हैं
1: जी जी।
0: प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसमें जहर नहीं जाएगा, तो हमारा पानी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा, दो लाभ। तीसरा, प्राकृतिक खेती से जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन दे करके जाएंगे और रासायनिक से उनको बंजर जमीन दे के जाएंगे। चौथा, जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है इसका नस्ल सुधार किया जाए, और ये गाय चलती फिरती जीवाणुओं की फैक्ट्री है, यदि ये बचेगी तो इसका A2 दूध वो तो मानव के कल्याण पीने के काम आएगा, और इसका गोबर गोमूत्र कृषि को बचाएगा। इस समय भारत सरकार 125,000 करोड़ रुपया वार्षिक यूरिया DAP पे सब्सिडी देती है। इतना बड़ा धन यदि देश के विकास में लगे तो देश कहां जाएगा?
1: बिल्कुल।
0: और ये 125,000 करोड़ नहीं, फिर किसानी से खरीदता है, ये 200,000 करोड़ का मामला है, और पेस्टिसाइड वो अलग है। कितना बड़ा एक चक्रव्यूह
1: बिल्कुल
0: चल रहा है, इससे निजात मिलेगी। और पांचवा इसका लाभ है कि जिस आहार को जहर वाले को खा के अस्पताल भरे पड़े, मैं सब बंधुओं से निवेदन करके पूछता हूं कि जब रासायनिक खेती नहीं थी 50-60 साल पहले, कोई कैंसर को जानता था? कोई डायबिटीज को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई हाइपरटेंशन को जानता था? ये इतने असाध्य रोग जिनके निदान के लिए अरबों रुपए के मेडिकल बनाए जा रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा है,
1: जमीन
0: आदमी बीमार हो करके वहां पड़ेगा, काम नहीं कर पाएगा, परिवार दुखी पर बीमार दुखी, ये सारी से मुक्ति का रास्ता इसे मिलेगा। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता करें कि किसान खुशहाल हो, किसान उन्नत हो, उसकी आय बढ़नी चाहिए, ये वो विकल्प है जो किसान की आय बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। और इसका एक प्रबल उदाहरण, मैं 4 वर्ष तक हिमाचल में भी गवर्नर रहा
1: जी।
0: अंतिम 2 साल में मैंने वहां प्राकृतिक खेती का अभियान शुरू किया। जब मेरे खेत में ये परिणाम आए तो मैंने सोचा इस राजभवन में बैठ के क्या करेगा, इन किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, जब एक सिस्टम तूने प्रैक्टिकल कर लिया तो इनका भला होना चाहिए। मैं गांव में घूमना शुरू हुआ और मैंने किसानों को जोड़ना शुरू किया। अंत के 2 साल में मैंने 50,000 किसान प्राकृतिक खेती से जोड़ दिए।
1: अच्छा।
0: और इसको देख करके प्रदेश सरकार ने इसमें पूरी रुचि ली और उन्होंने एक अलग से विभाग स्थापित कर दिया, उसमें एक IAS अधिकारी रखे, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोन सोलन के डॉक्टर राजेश्वर चंदेल साइंटिस्ट इसमें रखे, और उन लोगों ने समझ के, और मैं लगातार उनसे संपर्क में हूं, मेरे आने के बाद 1,00,000 किसान नए जोड़ दिए उन्होंने। अब 1,50,000 किसान लगभग प्राकृतिक खेती करते हैं जहर मुक्त। और 12 अप्रैल को, पिछली जो अप्रैल गई है, इसमें चीफ सेक्रेटरी हिमाचल की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने पूछा, भाई ये जो प्राकृतिक खेती आप करते हैं, जो आचार्य देवव्रत चला के गए थे, इसका कोई लाभ हुआ या हानि हुई? तो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए।
1: अच्छा।
0: कि इस खेती करने के बाद जो लोगों ने खेती की उनकी 27% इनकम बढ़ गई है, और 56% खेती की लागत कम हो गई। वहां के अमर उजाला अखबार ने इस न्यूज को छापा।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
0: यानी कि 27% तो आय बढ़ गई और 56% लागत कम हो गई,
1: वो भी आय बढ़ गई।
0: और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान की आय दुगनी करने का अभियान चलाया, तो यदि दोनों को जोड़ दें तो डबल की ओर बढ़ गए कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: तो इस खेती में प्राकृतिक में लागत शून्य के बराबर हो जाती और उत्पादन कम होता नहीं, उत्पादन बराबर चलेगा और लागत घट जाएगी तो किसान की आय वैसे ही बढ़ गई। अब अंतिम बात मैं करता हूं, अभी जो मेरे खेत में धान की बात मैं करता हूं, 33 क्विंटल एवरेज पैदा हुई है और जो रासायनिक खेती करते हैं उनकी 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ हुई है। अब रासायनिक वाले ने पानी से भी उसको भर के रखा, मैं पानी भी 50% दिया, उसके 10 से 12 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्चाया, मेरा 1000 रुपए प्रति एकड़ खर्चाया, उसका उत्पादन 28 से 30 क्विंटल हुआ, मेरा उत्पादन 33 क्विंटल हुआ। अब और ये चीज जाके मेरे खेत में देख लो, आप वहां की मिट्टी टेस्ट कर दो, हमारी फसलों को जाके देख लो। और मजे की बात ये मिश्रा जी, आज कैंसर से कोई नहीं मरना चाहता, आज उपभोक्ता को ये पता लगे कि इस उत्पादन में जहर नहीं है तो वो उसे डबल कीमत पे भी लेने को तैयार है।
1: बिल्कुल।
0: और इस समय गुजरात सरकार, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आत्मा एग्रीकल्चर, हमारे मनीष भारद्वाज जी जो सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी, सब लोग, पूरी प्रदेश सरकार पूरे मनोयोग से इस पद्धति को जनमानस तक किसानों में पहुंचाने का अभियान चलाया। अभी हमने डांग जिला है, इस 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारे कृषि सचिव महोदय, आत्मा के डायरेक्टर महोदय, सब ने उस जिले को प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया। भारत का पहला प्राकृतिक जिला वो होगा,
1: यानी हर किसान प्राकृतिक खेती का,
0: बिल्कुल, उसमें एक भी किसान नहीं बचेगा। वहां यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी पे प्रतिबंध है और उसके लिए प्रदेश सरकार ने सहयोग दिया उनको, 1 हेक्टेयर के लिए 1000 रुपया प्रति एकड़, वो 10000 रुपया प्रति एकड़, हाँ, इतना सहयोग देंगे ताकि उनका मनोबल आए
1: जी,
0: उनको दिक्कत ना आए, और ये काम शुरू कर दिया। और प्रदेश सरकार ने जो किसान, यहाँ 2 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती शुरू की, और वो जो देसी गाय किसान घर में रखता उसको 900 रुपया महीना प्रदेश सरकार गाय के रख रखाव के लिए दे रही है। तो ये काम यहाँ शुरू होने से किसानों में एक जागृति आई है। अभी हमने 6 दिन का एक शिविर आज ही संपन्न किया है, इस दिसंबर मास में 3-4 शिविर और लगाने हम जा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है और हम किसानों में ये विचार मजबूती से फैला रहे हैं, और हजारों लाखों जो किसान कर रहे हैं उनके जो अनुभव आने लगे बड़े संतोषजनक हैं और वो बड़े उत्साहित हैं। तो ये कृषि जो है हमारी, ये प्राकृतिक है, जैविक नहीं, रासायनिक नहीं है। इस समय हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि जी ये खेती साइंटिफिक नहीं है, इस पर वो नहीं हुए हैं शोध, तो हम उनसे आग्रह करते हैं आप शोध करिए, हम तो आपको आह्वान करते हैं। वो उदाहरण देते हैं, लंका ने इस काम को शुरू किया जैविक को, वहां बड़ा उत्पादन कम हो गया, दिक्कत आ गई, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, जैविक किया इसलिए उत्पादन कम हुआ, उन्होंने प्राकृतिक नहीं किया इसलिए फेल हुए। प्राकृतिक करें, हमारे टी विजय कुमार चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश रहे, आईएएस अधिकारी, वो हिमाचल आंध्र प्रदेश में पिछले 5-7 साल से इस खेती को करवाते हैं, 5 लाख से ज्यादा किसान उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जहां पानी भी नहीं है वहां 3-3 फसल किसानों की शुरू हो गई इस प्राकृतिक इसी पद्धति से। यदि ये सफल नहीं होती तो 1.5 लाख किसान हिमाचल में क्यों जुड़ता?
1: बिल्कुल।
0: यदि ये ना होती तो हमारे गुजरात में क्यों जुड़ता? सात आठ साल से जो आंध्र प्रदेश में करते हैं, वो क्यों जुड़ते? जैविक कृषि को 30 साल से हम करते आ रहे, उसे कोई नहीं जुड़ा, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, उसमें उत्पादन पूरा होता नहीं, खर्चे कम होते नहीं। तो जैविक कृषि भिन्न है, प्राकृतिक कृषि भिन्न है। हम प्राकृतिक कृषि के अभियान को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के कृषि मंत्री जी ने भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस कृषि को हम बढ़ाकर देश के किसान को खुशहाल बनाना चाहते हैं, और जमीन को फर्टिलिटी बचाना चाहते हैं, पर्यावरण बचे, पानी बचे, गाय बचे, और किसान की आय बढ़े, लोगों को स्वास्थ्य मिले। धन्यवाद।
1: बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत। और मुझे लगता है कि
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: मेरे मन में जो सवाल आ रहे थे, आप स्वतः उनका जवाब देते चले जा रहे थे। मैं मन में मेरे श्रीलंका शब्द आया और आपने लंका कह दिया, तो इतने सरल तरीके से और इतने बहुत लूसिडली आपने बताया, बहुत धन्यवाद इसका। क्या जो भारत जैसे देश में जहाँ पर छोटी जोत के किसान हैं
0: जी,
1: उनके लिए भी इसका अर्थशास्त्र ठीक बैठता है?
0: इसमें मिश्रा जी, छोटे किसान के लिए तो ये वरदान है
1: जी।
0: कारण क्या है, छोटा किसान वो ट्रैक्टर रखेगा तो बड़ा उसको खर्चा बढ़ेगा, यदि वो गाय रखता है 2-2.5 एकड़ का है तो बैल से करेगा तो मजबूत भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, और घर में गाय होगी तो बच्चे दूध पिएंगे, और एक देसी गाय से तो 18-20 एकड़ से भी ज्यादा खेती हो सकती है। उदाहरण के लिए गाय दूध भले ही रोज ना दे, गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देगी
1: जी,
0: और एक दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खा तैयार है, तो 30 दिन के गोबर गोमूत्र से तो 30 एकड़ का तैयार है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो इतना बड़ा उपकारी जीव है कि इसका उपयोग किया जाए तो छोटा किसान मल्टी क्रॉप करेगा, 1 एकड़ में जब 4-4, 5-5 तरह की फसल एक ही दम लेगा तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी।
1: बिल्कुल।
0: और ये जीवामृत घन जीवामृत जितना डालेगा, इसका नुकसान ही कुछ नहीं है, इसका तो लाभ ही लाभ, फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। और आश्चर्य ये कि मेरे जो अपने खेत हैं, इस साल उनमें केवल 1 बार जीवामृत देना पड़ा हमें।
1: अच्छा।
0: 1 बार वो इतने बढ़ गए कि वो काटने पड़े हमें, पहली पशुओं को खिलाने पड़े, इतनी बढ़ गई वो, उनको खतरा था ये गिर जाएंगे और फल कम आएगा तो काटना पड़ा, इसलिए क्योंकि उस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.9 और 1 से ऊपर चला गया,
1: ऊपर चला गया जी।
0: बीमारी भी नहीं आनी आती, क्योंकि वो बीमारी वहां आएगी जहां कमजोरी होगी। अब ये जो कोरोना आया है, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, जिस आदमी की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रोंग होगी वो लड़ाई लड़ेगा, जो इम्यूनिटी कमजोर हो मर जाएगा। जब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग है, तो उसको बीमारी आएगी नहीं। जी धरती में यूरिया DAP से उसकी जान निकाल दी, बीमारी तो उसमें आएगी। जो एंटीबायोटिक रोज खाएगा वो कैसे बीमारी से लड़ेगा? तो वही स्थिति भूमि के साथ।
1: बिल्कुल। और ये कैंसर जो वगैरह, ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक इत्तेफाक नहीं है कि अचानक
0: ना,
1: इतने सारे हम में से हर इंसान अपने आसपास किसी ना किसी को जानता है जो इसे जूझ रहा हो या जूझ चुका हो, और ये पिछले 8-10 सालों 10-15 साल की ही
0: इसी की देन है।
1: तो बहुत जो आप बात कर रहे हैं वो एकदम जुड़ के सेंस उसका।
0: मिश्रा जी, पंजाब के किसान ने सबसे ज्यादा यूरिया DAP और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया। वहां भटिंडा एक जिला है
1: जी,
0: वहां से कैंसर ट्रेन प्रतिदिन बीकानेर के लिए चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन
1: एक्सप्रेस। जी जी जी।
0: यानी के पूरी भर के चलती, इतना कैंसर पहले कभी नहीं था। तो ये जो खान पान हमारा और स्लो पॉइजन पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी जहर शरीर में जा रहा है, उसके दुष्परिणाम।
1: और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, एक ये तो किसान को फायदे हैं
0: जी,
1: और उपभोक्ता को
0: हाँ बहुत बड़ा। और इसी के लिए हमारे जो कृषि सचिव महोदय हैं, कृषि विभाग है, वो बराबर इस मिशन पे लगा है। अब हमने लगभग 100 FPO बनाए और 1 FPO में 300 किसान जोड़ दिए। अब जो छोटा किसान है 2-2.5-4 एकड़ का, वो अपना उत्पाद बेचने जाता, बड़ा उसको दिक्कत आती है। अब 300 किसान एक तरह की फसल इकट्ठी बेचेंगे तो उसका भाव उचित मिलेगा, उसकी जो पैसा मूल्य मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा। तो इस दिशा में भी लगातार प्रयास हैं, अनेक जगह संपर्क बनाते जा रहे हैं।

उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण GI टैग यानी भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। GI टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ GI टैग का सफर करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं, जिन्हें GI टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहा चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जरदालू, मगही पान और शाही लीची को GI टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को GI टैग मिला हुआ है। GI टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है, जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।

0: तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी, जीआई टैगिंग यानी कि भौगोलिक पहचान के बारे में थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो फिर आइए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर बजाज से यहाँ पर। जीआई टैगिंग की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, तो ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानकारी दें।
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा आदिति आपने कि सबसे पहले जीआई यानी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। और शुरू में आपने कहा ही था कि असम की चाय और बनारस की साड़ियां, ये सब चीजें इतनी मशहूर होती हैं, जब भी कोई जाता है तो वो सोचता है कि इसको मैं जरूर खरीदूंगा, या अगर खाने पीने की चीज है तो इसका जरूर खाकर या उसका टेस्ट करके पता करूंगा कि ऐसा खास क्या है उसमें, और वाकई खास होता है। तो जीआई एक प्रोडक्ट, ये जो एक टैगिंग है, ये उरुग्वे राउंड के बाद जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था तब आर्टिकल 22 और 24 के तहत, तब ये कहा गया कि भाई हर भौगोलिक क्षेत्र की एक विशेष पहचान है, उस उत्पाद से जुड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसकी खास विशेषता जुड़ी हुई है, तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हमें उस पहचान को जो है वो बनाए रखना है कि हाँ ये जो उत्पाद है ये इस क्षेत्र का है और विशेष है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये एक WTO के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हुआ। अब उदाहरण जैसे आपने दिए, हमारे यहां अभी 415 के करीब GI टैग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारा मलियाबादी आम है, केसर आम है, बैंगन पल्ली आम है, अल्फेंसो आम है, चाय है, और इस तरह आशाही लीची है बिहार की, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 415 के लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 140 जो हैं वो कृषि उत्पाद हैं।
0: जी, तो 140 कृषि उत्पाद हम कह सकते हैं कि इनकी जीआई टैगिंग हो चुकी है। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जीआई टैगिंग करता कौन है, इसके बारे में भी तो हमारे किसानों को पता होना चाहिए।
2: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री
0: जी,
2: ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की ब्रांच है
0: जी,
2: और वहां पर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अंडर द एक्ट, अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स या बॉडी जो रिकग्नाइज्ड बाय लॉ है वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि हम एप्लीकेशन लेके चले गए और रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर कर देगा, उसके लिए अंडर द एक्ट काफी रिगरस रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी बॉडी जीआई रजिस्ट्री के सामने जाएगी वो एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन ट्रेडिंग न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए, यानी कि एक एसोसिएशन है जिसके कुछ मेंबर्स रिकग्नाइज करते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सर्टिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, एट्रिब्यूटेबल टू दैट रीजन है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो लुक अलाइक होते हैं लेकिन वो उस रीजन से आते नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बॉडी जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जरूरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अब जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे हम कोई ट्रेडमार्क या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं वो प्राइवेट ट्रेडर्स की होती हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो कम्युनिटी को दिए जाते हैं, और ये जो बॉडीज जो होती हैं ये कस्टोडियंस होती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, और अंडर द एक्ट एक टेक्निकल कमिटी है, उसका प्रोविजन है जो उसको एनालाइज करती है, जो उसको देखती है कि ये जो जीआई प्रोडक्ट है वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है या नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्रीड पर्सन वहां पर अपोज कर सकता है, और उसके बाद फिर अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होती है तो वो रजिस्टर हो जाता है, वो जीआई रजिस्टर हो जाता है, अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन जो है वो चलती है। तो इस तरह से ये जीआई प्रोसेस कंप्लीट होता है
0: जी, तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है, इन बातों को जरूर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। तो अब मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, धान हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है, और उसकी बासमती की हम बात करें तो पहचान है हमारे देश से, बहुत ही अच्छे स्तर पर निर्यात भी होता है, तो ऐसे में बासमती के लिहाज से जीआई टैगिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हमारे किसान और इसकी ओर बढ़ना चाहे तो?
3: देखिए अदिति, धान जैसा आपने भी कहा और पूरे विश्व में ये जानकारी है कि धान भारत के लिए विशेष तौर पर बासमती धान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व तो और बढ़ जाता है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है
0: जी।
3: इसके लिए हमारे किसान जो हैं वो विशेष तौर पर इसके इसके लिए जिम्मेदार है
0: जी।
3: लेकिन चूंकि धान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी उपज से लेकर और उसके निर्यात तक
0: जी
3: उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होते हैं। अब धान के लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयास किए, अपीडा को इसका अधिकार दिया कि वो बासमती को जीआई टैगिंग करें और इसी परिणाम स्वरूप 2016 में हमें बासमती धान बासमती चावल का जीआई टैग जो जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया चेन्नई जो रजिस्ट्रार है रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका अधिकार अपीडा को मिला
0: जी।
3: उसके बाद से अब तक पूरे जोर शोर से अपीडा इस प्रयास में कार्यरत है इस प्रयासरत है कि हम कैसे ये जीआई टैगिंग को हम भारत से निकलकर बाहर जहां जहां हमारा हम करीब करीब 170 देशों में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं
0: बिल्कुल
3: और उन सभी देशों में जाएं और अपने इस जीआई टैग को वहां भी रजिस्टर करें
0: जी।
3: जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा उस बात का फायदा मिले उसका लाभ मिले क्योंकि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा
0: बिल्कुल। तो जीआई टैगिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने एक्सपोर्ट में देखा है निर्यात में किस तरह का बदलाव आया है जब से जीआई टैगिंग हुई है।
3: देखिए जीआई टैगिंग से एक बहुत बड़ा लाभ जो उस उत्पादक उत्पाद का जो मालिक है उसको मिलता है
0: जी।
3: जीआई टैग का जैसे कि अभी बजाज साहब ने भी बताया जीआई टैग अपने आप में एक विशेष उत्पाद है तभी उसको जीआई टैग मिलेगा और जब उत्पाद विशेष है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य भी विशेष मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कारण है कि बासमती के उत्पाद से हम बहुत लाभ पूरा देश और हमारे देश के पूरे किसान इस बात का लाभ उठाते हैं और पूरे पूरे संसार में हम लोगों को बासमती खिलाते हैं इसके लिए श्रेय हमारे हमारे किसानों को जाता है।
0: बिल्कुल इसका पूरा पूरा श्रेय जो है हमारे किसानों को जाता है और हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी रहा है और हमारे किसानों का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है सहयोग है। बढ़ना चाहेंगे आगे डॉक्टर बजाज आपके पास हम यहां पर आना चाहेंगे। आपने बताया कि 140 के करीब कृषि उत्पाद हैं जिनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है लेकिन अगर हमारे किसान या फिर कहें कि और संगठन वगैरह अलग अलग उपज की जीआई टैगिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहां आवेदन करना होगा क्या प्रक्रिया रहती है उसकी।
1: बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जैसे अभी कहा कि केवल 140 ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी जीआई रजिस्टर हुए हैं और हमारे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जो उत्पाद हैं जो कि विशेषता रखते हैं इसलिए तो हम कहते हैं भारत की अतुल्य भारत की अमूल्य निधि ये कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठा लिए हुए हैं तो उनको रजिस्टर कराने के लिए जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बासमती चावल है वो हर उस किसान का हकदार है जो बासमती उगाता है तो इसीलिए जो उत्पाद है उसको एक कोई एजेंसी जो है चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या गैर सरकारी संस्था हो जो कि सच में हकदार है उसका कस्टोडियन बनने की उसको लेकर वो रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और उसका फिर पूरा एक प्रोसेस है रजिस्टर कराने के लिए जैसा भी राजेंद्र जी ने बताया था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और उसके बाद कस्टोडियन बनना भी आसान नहीं है। मैं अगर एक उसका जीआई का कस्टोडियन बन गया तो उसकी पहरेदारी भी करनी है मेरे को जैसे हम बासमती की पहरेदारी भी कर रहे हैं हम देख रहे हैं दुनिया में कोई जो है वो बासमती ना कहलाए हम कहते हैं जैसे ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन होता है ना कि मेरे ट्रेडमार्क को कोई दूसरा ना इस्तेमाल कर ले इसी तरह जब एक जीआई रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक पहरेदारी भी करनी पड़ती है प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है भाई दूसरे को तुम नाजायज हम उसका बगैर हमारी मर्जी के हम उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिसका वो उत्पाद है उसको हम प्रीमियम मिलता है, दूसरे उत्पाद में उसको पता होता है कि ये जो भी खरीद रहा है उसको मालूम है कि ये एक विशेष चीज है जो मैं खरीद रहा हूं और इससे मुझे जो है एक एक अच्छा जो है वो और कहीं नहीं मिलता दुनिया के कोने में, एक यहीं पर ही ये चीज मिलती है और उसका एक प्रीमियम भी उनको दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है वो रजिस्टर एक संस्था कर सकती है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो, और फिर उसका कस्टोडियन भी बनना पड़ता है।
0: बिल्कुल, तो आपने कहा कि एक संस्था यहां पर जीआई टैगिंग के लिए आवेदन आगे बढ़ा सकती है, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या फायदा लाता है ये जीआई टैगिंग, किस तरह से फायदेमंद साबित होता है? राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, हमारे किसानों के लिए जीआई टैगिंग कितना फायदेमंद है?
2: मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल।
2: दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी का प्रोटेक्शन 1986 से फॉर्मल ढंग से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट है ये 2003 में आया, 15 सितंबर 2003 में। उससे पहले भी इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन रही और दार्जिलिंग टी जो है एक सर्टिफिकेशन मार्क है। तो 2018 में वर्ल्ड बैंक और एफएओ ने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी जिसमें 6 ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस वर्ल्ड वाइड से सेलेक्ट किए गए थे, उसमें दार्जिलिंग टी भी थी। और उस स्टडी का फोकस था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है। तो उसमें दार्जिलिंग टी के बारे में ये बताया गया कि जब से दार्जिलिंग टी की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई है तो उसका बेनिफिट जो वहाँ पे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि दार्जिलिंग टी सिर्फ 87 टी गार्डन्स में ही प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे दार्जिलिंग टी होती है और वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स वो विमेन है। तो उनका एम्पावरमेंट जब जीआई प्रोटेक्शन से होता है तो उनके लिए स्कूल्स, हर टी गार्डन ओनर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो गार्डन में देता है। तो उस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि दार्जिलिंग टी की वैल्यू टुडे इन कंपैरिजन टू जो ऑर्डिनरी टी है वो इतनी ज़्यादा है जीआई प्रोटेक्शन की वजह से। और दार्जिलिंग टी वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड है, उसको जो है यूरोपियन कमीशन ने भी जीआई टैग दिया था और वो जीआई टैग मिलने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ दार्जिलिंग टी बढ़ गए हैं। और जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसका जो बेनिफिट जो है ग्रास रूट्स पर जो वर्कर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं उन पे होता है। ऐसा ही बासमती राइस पे भी होगा। इनफैक्ट बासमती राइस का प्रोटेक्शन भी जो है उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। और अब जो है बासमती राइस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है, जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया, और उसका प्रोटेक्शन भी उसी लेवल पे चल रहा है जो दार्जिलिंग टी का है।
0: जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर फायदे तो

0: अनेक हैं अगर हम जीआई टैगिंग करते हैं। रुक करना चाहेंगे अब डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि अब यहां पर कवायदें चल रही हैं, कोशिशें चल रहे हैं कि अलग अलग देशों में भी जीआई टैगिंग हो सके हमारे बासमती चावल की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जीआई टैगिंग किस तरह से काम करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: देखिए अदिति, जैसा कि हमारे घरेलू सिस्टम में एक जीआई रजिस्ट्रार है, उसको हर किसी कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का एक तरीका है
0: जी।
1: इसी तरीके से अगर हम विदेशों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां भी लगभग वैसे ही तरीके सामने आते हैं हमारे। और अगर हम वहां अपने जीआई टैग प्रोडक्ट को अगर वहां नहीं कराते हैं रजिस्टर, तो हो सकता है वहां कोई हमारे हमारे चीज के नाम को का दुरुपयोग करके वहां वो बेचता रहे। इसलिए यदि हमें अपने जीआई प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको संभाल कर रखना है, तो ये जरूरी है कि हम अपने उस उत्पाद को जहां भी हमारा मार्केट है, हमारा जो मुख्य मार्केट है, उस मार्केट के उन देशों में जाएं और अपने उस उत्पाद को वहां भी रजिस्टर करें। इसी कड़ी में अपीडा ने एक बड़ी पहल की बासमती के लिए, क्योंकि बासमती हमारे लिए बहुत बड़ा उत्पाद है
0: जी।
1: अगर मैं दो दशक की बात करूं, 2002-03 के लगभग बासमती का जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 7 मिलियन के करीब था। आज वो बढ़कर करीब 45-46 मिलियन टन हो गया। तो इस बड़े उत्पाद को, जिसका कि पूरा का पूरा लाभ और श्रेय हमारे किसानों को जाता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम विदेशों में जो हमारे ग्राहक जो देश है, उन सभी देशों में प्रयासरत हैं कि हम बासमती को जैसा हमने भारत में रजिस्टर कराया एक जीआई प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम विदेशों में भी जाएं और अपने इस बासमती को एक जीआई टैग के तहत वहां भी रजिस्टर कराएं। और इस कड़ी में हम करीब करीब 20 के करीब देशों में हम हमारी एप्लीकेशन जो है, हमारे प्रार्थना पत्र वहां चले हुए हैं। और इस कड़ी में करीब करीब 8 देशों में हम ऑलरेडी या तो जीआई ले चुके हैं या बासमती का हमारा एक लोगो है, या तो हमने लोगो को रजिस्टर कराया है। तो ये रजिस्टर कराने से क्या होगा कि हमारा उस देश में भी हमारा बासमती प्रोटेक्ट रहेगा, कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता, उस नाम को मिसयूज नहीं कर सकता। और हमारे जो किसान हैं, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ जो बासमती है, वो धड़ल्ले से वहां बिकेगा और उसका पूरा लाभ उनको मिलेगा।
0: हमारे किसानों ने जो कड़ी मेहनत से बासमती यहाँ पर तैयार किया है, उसकी पहचान बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई भी उसका दुरुपयोग, उसके नाम का दुरुपयोग यहाँ पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बजाज, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जब किसी भी कृषि उत्पाद को यहाँ पर जीआई टैगिंग मिलती है, तो ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के किसान हैं या फिर उसी क्षेत्र के हम किसानों की बात करें, तो उन्हें किस तरह से फायदा मिलता है इसका?
2: सभी को फायदा मिलता है
0: जी।
2: जब जीआई टैगिंग हो जाता है तो जैसे ये कहा कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है
0: जी।
2: अब बासमती जीआई टैग हुआ तो जहां जहां बासमती उगाया जाता है वो उसका।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। हम चर्चा कर रहे हैं जीआई टैगिंग के बारे में। जीआई टैगिंग क्या होता है, कैसे हमें अपनी एक पहचान मिल सकती है और इसके क्या फायदे होते हैं, आइए इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं इन एक्सपर्ट की मदद से।
1: आते हैं तो कुछ समस्याएं तो जरूर आती होंगी, जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र कुमार जी से कि जब हम जीआई टैगिंग पर जाते हैं तो कुछ समस्या तो आती होंगी। हमारी एजेंसियों को या संगठनों की बात करें तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जब जीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के सामने जाती है तो एक समस्या होती है कि जब एग्जामिनेशन होता है उसका, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब उसको एनालाइज करते हैं तो उनका मेन फोकस होता है कि जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं ये साइंटिफिकली एक्यूरेट हैं या नहीं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक है या नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ऐसा होता है जैसे कोई इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे जो है पास ऑफ किए गए, वो ऑथेंटिक सोर्स बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जरूरी होता है कि इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स कि जो बॉडी रजिस्ट्रेशन के लिए जारी है उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने का। क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को उस रीजन के साथ, और जब तक वो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म उसका उसके पीछे नहीं होगा तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कश्मीरी कारपेट्स
1: जी।
2: अब कश्मीरी कारपेट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए जो बॉडी जिसने रजिस्टर कराया है कश्मीरी कारपेट एज ए जीआई, उन्होंने क्यूआर कोडिंग की है। जब आप कारपेट लेने जाते हैं तो उसमें क्यूआर कोडिंग है और कोई भी स्मार्टफोन से किसी भी डिवाइस से उस क्यूआर कोड से ये मालूम कर सकता है कि ये

0: कहाँ किस रीजन से है, किस वीवर ने इसको वीव किया है। तो इसलिए जब कभी भी मार्केट में कश्मीरी कारपेट बिकता है तो उसके ऊपर जो QR कोड लगाता है उससे कंज्यूमर कस्टमर जो है वो मालूम कर सकता है कि ये जेन्युइन कश्मीरी कारपेट है। तो ये जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रार ऑफ GIs एग्जामिन करता है। और उसके बाद एक और मुद्दा आता है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द बॉडी की जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, कि कभी कभी जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उस पूरे प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। बहुत एग्जांपल्स आते हैं, हैदराबाद बिरयानी का एग्जांपल बड़ा फेमस है, जिसमें वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो जो बॉडी थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी और उन्होंने जो है वो अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाए तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का होना, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म का होना, ट्रेसिबिलिटी का होना, और फिर जो है जो ओवरऑल सुपरविजन है उसके बाद फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। और जैसे मैंने पहले समझाया उसके बाद कोई भी अपोज भी कर सकता है एप्लीकेशन, और ये अपोजिशन कहीं से भी आ सकती है, हिंदुस्तान से ही नहीं, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
1: और तो जैसे आपने कहा कि उसके विरोध में भी यहाँ पर सवाल उठाए जा सकते हैं, अपोजिशन हो सकता है, तो ऐसे में फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, उसका जस्टिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है?
0: उसका जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के सामने, जो कि क्वेजाई जुडिशियल बॉडी है, जैसे कोर्ट्स होते हैं तो उसमें वो एविडेंस एग्जामिन होता है, जिसे दूसरी बॉडी ये कहती है जो अपोज करती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज ये नहीं है
1: जी,
0: ये होनी चाहिए, या इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप की ऑपोजिशंस आती हैं और उसको भी जो है थ्रू प्रॉपर जुडिशियल माइंड एग्जामिन किया जाता है कि ये सच है या नहीं। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट डॉक्टर बजाज ने बताया, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 24.9, वो ये कहता है कि अगर कोई GI डोमेस्टिकली प्रोटेक्टेड नहीं है तो किसी कंट्री के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर उसकी जो स्क्रूटनी होती है, उसका एग्जामिनेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे बासमती का एग्जांपल दिया, दार्जिलिंग टी का एग्जांपल दिया, ये डोमेस्टिकली रजिस्टर्ड है
1: जी।
0: और इसीलिए जो है बाहर की कंट्रीज, बाहर के कोर्ट्स उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हमने हिंदुस्तान में उसको प्रोटेक्ट किया।
1: बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ यहाँ पर समझाया है राजेंद्र जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि अब भी अगर आप GI टैगिंग के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन से हम कह सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है जिससे आप GI टैगिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम डॉक्टर शर्मा के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, जब हम किसी कृषि उत्पाद की GI टैगिंग की बात करते हैं तो उससे हमारे किसानों को ही फायदा नहीं होता बल्कि फसलों को भी उससे काफी फायदा होता है। फसल संरक्षण की हम बात करें तो उससे भी काफी मजबूती मिलती है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि फसल संरक्षण किस तरह से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम GI टैगिंग कर लेते हैं तो।
2: देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कोई भी उत्पाद का GI टैग ले लेते हैं, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि उस GI टैग को हम कैसे संभाल कर रखें
1: जी,
2: और कैसे उस उत्पाद के साथ आगे बढ़े। क्योंकि यदि हम उस टैग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टैग लेने का कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने बासमती का GI टैग लिया, हम पूरे विश्व में बासमती चावल जो है लोगों को खिलाते हैं और लोग पसंद करते हैं। उसमें विशेष अरोमा है, उसकी एक अपनी लेंथ है, उसकी एक ब्रेड्थ है, उसमें जो बायोकेमिकल जो बासमती के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुदरती रूप में जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में बासमती होता है उनमें वो होगा ही होगा। तो हमें ये भी पक्का सुनिश्चित करना है कि वो सारी जो क्वालिटी, वो जो मानक जिनको हम कहते हैं या स्टैंडर्ड हम कहें, वो स्टैंडर्ड बासमती उत्पाद जो हमारा निकले, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ बासमती, वो सारे के सारे मानक उसमें पूरे हों। यदि वो मानक पूरे नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए कल को हमने कोई बासमती के नाम पर हमने चावल भेज दिया UK में और वहाँ लोगों ने देखा, या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बड़े समझदार हैं, कंज्यूमर को अगर कल को पता लगेगा नहीं ये तो बासमती जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब वो कोई भी उत्पाद, वो बासमती हो या कोई अन्य जीआई टैग उत्पाद हो, जब वो उसका उत्पादन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करें
1: जी।
2: और यदि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, उसके एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है
1: जी।
2: और किसानों के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, माला माल है।
1: बिल्कुल, तो मानक के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में ही उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उस हम कह सकते हैं उत्पाद का खरीदेंगे या फिर सेवन भी करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे, जीआई टैगिंग हो गई है लेकिन उन मानकों के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इस अवस्था में क्या होगा?
3: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा दी थी, क्योंकि जीआई टैग लेना ही खाली काफी नहीं है। अब उसके बाद जैसे बासमती, तो चलो उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का भी उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत वॉल्यूम में उसकी उपलब्धता है
1: जी।
3: ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी हमारे पास है तो सही, जीआई टैग भी ले लिया हमने, लेकिन उतना जो है उसकी वॉल्यूम में उपलब्धता नहीं है और उपलब्धता अब उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक, जो भी उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब एकजुट हों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इसका जो है एक भौगोलिक पहचान हो गई है उत्पाद की, तो उसके साथ जुड़े किसान या किसान जो उनके साथ हैं जो प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि खाली फसलों का ही या उन्हीं का ही जीआई टैग नहीं होता, जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनका भी जीआई टैग होता है। तो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक क्लस्टर अप्रोच में चलें जिससे कि वो मिलकर एक वॉल्यूम दे सके, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा थोड़े थोड़ी चीज से उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई ऐसे उत्पाद हैं जो महीने में, साल में एक महीना होते हैं और उसको बेच दिया और 12 महीने उसको खत्म हो गया, उसको कोई लाभ नहीं है। तो सबको मिलकर क्लस्टर अप्रोच लेके चलना है और एक एफपीओ बनाकर या एफपीसीज बनाकर उसको कोशिश करनी है कि हम लोग वॉल्यूम दें, जिससे कि वॉल्यूम होने से क्या फायदा होगा, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा हम वॉल्यूम होने से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने घरेलू बाजार में भी हम बेच पाएंगे। उससे जब कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा हमारा बिक्री होगी, तो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जाएगा। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, कॉस्टिंग को ध्यान रखें और अपनी जो एक विशेष पहचान है उसको बनाए रखें। उसके अलावा जो हमारी जो जीआई टैग को अगर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश करें। ये एक तरह का ट्रेडमार्क है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज है जिसको मैं या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
1: बिल्कुल, तो इस बात का भी जरूर यहां पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी यहां पर हो जाती है जब हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोक्ताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये सच में कश्मीर का शॉल है, क्या ये सच में लखनऊ का आम है? ऐसे में क्या कह सकते हैं आप हमारे उपभोक्ताओं को कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी यहां पर प्रूव हो?
0: जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कश्मीरी कारपेट्स में क्यूआर कोडिंग एक वन ऑफ दी मींस चूज किया गया है, जिससे कंज्यूमर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं।
1: जी,
0: ये प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस है या अल्फोंसो मैंगोज है, उसमें ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे एरोमेटिक राइसेस हैं, एरोमेटिक राइसेस एक जैसे ही लगते हैं, और ये समस्या जो है हमारे सामने आई थी 1998 में, एक यूएस की कंपनी राइसटेक, उसने पेटेंट लिया और उस पेटेंट में ये कहा गया कि बासमती राइस जो है कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है, इसको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक राइस अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे बासमती राइस की होती है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन, और उन्होंने कहा कि ये राइस जो है हम यूएस में ही ग्रो करेंगे। तो उस पेटेंट्स से हिंदुस्तान काफी रैटल्ड हो गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें पीडा और सीएसआईआर का बहुत रोल था। उन्होंने वो एप्लीकेशन फाइल की रेवोकेशन की यूएसपीटीओ के सामने और ये प्रूव किया कि ये जो प्रोडक्ट है बासमती राइस ये यहीं प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो नेचर ने दी है और उसको जो है कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इस एफर्ट की वजह से वो पेटेंट जो है रिवोक हो गया, वहां की अथॉरिटी ने वहां के कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटेक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करें कि हम एनफोर्स भी कर सकें। टर्मरिक पाउडर का एग्जांपल आता है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, यूएस कंपनी ने उसको पेटेंट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है रिवोक किया, तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ी हमें। हमें ये प्रूव करना पड़ा कि जो टर्मरिक पाउडर है हमारा ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और उसको कोई भी जो है उस पर पेटेंट नहीं ले सकता।
1: तो बिल्कुल, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर जीआई टैगिंग जो करवाते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मानकों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। अब हम निर्यात की यहाँ पर फिर से एक बार बात कर रहे थे, डॉक्टर बजाज आपके पास आना चाहेंगे, हम एपिडा की बात करते हैं। तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष संस्थान माना जाता है, जीआई टैगिंग होने के बाद निर्यात में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे हमारे किसान ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओर बढ़ सके, इसके लिए हम जानना चाहेंगे।
3: अब एपिडा पूरा निरंतर प्रयासरत है कि जो भी जो जीआई टैग है, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके और निर्यात बढ़ भी रहा है। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम लगभग 3,00,000 करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है और लगभग हर साल ये निर्यात जो है वृद्धि की ओर ही जा रहा है। पिछले साल तो हमने करीब 29% की वृद्धि दी इसमें।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, बताएं क्या कह रहे थे आप।
3: तो भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भौगोलिक पहचान के हमारे उत्पाद हैं, जैसा मैंने कहा तुल्य भारत की अमूल्य निधि है ये हमारी, तो इसका लाभ जो है वो जो उसके हकदार हैं उन तक मिलना चाहिए और जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि वो भी इसका उपयोग कर सकें। तो एक विशेष अभियान चलाया हम लोगों ने, हम बायर सेलर मीट कर रहे हैं, क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहां से जो है उत्पादों को ले जाकर उनका विशेष जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, जिससे कि लोगों को बताएं कि ये जो विशेष जो उत्पाद है ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक विशेष क्षेत्र का ही उत्पाद है, हर जगह से नहीं मिल सकता है। तो एक अच्छी एक जो है वो खरीदार को भी अच्छा लगता है उसको खरीदने में और उसका लाभ भी उसको मिलता है। विशेष अभियान चल रहा है, बहुत प्रमोशन हो रहा है और बैकवर्ड लिंकेज जैसे मैंने कहा उस तरफ हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम मिले, उत्पादन हो, और बहुत जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो बनी रहे, इस तरफ भी ध्यान रखते हैं। और बहुत जरूरी है कि अगर जीआई ले लिया तो उसका प्रोटेक्शन भी रखना है, ये ना हो कि मैं तो जीआई लेके बैठ गया और दूसरा कोई जो है उसी उत्पाद को जो है उसी नाम से बेच रहा है, ये भी नहीं होने देना, इसको भी हम लोग प्रयास रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, बिल्कुल इस ओर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है विश्व स्तर पर। तो ऐसे में हम सभी को इस ओर भी खास ध्यान रखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर मैं डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो जीआई टैगिंग बहुत सारे उत्पादों की हुई है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसे उत्पाद देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
2: देखिए, ये निश्चित रूप से आदित्य आपकी बात सही है और हमारे उत्तर भारत के जो किसान हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो भी जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, वहाँ छोटे छोटे कई ऐसी उत्पाद हैं जिनको आगे लाके उनको जीआई टैगिंग करा के उनके उत्पादन को बढ़ा।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: बाजार दिया जा सकता है, और उसके लिए ये जरूरी है कि वहाँ जो छोटे समूह हैं, हमारे जो किसान समूह जिनको आजकल पूरे भारत सरकार और पूरी राज्य सरकार भी जिनको पूरा महत्व देते हैं, और उनके माध्यम से किसानों तक पहुँचने का एक प्रयास है, तो ये किसान समूह एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकते हैं, जो हमारे किसानों को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाके, और जो हमारी इस तरह की जो छोटी छोटी प्रोडक्ट है उनको, जैसे कि बजाज साहब ने कहा कि इसमें जल्दी से अपना ये प्रयास करें किसान लोग, अगर कोई उत्पाद उनके आसपास के एरिया में, उनके जिले में, उनके तहसील में, या कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ 10-12 गांव ही हो जहां पे वो विशेष रूप से वो कोई उत्पाद होता है, वो उत्पाद फल का हो सकता है, वो उत्पाद किसी सब्जी का हो सकता है, वो उत्पाद किसी अन्न का हो सकता है। जैसे अगर आप आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं, एक भालिया गेहूं है, अब वो भावनगर जिले के थोड़े से कुछ एरिया में भालिया गेहूं के नाम से उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अलग है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ बाद में अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, उसका निर्यात करना है, तो वाकई में हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता को ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन GI करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास हमारे किसान भाई खास तौर पर और जो हमारे किसान समूह है वो ये सुनिश्चित करें अपने आसपास के एरिया में यदि कोई विशेष उत्पाद है तो उसको GI के लिए आगे लेकर आए, ताकि कालांतर में आने वाले समय में वो उसका पूरा लाभ उठा सके।
1: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भावनगर का एक भालिया गेहूं है, अगर हमारे किसान उस छोटे से क्षेत्र में ही, उस दायरे में ही ना रहकर विश्व स्तर पर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो GI टैगिंग की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, इससे ना केवल आपके क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी, पूरे विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी, और साथ ही साथ फायदा पूरे देश को होगा, आपको भी होगा। तो GI,
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलवा सकती है। इसके लिए अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहां पर उपस्थित हैं, आइए उनसे और जान लेते हैं। ऐसे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी यहां पर डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि GI टैगिंग जो है प्रसंस्कृत उत्पादों की भी की जा सकती है। अभी तक किसान अलग अलग उपज की यहां पर GI टैगिंग कर रहे थे, लेकिन अगर प्रसंस्कृत उपज यहां पर लेकर आते हैं, उत्पाद लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कोई अलग है या फिर वही प्रक्रिया रहेगी?
1: वही प्रक्रिया
0: जी।
1: जैसे मिठाइयां हैं, कई हमारी विशेष मिठाइयां हैं, उनका GI टैग है। बहुत सी ऐसी मिठाइयां जिनका तो GI टैग हुआ ही नहीं है, और बहुत सी जरूरत है, क्योंकि ऐसी विशेष जगह चीजें हैं जिनका हम लोग अब जानते हैं। हम रोजमर्रा में बात करते हैं कि उस जगह की ये चीज बड़ी मशहूर है, वहां जाके हम लोग जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मिठाइयां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, अलग से प्रतिष्ठा है, उनको जो है वो GI टैग की आवश्यकता है। और जब GI टैग हो जाता है तो सबसे पहली तो एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अब ये उत्पाद मेरे ही क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसको जो है वो जो भी आएगा हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इसी क्षेत्र विशेष से मिलता है। तो जो भी उपभोक्ता आ रहा है वो उस चीज को खरीदने में उसे भी सेटिस्फेक्शन होगी और हमें बेचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है वो हम लोग उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ये उत्पाद इस जगह का है, विशेष GI उत्पाद है।
0: जब एक अलग पहचान मिल जाएगी तो उसके दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो इससे फायदा ही फायदा हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान भी है?
2: बिल्कुल, हमारी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों हैं
0: जी।
2: उसमें जो GI ओनर होता है, जो कस्टोडियन होता है, उसको राइट दिया गया है कि वो कोर्ट में जाके एक इन्फ्रिंजमेंट एक्शन फाइल करे, और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इन्फ्रिंजमेंट के भी काफी फॉर्म्स होती हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि GI प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट में पास ऑफ कर रहा है एज ए GI प्रोडक्ट। तो वो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल है
0: जी।
2: बनारसी साड़ी जैसे मेड इन चाइना हिंदुस्तान में बिक रही हैं, लेकिन बनारसी वो जो है बनारसी साड़ी के GI का इन्फ्रिंजमेंट होगा, और उसमें जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्रिमिनल रेमेडी भी जो है अंडर द एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मानी गई है। उसमें जो है पुलिस जो है विदाउट एनी एनेबलिंग पावर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट भी कर सकती है, इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो हमारा GI एक्ट काफी स्ट्रांग है और काफी मॉडर्न है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं अगर GI ओनर उनको एनफोर्स करे तो हमारे कोर्ट्स जो हैं काफी फोर्थ राइट है। इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा, स्कॉच विस्की एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1980 से इंफ्रिंजमेंट एक्शंस फाइल कर रही है, और उन्होंने जो है एक तरह से बॉडी ऑफ केस लॉ बनाई है। अगर हम GI लॉ के बारे में हिंदुस्तान में देखते हैं तो SWA स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने जो कंट्रीब्यूट किया है केस लॉ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आज तक बहुत यूजफुल रहा है
0: जी। बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर देखिए कानूनी प्रावधान भी हैं, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा धोखाधड़ी भी हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सहयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बिल्कुल, GI टैगिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे संगठनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, एक क्षेत्र की एक नई पहचान बनाने के लिए। तो अंतिम सवाल मैं तीनों से ही एक बार लेना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, किसानों की आय को दोगुना करने में ये GI टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगी?
3: देखिए अदिति, ये बहुत ही अच्छे बात आपने उठाई, क्योंकि भारत सरकार विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना है
0: जी।
3: उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी उत्पाद वो करें वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो
0: जी,
3: और अगर वो जीआई टैग है तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी होगी
0: जी।
3: लेकिन किसी भी जीआई उत्पाद का जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके मन में, उनके दिमाग में उस जीआई उत्पाद के बारे में सही बात बैठना बहुत जरूरी है
0: जी।
3: और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है
0: जी,
3: वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। किसी भी उत्पाद का अगर हम हमारे कंज्यूमर तक
0: जी,
3: उसको ट्रेसेबिलिटी से बता पाए कि देखिए ये उत्पाद है, ये यहां से चला, यहां पैदा हुआ और उसके बाद यहां गया और उसका यहां प्रोसेसिंग हुई, यहां पैकिंग हुई और यहां जाके वो कंज्यूमर के तक पहुंचा, अगर हम ये निश्चिंतता अगर हम अपने कंज्यूमर को दे पाए तो निश्चित रूप से
0: वो खरीदेगा ही और लाभ हमारे
3: और
0: लाभ सीधा हमारे किसानों को मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, किसानों की आय को दोगुना करने में जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगा।
2: मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन है अगर हम इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना की जाए, क्योंकि जीआई प्रोडक्ट्स जो हैं हिंदुस्तान की इमेज है वर्ल्ड में, अगर हम क्वांटिटी के पीछे भागेंगे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बदनाम हमारे देश का ही होता है। इसलिए दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो है जीआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई नहीं होती क्योंकि उनका रीजन लिमिटेड होता है,
0: पर क्वालिटी यहाँ पर बहुत क्वालिटी मायने रखती है।
2: गुणवत्ता
0: अगर अच्छी है आपके उत्पाद की तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अच्छा दाम मिलेगा ही मिलेगा, और जीआई टैगिंग हो गई है तो ये सोने पर सुहागा साबित हो जाता है। डॉक्टर बजाज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका।
1: सबसे पहले आपको उदाहरण दे दें, जैसे एक बलिया गेहूं की बात की गई जो घरेलू बाजार में बिकता है, प्रीमियम पे बिकता है, हमने एक्सपोर्ट किया और वो भी प्रीमियम पे किया, क्यों? क्योंकि वो जीआई टैग था, और जब प्रीमियम में बिका तो उसका लाभ जो है नीचे तक भी गया, सबको मिला, जो उसके उत्पादन कर रहे थे उनको भी उसका लाभ मिला। तो एक इसी तरह उदाहरण है, जीआई टैग होने पर उसका बेचना आसान है, हमें प्रीमियम मिलता है और एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं जो एक चीज उगा रहा हूँ ये विशेष है, ये दुनिया के और किसी कोने में ऐसी चीज उगती नहीं है या बनती नहीं है, ये हम ही हैं इसके निर्माता या इसको उगाते हैं, तो एक संतुष्टि भी मिलती है। आने वाली जनरेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी जनरेशन ने हमें दी है और हम आगे आपको जनरेशन को देने जा रहे हैं प्रीमियम।
4: जी हाँ किसान साथियों, जीआई टैगिंग से हमें फायदा हो सकता है। एक तो हमें ये चीज बेचने में आसानी होगी, दूसरी चीज कि जो हमें इसके लिए कहीं कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये खुद में एक प्रसिद्ध चीज होगी कि जो भी आएगा उसे खुद ही पता है कि यहाँ की ये चीज फेमस है और वह उसे लेना जरूर पसंद करेगा। जैसे कि अपने झबवा का अभी कड़कनाथ इतना फेमस है तो हर कोई जो भी आता है वो ज़रूर चाहता है कि जो मांसाहारी है वो ज़रूर चाहेगा कि मैं इसका टेस्ट करूं। साथ ही वो सारे जो लोग अंडा खाते हैं वो काफ़ी अंडे की भी डिमांड है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमें इसमें जो इसको इसमें जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम अगर ये हमारे लिए एक अच्छा है कि हम यहाँ पर कड़कनाथ होता है, इसका मतलब ये नहीं हम उसमें भर भर के पूरा कड़कनाथ पाले और जिससे अधिक पालने के चक्कर में हमारा क्या होता है, जो क्वालिटी है उसको हम खराब ना करें। हमें हमारी क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना है, उसका भी प्रबंधन करना है, साथ ही हमें अपनी जो क्वांटिटी है उसको भी बनाकर रखना है। तो इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटाबिल 90.8 FM के साथ, झबवा की आवाज़।

हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में हमारे साथ आज हैं सर्वेश फड़के जी। बाकी की बातचीत हम सर्वेश साहब से ही करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को सर्वेश जी की आवाज में, इस गीत से।

0: बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गायकी। सर्वेश जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं एक छोटे से सवाल से। सर्वेश जी, हमें ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस जगह के बारे में क्या कुछ खास है हमें बताइए।
1: गोवा में एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा शिरोड़ा गांव है, उस गांव में मेरा जन्म हुआ। शिरोड़ा गांव एक निसर्ग से भरा पड़ा हुआ गांव है, जिसमें कुदरत ने दी हुई सभी चीज़ें वहां पे मौजूद है। खेत है, पहाड़ है, झील है, जंगल है, नदी है, सब कुछ है। और ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आप जाओ और आपको नहीं मिली। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरा जन्म उस गांव में हुआ। मैं आज भी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे गांव में मुझे बिताना बहुत अच्छा लगता है।
0: बढ़िया। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं सर्वेश जी की ही आवाज़ में ये गीत।

0: बहुत सुंदर गीत। सर्वेश जी, अभी आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में क्या खास है वो बताएं।
1: मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था और इसी के कारण मैं शिरोड़ा से पणजी शिफ्ट हुआ। पणजी गोवा की राजधानी है और बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे मांडवी नदी सदियों से बहती आ रही है और मिरामार समुंदर को जाके मिलती है, और यही नज़ारा देखने के लिए दुनिया भर के तमाम पर्यटक परिवार वाले यहाँ पे आते हैं और इस बात का मज़ा लेते हैं। पणजी शहर में आजकल के दौर के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सभी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। सभी की तरह मुझे भी पणजी शहर बहुत ही अच्छा लगता है।
0: तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं सर्वेश जी की आवाज में ये गीत।

0: बहुत सुंदर गीत। सर्वेश जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं और कब से हैं?
1: अभी मैं इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी गवर्नमेंट ऑफ गोवा में ग्राफिक डिजाइनर के पद पे काम कर रहा हूँ।
2: मैं बैचलर इन फाइन आर्ट्स हूँ, जिसके अप्लाइड आर्ट से मेरी पढ़ाई हुई है। विज्ञापन और प्रचार इसका महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तकरीबन 16 साल से मैं कार्यरत हूँ। अलग अलग डिजाइन्स बनाना, उसे पब्लिश करना मेरा पेशा है, जिसमें रचनात्मक काम ज़्यादा रहता है। अलग अलग लोगों से मिलना, कंपनी ओनर्स से मिलना, उनकी कॉरपोरेट आइडेंटिटीज़ बनाना, बस यही मेरा काम है। बहुत चैलेंजिंग काम है जो मैं अभी तक करते आ रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं सर्वेश जी का ही गाया हुआ ये गीत।

0: बहुत सुंदर गायकी। सर्वेश जी, आपको गाने का शौक कब से हुआ? आपको कब लगा कि मुझे गाना गाना चाहिए?
1: जैसे हर संगीत कलाकार कहता है, मुझे भी संगीत की रुचि बचपन से ही थी। 20-30 साल पहले थोड़ी अलग बात थी। वो जमाना रेडियो और टेलीविजन का था और मैं रेडियो बहुत ज़्यादा सुनता था। उसमें एक फंकार, भुले बिसरे गीत, हवा महल ऐसे कार्यक्रम में ज़्यादा सुनता था। गानों को सुन सुन के, गा गा के आनंद और गहरा होता चला गया और मैं गानों में ज़्यादा उलझा रहा। उन दिनों इंटरनेट और यूट्यूब नहीं थे, तो हमारे गांव में ऑर्केस्ट्रा और छोटे छोटे म्यूजिकल कॉन्सर्ट बहुत होते थे, तो सबसे आगे बैठ के गाना सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और वहीं से मुझे गाने का शौक हुआ।
0: बहुत अच्छे। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं सर्वे जी का गाया हुआ ये गीत।

0: आइए सर्वे जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको संगीत में क्या पसंद है। मेरा मतलब किस तरह के गीत पसंद है, फिल्मी गाने, नॉन फिल्मी गाने, गजल्स, भजन, शास्त्रीय संगीत या कुछ और?
1: मैं ज्यादातर शास्त्रीय संगीत, फिल्मी गाने, गजल्स, भजन सुनना और गाना पसंद करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया। तो लीजिए दोस्तों, सुने एक और गीत सर्वेश जी का।

0: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो असरवे जी, एक मुश्किल सवाल, आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: वैसे देखा जाए तो सभी गायकों में अलग अलग खूबियां हैं, लेकिन मैं मोहम्मद रफी साहब को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि जिस तरह से वो गाने को समझकर गाते थे, वो समझ बहुत बड़ी अहमियत रखती है। अलग अलग तरह के गाने उन्होंने गाए हैं, अपनी अलग अलग किस्म की गायकी से अल्फाजों के भाव प्रकट करना और एक जिंदा गहरा गाना लोगों के सामने रखना उनकी अपने आप में एक खास बात थी। रफी साहब शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, इसलिए उनकी गायकी एक अलंकृत गायकी है जिससे अद्भुत भाव उत्पन्न होते हैं, और यही बात उनको सबसे अलग दर्शाती है। ये जुल्फ अगर खुल के है दुनिया उसी की गुलाबी आंखें, ऐसे कई सारे अनगिनत गाने उन्होंने गा के रखे हैं जो सुनने वालों के लिए, गाने वालों के लिए और सीखने वालों के लिए बिल्कुल असाधारण है।
0: अरे वाह, तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं एक और गीत सर्वेश जी की आवाज में।

0: सर्वे जी, एक और मुश्किल सवाल, आपका सबसे पसंद का गीत कौन सा है और क्यों?
1: मैं उस तरह के गाने गाना ज्यादा पसंद करता हूँ जिसमें अच्छी अच्छी शब्द रचनाएं हो और संगीत शास्त्र का मिश्रण हो। वैसे देखा जाए तो उछल कूद वाले गाने तो तमाम है, लेकिन एक ठहरावपूर्ण गाना बहुत ही कम सुनने को मिलता है, और यही बात मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब और सुरेश वाडकर जी के गानों में मिलती है। अनगिनत गाने सुनने के लिए और गाने के लिए मौजूद है, उसमें से एक या दो को चुनना थोड़ी मुश्किल बात है। हाँ, रफ़ी साहब का ये जुल्फ अगर खुलके और सुरेश वाडकर जी का सुरमई शाम मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही सुंदर शब्द रचना और उतना ही बेहतर संगीत इन गानों को दिया गया है।
0: भाई वाह, तो हो जाए ये गीत

0: सर्वे जी, आपकी हॉबीज क्या है? खाली वक्त में आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, बिजी रखने के लिए क्या करते हैं?
1: मेरी सबसे पहली हॉबी जो बचपन से रही है वो गाने सुनने की। सुने हुए हर नए गाने को मैं अपने हिसाब से गाने की कोशिश करता था और अभी भी करता हूँ। गाने के अलावा मुझे पर्यावरण के साथ वक्त बिताना ज्यादा अच्छा लगता है। अपने दिन भर के काम में से थोड़ी फुर्सत निकाल के अभी भी किसी झील के किनारे या एकांत में बैठना मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। अपनी गाड़ी खुद चलाकर सफर करना, नया नया स्वादिष्ट खाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे मेरी क्रिएटिविटी को थोड़ा बूस्ट भी मिलता है।
0: तो लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है सर्वे जी की आवाज में ये गीत।

0: सर्वे जी, अब मौका आ गया है कि आप अपने जैसे ही सिंगर्स को कुछ संदेश दें, कुछ मैसेज दें, उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे आप?
1: मेरे जैसे कई सारे सिंगिंग आर्टिस्ट जो आगे आके गाने की इच्छा रखते हैं, सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई गायक नहीं बन सकता। उसके लिए त्याग, तपस्या और मेहनत करनी पड़ती है, और जो इस विषय से प्यार करता है वो जीवन में कभी निराश नहीं हो सकता। आप जितना कर सकते हो उतना ईमानदारी से करो, आपको इस विषय का जीवन भर आनंद मिलता रहेगा।
0: बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हो जाए एक और गीत सर्वे जी की आवाज में।

0: थैंक यू सो मच सर्वेश जी, बहुत सुंदर गायकी। हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए क्या संदेश है आपका सर्वेश जी?
1: इस कार्यक्रम के जरिए आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक गायक को समझने और आगे बढ़ने के लिए अच्छा श्रोता मिलना बेहद जरूरी है। आपकी प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। मैं शास्त्रीय संगीत गाता हूँ और हिंदी फिल्मी गाने भी गाता हूँ। अनिल काणे प्रस्तुत गोल्डन इरा शो में मैं गाता हूँ, जिसमें अतुल मिश्रा जी और विष्णु शिरोडकर जी लीड करते हैं। इनके साथ मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिनसे मुझे मार्गदर्शन हमेशा मिलते आ रहा है।

सर्वे जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपके गीत सुनकर हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।

मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आज के कलाकार का एक बहुत ही प्यारा सा एपिसोड लेकर मैं आपका रेडियो दोस्त समीर हाजिर हूं और बहुत मजा आएगा सुनकर दोस्तों आपको आज का प्रोग्राम। हमारे साथ जो टैलेंट हैं वो हैं सुरैया नायक जी, और बहुत ही प्यारे प्रदेश से, बहुत ही प्यारी जगह से हैं, वो गोवा से हैं। जी हाँ दोस्तों, वो लहरें, वो समंदर। तो चलिए मैं सुरैया जी से उनका थंडर स्टील करने की कोशिश नहीं करूंगा। हम लोग सुरैया जी का स्वागत करते हुए, उनका वेलकम करते हुए उन्हीं से पूछेंगे। सुरैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज मुझे और अपने नई फैमिली मेंबर्स जो आज के कलाकार की फैमिली में आप आज स्वागत हुआ है आपका, जुड़े हो, उन सबको बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं आप?
1: हेलो एवरीवन, नमस्ते। नमस्ते समीर जी, नमस्कार, वडक्कम, केम छो, कॉमिस्ता, सबको मेरा प्रणाम। मैं गोवा से हूँ, मैं मेरे परिवार के साथ रहती हूँ गोवा में, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस मंच के माध्यम से आप सभी से आज बात कर रही हूँ और ये मौका मिला मुझे। थैंक यू नितिन जी और मेरी फ्रेंड जो मीनाक्षी है, उसने मुझे इधर कांटेक्ट किया मुझे।
0: ऑलराइट, सुरैया जी, ये तो बताइए आप करते क्या हो वहाँ पर गोवा में, व्हाट डू यू डू?
1: मैं गोवा में आई एम अ बैंकर, एक्चुअली आई एम एक्स बैंकर।
0: अच्छा,
1: अभी या एंड अभी मैं, मेरा व्यवसाय है, मेरा ट्रैवल एजेंसी है, वो चला रही हूँ।
0: अच्छा, आप अपनी ट्रैवल एजेंसी रन करते हैं गोवा में ही, पंजिम में?
1: हाँ, पंजिम में।
0: हाँ, बहुत खूब। तो जी बोलिए।
1: सो एक्चुअली बैंकिंग इज द प्रोफेशन वेयर मुझे इस बैंकिंग से मुझे बहुत से लोगों से मिलाया, वो जो डिसिप्लिन, पेशेंस, कस्टमर सर्विस, वो सब इसी माध्यम से सीखी मैं। और नाउ सिंगिंग इज बिकम अ पैशन। सो
0: ऑलराइट, बहुत खूब। तो चलिए आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हम लोगों ने ये जाना कि सुरैया जी गोवा से हैं, पंजिम से हैं और क्या करती हैं। चलिए सुनते हैं उनके गाए हुए ये दो प्यारे से गीत इस कार्यक्रम की शुरुआत में।

0: बहुत बहुत ही प्यारे गीत सुरैया जी, कमाल कर दिया, बहुत ही प्यारी गायकी। सुरैया जी चलिए थोड़ा सा आपके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले अपने म्यूजिक के बारे में ही हमें बता दीजिए। आपकी ये जो गायकी है, जो सिंगिंग है, ये आप कब से गा रहे हो, और कहीं से आपने क्लासिकल सीखा या नहीं सीखा, सिर्फ आप म्यूजिक के बारे में पैशनेट हो, तो गायकी आपकी कब से चल रही है?
1: एक्चुअली बचपन से मुझे संगीत में बहुत लगाव हुआ है, लेकिन संगीत मेरे लिए केवल एक यू नो शौक नहीं है, बल्कि मेरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम जैसा है। और पहले तो क्या होता था कि म्यूजिक टीवी नहीं था, तभी सिर्फ रेडियो रेडियो, बाद में टीवी आ गया। रेडियो से मैं सुनती थी, रेडियो बहुत सुना मैंने, तो इवन वो लव्स होते थे, जो प्रॉपर लव्स भी ना हमको मालूम नहीं होते थे शब्द, फिर भी यू नो दैट लय, वो संगीत हमेशा अपनी यू नो क्या बोलते हैं कि विद दैट सिंगिंग, जब हमारी चतुर्थी होती थी तो मेरे काका भजन गाते थे, वो सुनना, उनके साथ बैठ के सुनना, उधर से सीखा मैंने थोड़ी यू नो जैसे वो जो गाने होते थे मराठी में, कैवल्य चा चांदण्याला भुकेला कस्तोर, देन केशवा माधवा विठ्ठल तो बरवा, ऑल दिस सॉन्ग्स यू नो दैट म्यूजिक यू नो वो सुन सुन के सीखी हूँ। फॉर्मल सिंगिंग कभी नहीं सीखा।
0: कोई बात नहीं मैम, हमारे आज के कलाकार में जितने लोग हैं ना, वो लोग म्यूजिक के पैशनेट ही हैं, पसंद करने वाले हैं, उनको म्यूजिक से प्यार है, तो ठीक है, अगर आपको सीखने का मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है। बहुत बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, सो मैं सचमुच आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि आपने मराठी के जो भजन वगैरह, अभंग वगैरह गाते हुए सुना और उनको गाया, वहीं से आप इंस्पायर हुए और आपने गाना शुरू किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी ही बढ़िया बात है। लेकिन सुरैया जी ये तो बताइए कि आप किस तरीके का म्यूजिक पसंद करते हैं, मेरा कहने का मतलब है भजन, गजल, क्लासिकल म्यूजिक, बॉलीवुड, हिंदी सॉन्ग्स, किस तरीके का पसंद करते हैं आप?
1: मुझे अलग अलग तरीके के गीत गाना पसंद है एक्चुअली
0: जी,
1: और हमेशा अपनी गायकी को बेहतर बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। मुझे लता जी बहुत पसंद है, आई ट्राई टू सिंग हर सॉन्ग्स, क्योंकि उसकी गायकी में जो जो उसकी विविधता है, सरलता है, यू नो लाइफ गिविंग सॉन्ग्स है उसके, वो मुझे बहुत पसंद है। और जो कठिन से कठिन गाना भी वो इतनी सरलता से गाती है, यू नो दैट आई लाइक, सो आई लव हर सिंगिंग।
0: बहुत
1: भजन भजन भी गाती हूँ मैं, आई लाइक दिस ऑल्सो, यू नो आई ट्राई टू सिंग इन ऑल लैंग्वेजेस ऑल्सो, आई नो मेनी लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, देन कन्नड़ा, आई ट्राई टू सिंग इन
0: लैंग्वेजेस। क्या बात है, वैसे भी इतनी सारी लैंग्वेजेस को जानना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक और बात सुरैया जी, मतलब आप इतनी सारी लैंग्वेजेस में गाते हैं तो हाँ। वैसे तो बोल भी लेते होंगे, सारी लैंग्वेजेस बोल लेते होंगे, है ना?
1: हाँ हाँ बोल लेती हूँ
0: आराम से।
1: कन्नड़ा समझ लेती हूँ, पोर्चुगीज ऑल्सो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन सिंग बट आई कैन अंडरस्टैंड, देन इंग्लिश तो हाँ, मराठी आई कैन सिंग।
0: ओके तो बहुत बढ़िया। लीजिए दोस्तों एक और हमारे साथ आज के कलाकार जुड़े हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में गा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए पहले तो इनके इन गीतों का मजा लें और फिर वापस आएं सुरैया जी के पास।

0: बहुत बहुत बढ़िया गायकी। तो सरैया जी चलिए आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइए कि आज आप जिस भी मुकाम पर हैं जिंदगी में, जहां पर भी हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, मुझे आप जैसे लोगों के साथ पॉडकास्टिंग करने में बहुत मजा आता है, वो चीज मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। तो मैं हमेशा दिन में इंतजार करता हूं कि किसके साथ मुझे पॉडकास्टिंग करने को मिलेगा। दैट मोटिवेट्स मी। सिमिलरली व्हाट मोटिवेट्स यू?
1: मोटिवेशन यानी अभी कोविड के टाइम से एक्चुअली मैं जुट गई थी स्टार मेकर में, तो बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए थे, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, और हमेशा मैं वो टाइम, एक सर्टन टाइम पे मैं आई गिव माय टाइम टू दैट एंड आई ट्राई टू सिंग विद देम। उसमें बहुत मुझे मेरे मन को शांति मिलती है, मेरे यू नो जो भी थकान होती है मैं और फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ होता है, वो फ्रस्ट्रेशन सिंगिंग थ्रू सिंगिंग आई रिलीज इट। सो मुझे बहुत शांति मिलती है इससे। तो वो मोटिवेशन है एक्चुअली सिंगिंग की तरफ से, लेकिन बिजनेस एंड ऑल अदर थिंग्स सेम थिंग, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, यू नो दे इंस्पायर मी टू डू समथिंग न्यू एंड आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स ऑलवेज। सो यू नो All these things are added up.
0: बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा सुरैया जी आपने। यही चीजें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं, और हम जिंदगी को कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए जीते रहते हैं। बहुत खूब कहा आपने, मजा आ गया सर। चलिए तो आगे बढ़ते हुए इन गीतों का आनंद उठाएं। सुरैया जी ने हमारे लिए इनको प्रिपेयर किया, दोस्तों लीजिए, लुत्फ उठाइए।

0: बहुत बहुत ही प्यारी सिंगिंग, बहुत ही प्यारी गायकी,
1: थैंक यू,
0: बहुत ही प्यारे संगीत। तो आगे बढ़ते हुए सुरेया जी, मुझे थोड़ा सा ये बताइए आपकी जिंदगी को और थोड़ा बेहतर समझने के लिए। अच्छा, आप तो गोवा में हैं, थोड़ा सा गोवा के बारे में ही बताइए ना। कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर हम लोग विजिट कर सकते हैं? आप जब गोवा में रहती हैं तो कैसा तो मौसम रहता है 12 महीने? किस तरीके से, हाउ डू यू लिव योर लाइफ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कहूं, मैं पहाड़ों में रहता हूं, तो यहां पर तो 12 महीने ठंड होती है। अगर मई जून में भी हम लोग बात करें तो रात में मुझे कंबल ओढ़ के ही सोना पड़ता है, तो और 12 ही महीने करीब करीब मुझे गर्म पानी इस्तेमाल करना पड़ता है नहाने के लिए। तो सिमिलरली, हाउ डू यू लिव देयर, मतलब आपकी जो डेली रूटीन होता है गोवा में वो कैसा होता है?
1: गोवा इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एज इट इज। तो इधर एक्चुअली 12 महीने कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, इट्स अ हैपनिंग प्लेस। लेकिन सिर्फ यू नो मई जून वो महीने में थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है, तो पीपल डोंट प्रिफर टू कम। बट अदरवाइज नवंबर दिसंबर इज अ the tourist is full, actually they know what is going on in Goa, so it's full of beaches, churches, every place is worth seeing, so everyone is invited in Goa.
0: Wow, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, वैसे भी हम लोग गोवा के बारे में हमेशा बहुत सुनते आए हैं, गोवा हमें बड़ा अट्रैक्ट भी करता है, और अब सुरेया जी हमें बता भी रही हैं कि इट्स अ हैपनिंग प्लेस, कुछ ना कुछ तो उधर चालू रहता है। बहुत बढ़िया।
1: yes.
0: तो चलिए, विजिट करिए गोवा को, जाके आइए, सुरेया जी से मिलिए, बहुत अच्छा लगेगा। तब तक
1: वेलकम। टिकट्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
0: ओ हाँ, आपकी तो ट्रैवल एजेंसी है। वेरी नाइस। हाँ, दिस इज एन एडेड इन्फॉर्मेशन।
1: आई कैन हेल्प देम आउट टू शो देम प्लेसेस विद अ गाइड, एवरीथिंग दे वांट।
0: क्या बात,
1: कर सकते हैं। हाँ,
0: बहुत बढ़िया। तो मतलब अपने को व्हीकल वगैरह भी मिल जाएगी आपके पास?
1: यस यस,
0: गाड़ी वगैरह भी मिल जाएगी?
1: यस यस, एवरीथिंग।
0: ओके,
1: एवरीथिंग प्रोवाइड।
0: लो, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो लीजिए, हमारे पास एक और एडेड इन्फॉर्मेशन आई, एडेड बेनिफिट है, हम लोग बात कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं और जा सकते हैं गोवा घूमने के लिए एक डिफरेंट स्टाइल से। हम सुरेया जी को बता सकते हैं कि हम किस तरीके से गोवा घूमना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए ये प्यारे से गीत सुनते हैं सुरेया जी के, और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं।

0: बहुत बहुत बहुत ही प्यारी सिंगिंग। तो सुरैया जी, बहुत सारी बातें हमने आपसे की, आपके संगीत के बारे में हमने जाना, आपके बारे में जाना, आपके गोवा के बारे में जाना, आपके जिंदगी के सबक के बारे में भी जाना, और हमने उससे खुद सीखा भी कि हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर प्लान्स, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर प्रायोरिटीज। ठीक है ना? तो बस
1: yes.
0: अब सभी सुनने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो कुछ भी आपके मन में है आप कह सकते हैं, आप बात कर सकते हैं उनसे। बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप सारे सब मेंबर्स के लिए।
1: मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिंदगी के इस मोड़ पे जो है
0: जी,
1: अब सभी को जो पसंद है वो कीजिएगा। जो संगीत पसंद है तो यू विल टेक अप संगीत, जो भी कुछ करना चाहते हो कर लीजिए, क्योंकि यू नेवर नो द लाइफ इज वेरी शॉर्ट, अनएक्सपेक्टेड एनीथिंग कैन हैपन, सो वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग, डू इट, जस्ट डू इट, बी हैप्पी।
0: ब्यूटिफुल। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सा मैसेज है और सच्चाई यही है जिंदगी की कि जो कुछ भी करना चाहते हैं ना कर डालिए, वेट मत करिए, क्योंकि एम एम एम एम करते रहेंगे तो शूट कब करेंगे? शूट करना शुरू कीजिए, एम बाद में कर लेंगे। तो ये हमारी सुरैया मैम हम लोगों को एक मैसेज दे रही हैं। सुरैया मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, आपके गीत सुने, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू समीर जी।

चल। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम